अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोली मारू चैनल है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 अगस्त सन 2026। प्रातः के 5:57 होने को ही हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी बीकानेर के दोनों मरुचाइयों से बोल रहे हैं। रात के 6 बजने को ही कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजाम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति आज कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। वे कल दक्षिणी ओडिशा में तप्त पानी के पास स्थित माँ कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू होगी। भारत की अध्यक्षता में ये बैठक लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण के व्यापक विषय पर आधारित है। ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान तथा सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। यह विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल

किसी भी समूह या व्यक्ति ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना का चौथा युद्ध पाठ्यक्रम आज नई दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। 4 सप्ताह का यह पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र इसका समन्वय कर रहा है। पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचारकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। भगवान महाकाल को चंद्र मौलेश्वर रूप में पारंपरिक पालकी जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का मौका मिलेगा। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। राष्ट्रमंडल

0: राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली में संपन्न हो गई। मेजबान भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 में से 6 स्वर्ण पदक जीते। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विजेता खिलाड़ियों को पदक और पुरस्कार प्रदान किए और उनके प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों की भागीदारी वाली खेल प्रतियोगिता की सफल मेजबानी दिल्ली सरकार के लिए गौरव की बात है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के डोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हो रही है। प्रस्तुत है आज का विचार। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे डॉक्टर सुगन मेहता के विचार। विषय है अद्वैत दर्शन।
2: भारतीय अध्यात्म की दार्शनिक परंपरा में सर्वोच्च स्थान वेदांत दर्शन का माना गया है। वेदांत दर्शन में सर्वश्रेष्ठ स्थान अद्वैत का है। अद्वैत के दार्शनिक सिद्धांत के अनुसार विश्व की परम सत्ता को सच्चिदानंद अद्वैत और अपरिछिन्न यानी असीम अनंत अनादि और अथाह कहा गया है। ये सत्ता अपने पारमार्थिक रूप में प्रकृति और उसके परिणाम रूपी संसार से परे यानी अतीत होते हुए भी वह उसका अधिष्ठान और आधार भी है। यही सत्ता व्यावहारिक रूप में समस्त अव्यक्त प्रकृति में और उसके प्रकट परिणाम तमाम वस्तु व्यक्ति और घटनाओं में ओतप्रोत रूप से व्यापक रहती है। प्राणी मात्र अपने जीवन की समस्त प्रक्रियाओं में इसी सत्ता को उपलब्ध करने या उसका साक्षात्कार करने में संलग्न देखा जाता है। उसके कुछ उदाहरण इस प्रकार है। एक ये परम सत्ता सतरूप है और उस सत का लक्षण यह है कि भूत भविष्य और वर्तमान किसी भी काल में जिसका अभाव न हो। प्रत्येक मनुष्य व प्रत्येक प्राणी इस सत्ता में व्याप्त और कार्यरत होने का संकेत यही दिखाता है कि प्रत्येक प्राणी जीवित रहना चाहता है। अपना अभाव या मृत्यु कोई भी नहीं चाहता। यह सत्ता चित स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप है, इसलिए प्रत्येक प्राणी निरंतर कुछ न कुछ जानना चाहता है। मनुष्य में पाई जाने वाली जिज्ञासा वृत्ति इसी का संकेत है। परम सत्ता आनंद स्वरूप भी है, इसलिए प्रत्येक प्राणी सुखी रहना चाहता है, कोई भी दुखी रहना नहीं चाहता। प्राणी मात्र की चेष्टा दुख के निवारण और सुख प्राप्ति के लिए ही होती है, जो उसमें आनंद तत्व के निहित होने का संकेत है। ये सत्ता अपरिछिन्न और देश काल वस्तु से सीमित या बाधित नहीं है, इसलिए प्रत्येक प्राणी विशेषतः मनुष्य मात्र अपने देश काल और परिस्थिति की बाधाओं का अतिक्रमण करके उससे मुक्त होना चाहता है। यह इस बात का संकेत है कि मनुष्य किसी प्रकार की सीमा या बंधन को इसलिए स्वीकार नहीं करता क्योंकि परम सत्ता सर्वथा निर्बंध और मोक्ष स्वरूप है और वह प्रत्येक के हृदय प्रदेश में क्रियाशील है। परम सत्ता अद्वैय अर्थात अद्वैत स्वरूप है, जिसका भावार्थ यह है कि उसके अतिरिक्त कोई दूसरी वास्तविक सत्ता नहीं है और वही अद्वैय सत्ता वस्तु मात्र, प्राणी मात्र और मनुष्य मात्र में व्यापक और क्रियाशील है। इसलिए प्रत्येक वस्तु प्राणी और मनुष्य की गति अपने को बेजोड़ अनुपम और अद्वितीय सिद्ध करने की ओर पाई जाती है। संसार के किसी भी एक जाति के वृक्ष फल और उसी एक ही जाति के प्राणियों के आकार प्रकारों में बहुत कुछ समानता होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति विशेष में कुछ न कुछ विशेष प्रकार का अंतर पाया जाता है जो उसके विशिष्ट होने की ओर इंगित करता है। मनुष्य में तो ये विशेषता और भी अधिक स्पष्ट रूप से उपलब्ध होती है। किसी भी मनुष्य का चेहरा सर्वथा किसी दूसरे मनुष्य से नहीं मिलता। किसी भी मनुष्य के अंगूठे के निशान किसी दूसरे व्यक्ति के अंगूठे के निशान से नहीं मिलते और मानसिक गुण व क्षमता में तो ये

0: अंतर बहुत अधिक मात्रा में स्पष्ट रूप से पाया जाता है। प्रत्येक मनुष्य को इस बात का एहसास भी है कि वह अपने आप में अनुपम, अद्वितीय और बेजोड़ है, और इसी अद्वितीयता को वह अपनी बोलचाल और शैली के द्वारा भी निरंतर सिद्ध करने में लगा रहता है। निष्कर्ष यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने में व्याप्त परम तत्व को ही प्राप्त करने की ओर गतिशील है। आदर्श समाज व्यवस्था व राज व्यवस्था ही नहीं, किंतु आदर्श परिवार व्यवस्था भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सुख सुविधा पूर्वक ज्ञान का उपार्जन करता हुआ अपनी अधिक से अधिक बाधाओं का निराकरण करके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपने को स्वतंत्र और अद्वितीय सिद्ध कर सके।
1: अद्वैत दर्शन, अभी आपने सुना ये आज का विचार, वाचक स्वर डॉक्टर छगन मित्र का था। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोल अमारू चैनल से बोल रहे हैं।

ये आकाशवाणी बीकानेर का डोला न्यूज चैनल है। प्रातः के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। पहले स्तुति विपिन सचदेवा और साथियों के स्वर में।

सूरदासी का भजन आपने सुना रफीक सागर के स्वर में। इसके साथ ही आज वंदना कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है रामचरित मानस का इनका सस्वर पाठ। इस पाठ में आज आप सुनेंगे बालकांड के दोहा संख्या 299 से दोहा संख्या 300 की अंतिम जो पंक्ति तक का पाठ। मुख्य सुर सुरेश वाडेकर का है।

जनकपुर में सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिवजी के धनुष भंग का संदेश सुनकर अयोध्या में हर्ष और आनंद की लहर दौड़ गई। राजा दशरथ पुत्रों के विवाह के लिए बारात सजाने की तैयारियों में लगे हैं। राम लक्ष्मण तो जनकपुर में हैं, अतः भरत को हाथी घोड़े तथा रथ सजाने का आदेश हुआ। शौर्य का बाना धारण कर रणधीर वीर नगर के बाहर एकत्रित हुए। सभी चुने हुए छैल छबीले वीर चतुर नवयुवक हैं। भेरी और नगाड़ों के ध्वनि सुनकर इनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं। सारथियों ने ध्वज पताकाओं तथा रत्नाभूषणों से रथ सजाए हैं। अगणित श्यामवर्णी घोड़े ऐसे हैं जो जल पर भी स्थल जैसी द्रुत गति से दौड़ते हैं, ऐसे वेग से कि उनकी टापें पानी में नहीं डूबती। रथों पर चढ़ी बारात नगर के बाहर आ जुटी है। घंटों से सुसज्जित मतवाले हाथी इस प्रकार झूमते चले जैसे सावन के श्यामवर्णी बादलों के झुंड गरजते हुए चलते हैं।

आपने सुना रामजोत मोनिस गान का सहस्वर पाठ। इस पाठ में आज बालकांड की दोह संख्या 299 से दोह संख्या 300 की अंतिम चौपाई तक का पाठ सुनाया गया। मुख्य स्वर सुरेश वाडेकर का था। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। ये प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

हमारे इसी समय में सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम समाचार तरंग। जिले की चिट्ठी आप सुन सकते हैं शाम 6:40 पर। ये दोनों कार्यक्रम जयपुर के इंद्र से रिले किए जाएंगे।

जयपुर केंद्र से ही प्रसारित होगा कार्यक्रम खेल जगत रात 10 बजे। ग्रामीण श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण जगत शाम 7 बजे। कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे खरीफ की मुख्य फसल मोठ, देसी प्रजातियों किस्मों के पौधे लगाएं, किसान सम्मान निधि, मानसून में मच्छर जनित बीमारियों से कैसे बचाव करें। इन बातों के साथ साथ आप सुनेंगे लोक संगीत। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे अश्विनी व्यास और संदीप कुमार पारेख।

युवा श्रोताओं का कार्यक्रम होगा युवाणी शाम 5:05 पर। आज की बात का विषय है युवा उद्यमिता और अवसर। इसी के साथ मैथिली शरण गुप्त जयंती, मानसून और स्वास्थ्य, जंतर मंतर, खेल पत्रकारिता और करियर, इनके बारे में लघु जानकारियां दी जाएंगी। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे रिपु दमन सिंह और मनस्विनी सोनी।

आपने सुना है कार्यक्रम महिला जगत दोपहर 1:05 पर। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर शर्मिला और मीनाक्षी स्वर्णकार। चर्चा के विषय रहेंगे हमारी संस्कृति राजस्थानी ओढ़निया। बारिश में अपना व घर का ध्यान रखें। बच्चों के स्वास्थ्य पर फास्ट फूड का प्रभाव। आजादी विशेष आप सुनेंगे महिलाओं का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। इसी कार्यक्रम में सुनिए सुहानी शर्मा की वार्ता महिलाएं पहचाने अपने कानूनी अधिकार। दोपहर 12:10 पर आप सुनेंगे एक नाटक मैनचेस्टर का अंत। लेखक हैं राजेश मेहता। एनसीईआरटी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर। और सौरभ कार्यक्रम में सुनेंगे डॉक्टर मेघना शर्मा का कविता पाठ सुबह 8:30 पर।

0: वो तो हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर भरत कुमार जाजरा की वार्ता। विषय है खेती बाड़ी में पादप हार्मोन का महत्व।
1: किसान भैया राम राम। आज बात करा खेती बाड़ी में पादप हार्मोन रे महत्व बारे में। पादप हार्मोन जो का है पौधे री बढ़वार वास्ते बहुत ही जरूरी है। पौधे रे ऊपर बढ़ोतरी और नीचे रे बढ़ोतरी सब रे वास्ते जरूरी है। पत्ती और तने रे विकास, फल विकास यानी पकड़ो, पादप री आयु, पादप री मृत्यु यानी कि कम आयु, इस सब ने पादप हार्मोन नियंत्रित करे। दुनिया भर में किसान जो है कई तरीका अपनाए करे ताकि पौधे री बढ़वार रे मैंने आशा अनुरूप वे प्रयोग कर सके। और इसार मैंने सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग है पादप हार्मोन और प्रयोग। हालरा सालर मैंने पादप शरीर विज्ञानी जगह है पतो लगाया कि पादप हार्मोन कृषि मैंने, बागवानी मैंने, पेमिकल्चर मैंने और कृषि से संबंधित जका क्षेत्र है इर मैंने आप एक विशेष महत्व रखा करे। पौधेरी जकी क्रिया प्रतिक्रिया है, उपापचय है, इस सगला ने पादप हार्मोन नियंत्रित क्रिया करे। प्राकृतिक हार्मोन तो पौधे रे मायने बढ़िया करे है, पर आज वैज्ञानिक जगह कई सिंथेटिक हार्मोन या कृत्रिम हार्मोन रे भी पहचान करी है जका की प्राकृतिक हार्मोन आर दई बढ़वार रे मायने योगदान दिया करे। पादप हार्मोन जो को है इर बारे में अनुभव सु पतो चलियो है कि ए हार्मोन कृषि उद्योग है इर मैंने आपरी एक अमिट छाप रखा करे। यारे उपयोग रे आधार पर, यारे कामारे आधार पर पादप हार्मोन री कई श्रेणियां बांटुड़ी है। इस श्रेणी में शामिल है जा ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन, साइटोकाइनिन, एबिसिक अम्ल, एथिलिन अम्ल और फ्लोरिजिन हार्मोन। पौधेरी जैविक क्रिया के बीच समन्वय रखने वास्ते ए रासायनिक पादप हार्मोन जो का है ए पौधेरी बढ़वार रे मैंने या यारी उम्र रे माथे असर रखा कर। पौधे रे ई हार्मोन रो एक दूसरो नाम है फाइटो हार्मोन। ए पौधा रे हरेक अंग रे मैंने बहुत ही कम मात्रा में सूक्ष्म मात्रा में पहुंच और बठेरी उपापचय क्रिया ने ई तरह से नियंत्रित और प्रभावित करे कि पौधे रे बढ़वार रे मैंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। तो पादप हार्मोन रे कई समूह है इर मैंने सबसे पहली बात करा पा ऑक्सिन समूह मत है। एक कार्बनिक यौगिक रे समूह है जका पौधा रे मैंने कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन रे मैंने भाग लिया करे। इंडोल एसिटिक अम्ल और नेफ्थलीन इरा प्रमुख उदाहरण है। तने रे मैंने जकी तरफ ऑक्सिन रे मात्रा ज्यादा है बी तरफ बढ़ोतरी ज्यादा हो जावे तो कई बार पौधे रे मैंने एक तरफ ऑक्सिन रे मात्रा ज्यादा होने से पौधे रे तनो एक तरफ बढ़ जावे और वो धीरे धीरे चाल झुकन लाग जावे। पौधा जड़ा मैंने अगर इरी अधिकता हो जावे तो जड़ा ज्यादा बढ़ने लाग जाए। इस स्थिति में मैंने पौधे रो ऊपर रो भाग एक बार बढ़ोतरी करनो रुक जावे और निचली जड़ा जकी है ज्यादा बढ़ने लाग जावे। ऑक्सिन कोशिका रे बढ़ोतरी इरे सागे सागे तने री बढ़ोतरी मैंने भी सहायक है और जड़ री बढ़ोतरी ने भी नियंत्रित करे। बीज रहित फल जका है बिहारे बीज उत्पादन में भी सहायक है। पत्तियारे झड़ने और गिरने माथे भी ऑक्सिन नियंत्रण रखे। गेहूं और मक्का रे मैंने खरपतवार नाशक रो काम भी करिया करे। हार्मोनरी अगली श्रेणी है जिब्रेलिन्स और एक जटिल कार्बनिक यौगिक है और इरे उदाहरण है जिब्रेलिन।

0: अम्ल। इरो काम ओ है कि ओ पौधर मैंने जका बीज रहित भाग व्या करे है और बीज अगर सुतरी अवस्था मैंने जका ने सुसुप्त अवस्था किया करे इसी स्थिति में इस सुतुड़ा बीज ने जगा देवे यानी सुसुप्त अवस्था ने यानी भंग कर देवे और पौधरे बीजारी बढ़वार मैंने सहयोग देवे बीजरे अंकुरण मैंने भाग लेवे सागे सागे ओ पौधरे लंबाई बढ़ाने मैंने तनेरी लंबाई बढ़ाने मैंने भी ओ सहायक है। पौधारे हार्मोन री अगली श्रेणी है साइटोकाइनिन और एक क्षारीय प्रकृति का हार्मोन है और ओ पौधारे जड़रे अगला सिरन में होया करे और इसो कोशिका विभाजन होया करे। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन वास्ते एक जरूरी हार्मोन है और ओ पौधारे किनारे रे तरफ बढ़वार रे मैंने सहयोग दे और सागे सागे बीजारे अंकुरण ने भी प्रेरित करिया करे। अगली श्रेणी है एबीसीसिक अम्ल और एक वृद्धिरोधी हार्मोन है जो को बढ़ोतरी ने रोके ओ एक अम्ल है जो पौधे की बढ़ोतरी ने रोके है और सागे सागे जका पौधारा रंध्र है यानी खुलने और बंद करने ने नियंत्रण करे। बीज और कलियां जका है यानी सुसुप्त अवस्था है यानी कि सुवर्ण री अवस्था में ने लिया हुए पौधे री झड़ने री क्रिया ने नियंत्रण करे और सागे सागे फूल और फलारे पकने री क्रिया ने भी नियंत्रण करे। हार्मोन री अगली श्रेणी है एथिलीन जकि गैसीय रूप में मैंने पौधे में मैंने पाई करे और आ पौधे लगभग हर भाग में मैंने विद्यमान होया करे यानी कि मौजूद होया करे। आ पौधे री चौड़ाई ने नियंत्रण करे पौधे री चौड़ाई में मैंने बढ़ोतरी करे सागे सागे पत्तियां और फल रे झड़ने री क्रिया ने भी नियंत्रण करे। पौधे रे कई भाग ने जका सुसुप्त अवस्था है बिना खत्म करे और अंकुरण वास्ते प्रेरित करे और फल ने पकने में मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण एथिलीन री भूमिका होया करे। अगली श्रेणी है जकने फ्लोरिजिन्स किया करे फूला ने अंग्रेजी में फ्लोवर किया करे ई फ्लोवर रे माथे इर नाम पड़ रहे फ्लोरिजिन्स ओ हार्मोन फूला रे खिलने ने नियंत्रित किया करे इर वास्ते इर नाम फ्लोरिजिन्स हार्मोन रखियोड़े है।
1: खेती बाड़ी में पादप हार्मोन का महत्व इस विषय पर आपने सुनी वार्ता वार्ताकार से डॉक्टर भरत कुमार जाजड़ा। कार्यक्रम था खेती की बातें और आइए सुनते हैं लोक भजन।

0: गायत्री सोलंकी के सुर में ही आपने ये लोक भजन सुना। हम आकाशवाणी बीकानेर के डोरी मारू चैनल से बोल रही हैं। प्रातः के 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् यथा भारतं विकसित भारत दिशि अग्रेसरति तथा देशस्य युवानः शारीरिक रूपेण सुदृढाः मानसिक रूपेण सबलाः आत्मविश्वासेन च परिपूर्णाः भवितुमर्हन्ति। ह्यः नवदिल्ल्यां विकसित भारत संकल्पाभियानस्यान्तर्गतं नशा मुक्त युवाभियानस्य दृश्य श्रव्य अन्तर्जालीय माध्यमेन शुभारम्भावसरे भाषमाणः प्रधानमन्त्री अवदत् यत् युवानः सर्वदा मादकद्रव्येभ्यः दूरं तिष्ठेयुः अथ स्वस्थजीवनचर्यां च अङ्गीकुर्युः। असौ एतदपि अवदत् यत् अस्य अभियानस्य शुभारम्भेण मादकद्रव्यदुरुपयोगस्य विरुद्धं शतसप्ताहकात्मकस्य राष्ट्रव्यापिनः जनभागीदारी इत्यस्य अभियानस्य आरम्भः जातः।
2: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है। क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो, यही इस अभियान का उद्देश्य है।
1: अस्मिन् कार्यक्रमे देशस्य 28,000 स्थानेभ्यः 1,00,000+ युवानः भागं गृहीतवन्तः। अत्र माय भारत इत्येतस्य राष्ट्रिय सेवा योजनायाः च स्वयंसेवकाः, महाविद्यालय विद्यालय विश्वविद्यालयानां प्रतिनिधयः, युवकमण्डलानाम् अशासकीय सङ्घटनानां च तथा आध्यात्मिक संस्थानां सदस्याश्च भागं गृहीतवन्तः। केन्द्रीय युव कार्य क्रीडा मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया अवदत् यत् मादक द्रव्य मुक्त भारतस्य स्वप्नं केवलं जनसहभागितया यूनां नेतृत्वेन च पूर्णा भवितुमर्हति। विकसित भारत संकल्पाभियानस्यान्तर्गतं नशा मुक्त युवाभियानस्य राष्ट्रीय शुभारम्भानन्तरं असौ फरीदाबाद स्थिते अमृत चिकित्सालये आयोजिते एकस्मिन् कार्यक्रमे एतदवदत्। डॉक्टर मांडविया एतत् शतसप्ताहकात्मकम् अभियानं यूनः राष्ट्र निर्माणे प्रवर्तयितुं राष्ट्रव्यापी जनान्दोलनम् इति वर्णितवान्। बिहार गुजरात मध्य प्रदेशानां च त्रयाणां विधानसभा क्षेत्राणां उपनिर्वाचनानां कृते अद्य मतगणनायै सर्वाः व्यवस्थाः कृताः सन्ति। बिहारस्य बांकीपुरे, गुजरातस्य मंजलपुरे, मध्यप्रदेशस्य दतिया आसने च मतदानं गतमासस्य 30 दिनांके जातम्। अद्य प्रातः 8 वादने मतानां गणना आरभ्यते। प्रथमं पोस्टलिति मतपत्राणां गणना भविष्यति। तदनन्तरं प्रातः 8:30 वादने मतदानयंत्रेषु अभिलेखितानां मतानां गणना भविष्यति। निर्वाचनायोगेन त्रिषु राज्येषु सुगम गणनां सुनिश्चेतुं दृढ़ सुरक्षा

0: व्याहृता अस्ति। मध्यप्रदेशे दतिया विधानसभा क्षेत्रस्य गणना प्रशासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालये भविष्यति, यत्र 20 गणना पट्टिकाः स्थापिताः सन्ति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मू अद्य ओडिशा राज्यस्य त्रिदिवसीयायां यात्रायां भविष्यति। यात्रावधौ राष्ट्रपतिः गंजम जनपदस्य कटक भुवनेश्वर ब्रह्मपुर तप्तापानी स्थलेषु शैक्षणिक सांस्कृतिक आधिकारिक कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति। अद्य राष्ट्रपतिः कटकनगरे जगद्गुरु कृपालु विश्वविद्यालयस्य उद्घाटनं करिष्यति। एकादश दिनात्मकानां स्पर्धानां समापनानन्तरं ह्यः ग्लास्गो नगरे भव्य समारोहेण राष्ट्रमंडल क्रीडा सम्पन्ना। भारतम् 41 पदकैः सह पदकतालिकायां चतुर्थ स्थानम् अधिगतवत्। एतेषु 13 स्वर्णपदकानि, 17 रजतपदकानि, 9 कांस्यपदकानि च सम्मिलितानि सन्ति इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के दून हमारी चैनल से बोल रहे हैं। समय मिला ये श्रोताओं सुबह के ठीक 7 बजे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात।

सुप्रभात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यारभरा नमस्कार। श्रोताओं आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं हमारी भारतीय संस्कृति जो हमें हर दिन उत्सव मनाने का मौका देती है, हर महीने हर रोज हम कुछ न कुछ ऐसा सेलिब्रेट जरूर करते हैं जो हमारे लिए ईश्वर के प्रति आस्था का प्रतीक होता है, और यही आस्था हमारे मन में भी सकारात्मकता लाती है। और उसी के साथ हम अपनी दिनचर्या को शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी हम आज के दिन में सोच रहे हैं अच्छा काम वो हम जरूर कर सकें। और देखिए ऐसे ही एक पावन महीने की शुरुआत हो गई है हमारे लिए सावन के महीने की। जी हाँ, ये सावन का महीना जो हमारे मन में जितना उल्लास भरता है कि हम उसको बयां नहीं कर सकते। नाम मात्र से ही हमारे मन में खुशी उठती है क्योंकि प्रकृति हमारे साथ होती है, ये धरा हमारे साथ होती है, ये मौसम हमारे साथ होता है, ये बादल हमारे साथ होते हैं, ये हवा हमारे साथ होती है, और हवा के साथ साथ गिरती हुई बूंदें जो है वो हमारे साथ होती है, टिप टिप बरसता पानी हमारे साथ होता है, और पानी जब सड़क पर गिरता है जमीन पर गिरता है तो उसके उठते हुए जो बुलबुले होते हैं वो हमारे साथ होते हैं, और इसी मधुर धुन में हमारा मन भी खो जाता है। तो क्यों नहीं सावन के महीने को हम ईश्वर की आराधना के साथ मनाएं, और ये ईश्वर की आराधना और ईश्वर में वो जो परमपिता है भगवान शिव, जिन्हें खुद ये सावन का महीना बहुत ही अत्यधिक पसंद है, और इसीलिए इस पूरे महीने सावन के महीने में हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। अपने हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह से जो हमारा नया साल शुरू होता है उसका पांचवा महीना सावन का महीना होता है, और इसे हम कह सकते हैं कि वर्षा की ऋतु भी ये होती है और बहुत अधिक गर्मी भी होती है इस समय में। और अपने अगर बीकानेर की अगर बात करें तो हम देख रहे हैं कि बारिश के लिए तो एकदम अकाल सा ही पड़ गया है। पिछले एक डेढ़ महीने से छुटपुट बारिश की जो सूचना है वो तो हमें मिल रही है, थोड़ा बहुत हम भी देख रहे हैं हमारे आसपास में बारिश हो रही है, लेकिन जो एक झूम के सावन आने वाली बात है वो अभी तक नहीं हो पाई है। तो देखते हैं अब सावन का महीना शुरू हो गया है, भगवान कब उन पर मेहरबान होते हैं और झूम के सावन बरसता है। सावन का महीना जिसे सावन श्रावण मास भी कहा जाता है, शिव की आराधना करने का उनका आशीर्वाद पाने का बहुत अच्छा माध्यम है। सोमवार के दिन इसके व्रत भी किए जाते हैं और पूर्ण भक्त भाव से समर्पण के साथ भगवान के शिव की पूजा की जाती है, और शिव कहते हैं कि हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस सृष्टि में शिव का जो नाम है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान शिव खुद कहते हैं कि द्वादश स्वापी माशेषु श्रावणो मेलति वल्लभम, श्रावण वह

यान्मनित्यं तेनासु श्रवणमते श्रवणक्षं पौर्णिमास्यां तत्नेपि श्रावणस्मृतः यस्य श्रावणमात्रेण सिद्धिः श्रावणोऽप्येते। अर्थात मासी में श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म्य सुनने से इसका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रवण कहा जाता है और इसीलिए इसका नाम श्रावण माह पड़ा है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है और इस कारण भी इसे श्रावण माह कहा जाता है। इसके महात्म्य के श्रवण मास से

हेतु श्रावण माह पड़ा है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है और इस कारण भी इसे श्रावण माह कहा जाता है। इसके महत्व के श्रवण मास से सिद्धि प्राप्त होती है और हमारे जो भी कार्य हैं वो सफल होते हैं, और इन्हीं सफल कार्यों के लिए श्रोताओं हम श्रावण माह को मनाते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। और देखिए, शिव तो वैसे भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान शिव की आराधना, व्रत और हरियाली के लिए प्रसिद्ध ये महीना हम सभी के लिए पावन है। शिव की आराधना करना हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और देखिए, इस महीने आने वाले त्योहार भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नागपंचमी, हरियाली तीज, रक्षाबंधन जैसे प्रमुख त्योहार इस महीने में आते हैं, तो क्यों ना इस सावन के माह को भगवान शिव की आराधना से सेलिब्रेट किया जाए। और ये संदेश देता है हमें ये माह कि पर्यावरण का संरक्षण करना भी बहुत जरूरी है। कैसा भी पौधा हो, इस माह में अगर आपने लगाया है, पिछले समय में अगर आपने लगाया है, तो ये बारिश की बूंदें पड़ते ही प्रकृति उसे अपने अंदर रोपित कर लेती है, और ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा संदेश होता है, और ये हरियाली हमें शुद्धता प्रदान करती है। तो इस पावन माह में शिव की आराधना के साथ साथ प्रकृति का संरक्षण करना भी बहुत जरूरी है।

श्रोताओं, आपने अभी भजन सुना। जैसा कि हमने चर्चा करी आपसे कि सावन का महीना हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण, और अगर आज के दिन विशेष की बात करते हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। जी हाँ, आज है मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती। एक राष्ट्र कवि जिनका जन्म 3 अगस्त 1886 को चिरगांव झांसी जिला उत्तर प्रदेश में हुआ। पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त और गुरु का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऐसे गुरु का मिलना आपके जीवन को नई राह दिखाना था, जो उनके गुरु ने बखूबी किया और आपने भी उनके आदेशों की अनुपालना की और अपनी दिशा में आगे बढ़ते चले गए। माता पिता सरयू देवी और सेठ रामचरण गुप्त के पुत्र मैथिली शरण जी, जिन्होंने खड़ी बोली के प्रथम कवि के रूप में उपलब्धि प्राप्त की। अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने इस भाषा को समृद्ध किया और आम जन तक ये बात पहुंचाई। उनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना, देश प्रेम और समाज सुधार की भावनाएं कूट कूट कर भरी हुई होती है। आपकी प्रमुख रचनाओं में भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, जयद्रथ व्रत और द्वापर मुख्य हैं, और इन्हीं रचनाओं के कारण उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे। श्रोताओं, ऐसे अद्भुत लोगों का हमारे इस देश में होना बहुत महत्वपूर्ण है। उनके महाकाव्य साकेत, जो कि 1931 में लिखा गया, और यशोधरा 1932 में आपने लिखा, खंडकाव्य जयद्रथ व्रत 1910 में, भारत भारती 1912 में और पंचवटी 1925 में लिखा गया। लेखनी अपने आप में बहुत कुछ बोलती है और यही लेखनी आपके काव्यों में थी, और ये काव्य आप और हम सभी के लिए बहुत ही संवेदनशील रहे। सुधार के साथ साथ आम लोगों में जागरूकता फैलाना और राष्ट्रीय नैतिक चेतना लाना आपकी कृतियों में विशेष स्थान मिलता, और इसी वजह से उन्हें आज हम एक कवि के रूप में याद करते हैं। साकेत जो उनका काव्य है, उसके अंदर राम के द्वारा भी कहलाते हैं कि संदेश यहां नहीं स्वर्ण का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। राम अपने कर्म से इस पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाने आए हैं, ऐसा लेखन उनकी लेखनी में था। वे अत्यंत उदारता से कहते हैं, मैं मनुष्यता को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूं, किंतु पतित को पशु कहना भी कभी नहीं सह सकता हूं। ऐसी लेखनी जो सीधे हमारे मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है, उसके लिए जाने जाते हैं कवि मैथिली शरण गुप्त, जिनकी जयंती आज हम मना रहे हैं। नारी मात्र की महत्ता का प्रतिपादन करना आपकी कविताओं में मुख्य रहा। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, ये पंक्तियां जब हम सुनते हैं तो हमें

आज भी झकझोरती हैं और नमन करती हैं ऐसे कवियों को जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारी राष्ट्र के लिए इतनी सुंदर पंक्तियां दी और हमारे राष्ट्र को महत्वपूर्ण बनाया। क्योंकि ये भारत देश हमारा ऐसा ही देश है जिसमें इतने महान महान लोग पैदा हुए जिन्होंने अपना सब कुछ केवल देश के लिए न्यौछावर किया, प्राणों की आहुति दी, इसी के साथ ऐसे शब्दों के साथ देश को आह्वान किया कि लोग इन शब्दों को सुन करके इस आग में कूद पड़े कि हमें अपने देश को बचाना है, हमारे भारत माता को मुक्त करना है। और ऐसे ही राष्ट्रकवियों को सम्मान हम देते हैं और उनकी जयंती पर शत शत नमन करते हैं।

0: कृपया ध्यान दें, पता है जन विश्वास अधिनियम 2026 के द्वारा रेलवे अधिनियम 1989 की कई धाराओं में बदलाव किया गया है।
1: हाँ, अब ट्रेन में बिना टिकट या अनाधिकृत टिकट, धूम्रपान जैसे अपराधों पर जुर्माना राशि बढ़ाई गई है।
0: अब रेल परिसर या ट्रेन में धूम्रपान करते पाए जाने पर नए अधिनियम में 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
1: जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसके द्वारा 2000 से 5000 रुपए तक का आर्थिक दंड दिया जा सकता है।
0: ये जन विश्वास अधिनियम ट्रेन में यात्रियों को सुरक्षित, संरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने और रेल प्रशासन पर आपका भरोसा कायम रखने के लिए बनाया गया है।
1: उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा जनहित में जारी। जब सुन

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर

0: करें।
1: कृपया ध्यान दें, पता है जन विश्वास अधिनियम 2026 के द्वारा रेलवे अधिनियम 1989 की कई धाराओं में बदलाव किया गया है।
2: हाँ, अब ट्रेन में बिना टिकट या अनाधिकृत टिकट धूम्रपान जैसे अपराधों पर जुर्माना राशि बढ़ाई गई है।
1: अब रेल परिसर या ट्रेन में धूम्रपान करते पाए जाने पर नए अधिनियम में 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
2: जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसके द्वारा 2000 से 5000 रुपए तक का आर्थिक दंड दिया जा सकता है।
1: ये जन विश्वास अधिनियम ट्रेन में यात्रियों को सुरक्षित संरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने और रेल प्रशासन पर आपका भरोसा कायम रखने के लिए बनाया गया है।
2: उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए समय समय पर अपने शारीरिक जो क्रियाएं हैं प्रक्रियाएं हैं उनके ऊपर ध्यान देना जरूरी होता है। और कई बार ऐसा भी कहा जाता है, देखिए अब जो पावन ये महीना शुरू हुआ है या हम ये कहें कि जो चौमासा शुरू हुआ है, चातुर्मास जो शुरू हुआ है, वो कहते हैं कि बॉडी को डिटॉक्स करने का बहुत अच्छा तरीका होता है, क्योंकि इसके अंदर अधिकतर लोग जो हैं वो व्रत उपवास करते हैं। और व्रत जब हम करते हैं श्रोताओं, तो किसी भी प्रकार का गरिष्ठ भोजन हम नहीं करते हैं और शुद्ध और सात्विक भोजन ही हम सेवन करते हैं, जिससे हमें पोषण तो भरपूर मिलता है लेकिन हमारे जो शरीर के अंदर जितने भी ऐसे तत्व हैं जो हानिकारक हैं हमारे लिए, वो इस सुपाच्य भोजन से, तरल पदार्थों से डिटॉक्स हो जाते हैं और हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ हो जाता है और हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। यही हल्कापन श्रोताओं हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, कि जो हम आजकल अपने आप को डिजिटल युग में ले जा रहे हैं उसके रूप में भी हमें डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि कुछ समय के लिए हमें स्मार्टफोन, कंप्यूटर और सोशल मीडिया जैसे डिजिटल उपकरणों से जानबूझकर दूरी बनाना है। हमारी जो कार्यशैली है या जो हमारी दिनचर्या है, वो श्रोताओं आप और हम सभी जानते हैं कि इन सब गैजेट से दूर रहना हमारे लिए असंभव सा है, लेकिन अगर हमें डिजिटली डिटॉक्स करना है तो हमें इन सब से दूरी बनानी ही पड़ेगी। और दूरी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसका उद्देश्य है कि मानसिक तनाव को घटाया जाए और वास्तविक जीवन में दोबारा से अपने आप को जोड़ा जाए। स्क्रीन से दूरी यानी कि फोन, टीवी, लैपटॉप का उपयोग कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए बंद कर सकते हैं। अगर ऐसा संभव नहीं है कि हम पूरे दिन के लिए आप बंद कर सकें, तो हम दिन के चंद कुछ ऐसे घंटे अपने आप के लिए निकालें जिसके जब हम इन गैजेट से दूर रहें। होगा क्या श्रोताओं, इससे इससे हमें मानसिक शांति मिलेगी, दिमाग को आराम मिलेगा। जो ऐसी सूचनाएं जो हर वक्त दिमाग में टिक टिक करती रहती हैं, उनसे हमें आराम मिलेगा। कई बार ऐसा होता है हम इस मकर जाल में ऐसा उलझे हुए हैं कि हम अगर कई देर तक हमारा मोबाइल में कोई बीप नहीं आती है, कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती है, कोई मैसेज का साउंड नहीं सुनाई देता है, तो हम फोन को उठा के चेक करते हैं कि कहीं कोई बंद तो नहीं है, स्विच ऑफ तो नहीं हो गया, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई, क्योंकि हमारी आदत ऐसी हो गई है। इन्हीं आदतों से बचने के लिए, अपने आप को इनसे दूरी बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन्हें या तो स्विच ऑफ करें या स्वतः ही इनसे दूरी बनाए। आदतें आपकी और हमारे स्वयं की ही डाली हुई है कि सोते समय ये मोबाइल हमारे हाथ में जरूर होता है, तो कोशिश करें कि इसको भी हम दूरी बनाएं। सोते समय तो कम से कम मोबाइल को ना ही देखें तो ये बेहतर है, जिससे कि हम पर्याप्त नींद ले सकेंगे। और श्रोताओं, सबसे अच्छी बात ये कि हम जितना इनसे दूर रहेंगे उतना ही हम अपने परिवार के साथ रहेंगे। और भला बताइए, परिवार के साथ रहना कौन नहीं चाहता, हमारे नन्हे मुन्नों के साथ रहना कौन नहीं चाहता और उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना कौन नहीं चाहता। और इसीलिए आज जो है शुरुआत हम कर रहे हैं विश्व स्तनपान सप्ताह की। 1 से लेकर 7 तारीख तक ये सप्ताह मनाया जाएगा। श्रोताओं, आप और हम सभी जानते हैं कि माँ का दूध बच्चों के लिए अमृत है और यही अमृत जब बच्चों को नहीं मिल पाता है तो फिर उनके स्वास्थ्य में गिरावट होती है या उनका भरपूर विकास नहीं हो पाता है, या हम कहें कि उन्हें जो पोषण मिलना चाहिए वो पोषण नहीं मिल पाता है। इसीलिए अति आवश्यक है कि बच्चों को माँ का दूध कम से कम 6 महीने तक तो जरूर पिलाया जाए। समय के साथ साथ देखिए कितना परिवर्तन हुआ है। हम देख रहे हैं कि आजकल तो मदर मिल्क बैंक भी बन गए हैं। कुछ ऐसी माताएं जो किसी कारणवश अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पा रही हैं या उनके स्तन से दूध नहीं आ पा रहा है, मेडिकल कुछ समस्या है या फिजिकली उन्हें कुछ वो अनफिट है, तो ऐसा वो नहीं कर पा रही हैं। इसीलिए कुछ माओं का ये दायित्व बन जाता है कि वो अपने दूध को दान करें और ये दान उन बच्चों के काम आता है जिनकी मैं उन्हें दूध नहीं

हैं। श्रोताओं, कहते हैं कि दान महान होता है, तो ऐसे में अगर ये माएं अपना दूध दान करके बच्चों को अगर उनका जीवन दे रही हैं, उन्हें पोषण दे रही हैं, तो ऐसी माताओं को हमारा सैल्यूट है कि वो अपना बेहतर काम, अपने बच्चों को तो पाल ही रही हैं, स्तनपान करा ही रही हैं, लेकिन एक माँ के रूप में वो उन बच्चों का भी ख्याल रख रही हैं जो इस धरा पर है लेकिन किसी कारणवश वो अपनी माँ का दूध नहीं पी पा रहे हैं। तो श्रोताओं, बच्चे तो आप और हम सभी जानते ही हैं कि हमारी जान है, और ये जान हमारे लिए इतनी अनमोल है कि हम खुद नहीं समझ सकते कि किस प्रकार से इनकी जो ये जो कलियां हमारे जीवन में खिलती हैं, इनको किस प्रकार से समेटा जाए, सहेजा जाए, या इनको किस प्रकार से जीवन दान दिया जाए, किस प्रकार से इन्हें पाला पोसा जाए कि ये अपने जीवन को ऊंचाइयों तक लेकर के जाए। और इन्हीं ऊंचाइयों पर जाने के साथ साथ होता हूँ आप और हम सभी भी गर्व महसूस करते हैं कि जब हम तिरंगा लहराता हुआ किसी पोडियम पर देखते हैं, और यही तिरंगा लहराता हुआ हमने देखा कॉमनवेल्थ गेम्स में, और खासकर हमारी बेटियों के रूप में जिन्होंने स्वर्ण जो सफलता है वो हासिल करी है, और हमारे पुरुषों ने भी, बच्चों ने भी ये सफलताएं हासिल करी हैं। तो ऐसे सभी लोगों के लिए हमारा भारत गर्व महसूस करता है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, आगे दीजिए हमें नमस्कार।

रवि के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत आपने सुना। मोहम्मद रफी के स्वर में फिल्म का नाम था नजरेना। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं। आवाजें हैं आमिर भाई और श्याम कुमार की। फिल्म का नाम है

संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के डोला मारू चैनल से। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में। यह शैलेंद्र का लिखा गीत, मुकेश की आवाज में। फिल्म का नाम है आशिक।

20, 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: सावन का महीना पवन करे शोर,
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
2: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर,
1: पवन करे शोर।

ये आवाजें थी लता मंगेशकर और मुकेश की। फिल्म का नाम था मिलन। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था।

0: आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम है आई मिलन की बेला। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोल हमारा चैनल है। सुबह के 8 बज रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। सही मानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। कहा, विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज से लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोग मारे गए और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देशभर में हर रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
4: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम को कटक के पास बनारा में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति भुवनेश्वर से ब्रह्मपुर तक एक विशेष ट्रेन से यात्रा करेंगी और फिर सड़क मार्ग से गंजाम जिले के तप्तपानी जाएंगी, जहां वो मां कान्हुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। वो रात में गोलाबंध स्थित आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज में रुकेंगी। भुवनेश्वर और कटक में पुलिस की लगभग 40 प्लाटून तैनात करके सुरक्षा के व्यापक किए गए हैं। राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान निर्धारित स्थलों के ऊपर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
3: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की

उसके बाद 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती शुरू होगी। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश कर

0: मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और एक्सिट AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बनाए 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है।
2: इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अंतर्गत भारत ने परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी इस विषय को अपनाया है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान एवं सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बैठक में सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार, डेटा की पहुंच बढ़ाने और आर्थिक व क्षेत्रीय सांख्यिकी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में एआई की तैयारी विषय पर 2 विशेष सह कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है की ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। इस हमले की योजना पहले से बनाई गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि हुर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन को लेकर कोई समझौता हो सकता है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर भी समझौता किया जाएगा। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर एक आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। यह विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। 9 लोग मौके पर ही मारे गए, जबकि 5 और लोगों की मौत की पुष्टि काबल अस्पताल में हुई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार को निकाले जाने की परंपरा है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पाल की जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा।
3: मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से आज श्रावण मास की पहली सवारी निकलेगी। इस दौरान भगवान महाकाल चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे और श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। दोपहर 3:30 बजे सभा मंडप में पूजन होगा, जबकि शाम 4 बजे सवारी मंदिर से रवाना होगी। सवारी गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुंचेगी। यहां शिप्रा नदी के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक और आरती की जाएगी। इसके बाद सवारी अलग अलग रास्तों से होते हुए शाम 7 बजे मंदिर लौटेगी। महाकाल मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में एक भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम के गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता

0: समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। खेल मंत्रालय के सचिव हरि रंजन ने कहा है कि देश के खिलाड़ियों ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया।
1: 2026 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में कई खेलों की विधाओं में कटौती होने के बावजूद भी देश की टीम ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि पहले से और हमारी अपेक्षाओं से कहीं गुना ज्यादा, तो ये हम सबके लिए एक बहुत सुखद संकेत है कि शायद वो जो एक टर्निंग पॉइंट स्पोर्ट्स की दिशा में देश में आना चाहिए वो उसका समय आ गया है। और 2030 में हम अगला कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में अहमदाबाद शहर में आयोजित करने वाले हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही सुखद संयोग है और प्रतिष्ठा का विषय भी है।
0: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नशे के खिलाफ 100 सप्ताह के अभियान, राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और मानसून से जुड़ी खबरें सबसे ऊपर छाई हुई हैं। हिंदुस्तान का पहला शीर्ष समाचार है, नशे के खिलाफ देश ने 100 सप्ताह की जंग छेड़ी। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को सुर्खी बनाया है, ड्रग्स दुश्मन देशों की साजिश। नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण ने भी प्रधानमंत्री की कही इसी बात को शीर्ष समाचार बनाया है, जबकि जनसत्ता ने अमेरिका ईरान युद्ध के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्य को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान पर हमले रोके बशर्ते शीघ्र हो करार। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की उपलब्धि के समाचार को शीर्षक दिया है, इस बार हमारे 54% गोल्ड बॉक्सिंग में आए, कुल मेडल में से 69% सिर्फ 3 खेलों में जीते। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है, हादसों के हाईवे पत्र सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता को रेखांकित करते हुए सवाल करता है कि जब वैकल्पिक ईंधन और वाहनों की प्रदूषण जांच सरकार की प्राथमिकता है तो ऐसा ही अभियान सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्यों नहीं चलाया जाता। पत्र का कहना है कि बीते गुरुवार को लोकसभा में सड़क दुर्घटनाओं के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए वो डराने वाले हैं। कश्मीर में हथियारों से लैस 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के समाचार को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए इसे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी बताया है। पुलवामा जिले में एक आतंकी से हैंड ग्रेनेड, राष्ट्र विरोधी पोस्टर और अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद होने की खबर को पत्र ने बॉक्स में प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, बारामूला में आतंकियों का मददगार गिरफ्तार।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्ति युवा अभियान आरंभ किया, कहा विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोगों की मौत। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ठीक 8:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सौरभ। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर मेघना शर्मा का कविता पाठ।
1: मेरी पहली कविता का शीर्षक है स्पंदन। रक्त शिला की छांव तले अब उर्वर बीज तड़पता है, क्रंदन चक्षु सांझ ढले नीर गगन छलकता है। बदली उठती संघर्षों की उम्मीदों की वो तितली सी, देख ज्वार उमड़े सुरताल चितज पार से उठी घटा, गुंजित हो महकी अमराई हितराई और शर्माई, विलुप्त हो गई नब से सारी क्षण भंगुर सी उपमाएं, कोपल कोपल भेद के परते निकली वक्ष से धरती के उर्वर, और चंद्रमा कला बढ़ी ज्यो झरझर हो स्पंदन निर्झर, ज्यो झरझर हो स्पंदन निर्झर। अगली प्रस्तुति है आहुतियां। जीवन का हवन मांगता है न जाने कितनी ही सपनों की आहुतियां, जीवन का हवन मांगता है न जाने कितने ही सपनों की आहुतियां, यदा कदा छन से झनकृत कोई क्षण कोई पल आ भी जाता है उधार सा, तो मैं ब्याज चुकाना होता है उसका ऋण, होने को उरण अपने प्रारब्ध के कंटकों से और बीतने को उस सरंग से, जहां से निकलता है उबलते पानी सा झंझावतों भरा वक्त, इम्तिहानों से परिपूर्ण घड़ी की टिक टिक के साथ चलता, कभी भूले भटके आ भी जाती है सुख की ठंडी बयार, तो अगले ही क्षण आरोपों के दल दल समक्ष आ खड़े होते हैं लील में राही के साहस को, निहारती रह जाती हैं पलकें दूर बहुत दूर मंजिल को, चितित सी भूल भुलैया माने और फिर उजाला दिखता है केवल तभी जब होता है आहूत एक और सुनहरा सपना, जब होता है आहूत एक और सुनहरा सपना जीवन के तप में। अगली रचना है अरे कोई तो पूछो। अरे कोई तो पूछो हाल अमला की खाली कोटरों से, कि कौन दे गया घाव गहरे जो वक्त के साथ बन गए कभी न भर सकने वाले नासूर। हरे कोई तो पूछो हाल अमिया की खाली कोटरों से, कि कौन दे गया घाव गहरे जो वक्त के साथ बन गए कभी न भर सकने वाले नासूर। हरे कोई तो पूछो हाल विराट दूर तक फैली उस सूखी धरती की फटती खाल से, जिसने वर्षों से नहीं सींचा हृदय को अपने, नहीं किया उलाहना किसी से, जीती रही बस कटीली झाड़ियों को गहना बनाए। अरे कोई तो पूछो हाल उस आसमान का जो होकर भी सबसे ऊंचा, दूर रहा अपनी तन्हाई को जीता हर शय से अनजान, तारे भी टूट टूट कर कर गए उसे उसके वक्ष को जैसे अपने ही हृदय से वीरान, तारे भी टूट टूट कर कर गए उसे उसके वक्ष को जैसे अपने ही हृदय से वीरान। हर एक कोई तो पूछो हाल उस प्रेयसी का जिसका प्रियतम छोड़ गया उसे, मातृभूमि की रक्षा में देश हित से भरा कर गया उसकी दुनिया चलती फिरती दिखती सी मगर हर दिशा से अनजान, चलती फिरती दिखती सी मगर हर दिशा से अनजान। एक छोटी सी रचना प्रस्तुत कर रही हूं जिसका शीर्षक है आंसू। आंसू कभी पलकों पर ठहरा तो हुआ विवशता का गान, आंसू

आंखों पर ठहरा तो हुआ व्यवस्था का गान, आंसू छलकता बाहर निकला तो हुआ दर्द का आह्वान, आंसू छलकता बाहर निकला तो हुआ दर्द का आह्वान, आंसू न निकला आंख से तो व्यक्ति बना महान, आंसू न निकला आंख से तो व्यक्ति बना महान, आंसू जो सूख गया भीतर तो समझो जीत लिया जहान, आंसू जो सूख गया भीतर तो समझो जीत लिया जहान। अगली पंक्ति अपने आप को परिभाषित करती सी, स्त्री हूं मैं। नीले आसमान में वजूद है मेरा, नीले आसमान में वजूद है मेरा, वो संघर्ष की छोटी सी बदली, साहस की तितली, हां वही हूं मैं। घर घर हर कोने में अस्तित्व है मेरा, वो रिश्तों को सहेज दी मासूम सी कली, खिलती महकती, हां वही हूं मैं। सागर की लहरों पर अस्तित्व है मेरा, वो बूंद बूंद की लड़ी कभी कश्ती को छूती, साहिल से मिलती, हां वही हूं मैं। कविता के बहाव में अस्तित्व है मेरा, वो कलम वो कल्पना गजल में समाई, गहराई अनंत ऊंचाई, हां वही हूं मैं। कहां खोज रहे हो मुझे, कहां खोज रहे हो मुझे, अस्तित्व है मेरा हर उम्मीद हर दिशा हर तलाश में, हां वही हूं मैं। स्त्री हूं मैं, स्त्री हूं मैं, स्त्री हूं मैं। एक कविता अपनी मातृभाषा हिंदी पर, हिंदी हूं मैं। दौड़ती भागती इधर उधर लुक छुप, दौड़ती भागती इधर उधर लुक छुप, युवाओं की जुबान तलाशती, अपने धूमिल होते जा रहे अस्तित्व के मोतियों को समेटती, विदेशी अंधकार मई सुरंग से गुजरती, अपनी ही जमीन पर खुद के काबिज होने बने रहने के गुर संभालती, चली जा रही हूं एक ऐसे क्षितिज जिसका और भी है और छोर भी, जिसका और भी है और छोर भी, बस तंतुओं को जोड़े रखने में चाहती हूं सहयोग स्वजनों का, बस तंतुओं को जोड़े रखने में चाहती हूं सहयोग स्वजनों का, स्वयं तलाश लूंगी भोर, स्वयं तलाश लूंगी भोर, इतनी सरस हूं समृद्ध हूं, प्रेम के धागे संजोती संवाद के दायरे बढ़ाती, हिंदी हूं मैं। अनंत काल से अनंत काल तक सफर में हम सफर बनती, अपने मुकाम स्वयं तय करती, हिंदी हूं मैं। एक इबारत की कहानी कहती अगली रचना का शीर्षक ही है इबारत, कोई अनूठी सी इबारत जीवन के सफर में यूं कभी कभी मालूम होती है, कोई अनूठी सी इबारत जीवन के सफर में यूं कभी कभी मालूम होती है, रात का कोहरा और सुबह की धुंध अक्सर जब इकसार मालूम होती है, रोशन चांद जब दोपहर अनंत गगन में एक फीका सा धब्बा मालूम होता है, सूरज नम भीगा सा व्रत ओठ में बेबस मेघाचन्न तब मालूम होता है, आशाओं के दीप भी मद्दम लो अब घुप अंधेरों के साम्राज्य, आशाओं से बलवती अब मालूम होते हैं, खोल चिटकने मन के फिर हौसले निष्प्राण, सांस की आंस में जिंदा कभी मृत मालूम होते हैं। यूं तो सफर है सफर था, लम्हे इधर गिरे कुछ उधर, थमा हुआ वक्त नदारद जीवन शिथिल पदचिन्ह और षड्यंत्रों के

0: दलदल काबिज मालूम होते हैं। तभी कोई दिव्य आभा तैरती क्षितिज पर इंद्रधनुष से रंगीन इरादों की उड़ान को करती संतृप्त। तभी कोई दिव्य आभा तैरती क्षितिज पर इंद्रधनुष से रंगीन इरादों की उड़ान को करती संतृप्त। जीव और अंतस में पहरती धूल तलक चहकती मालूम होती है। मालूम होते हैं कायदे समीकरण आचार और व्यवहार सभी पंक्तिबद्ध जन्मते सुविचार। झंकृत सितार जीवन के तार तब रह रहकर मालूम होते हैं, रह रहकर मालूम होते हैं।
1: सौरभ कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर मेघना शर्मा का कविता पाठ।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का।

वृक्षारोपण धरा के लिए बहुत जरूरी है। इस समय आप वृक्षारोपण का संकल्प ले सकते हैं।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोल अमर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर सुबह के 8:45 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम समाचार तरंग।

0: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंग। श्रोताओं, आज के इस अंक में मैं माधुरी वशिष्ठ
1: और मैं रितिका गुप्ता
0: आपका स्वागत करते हैं। प्रस्तुत है सप्ताह भर की सुर्खियां।
1: कोटा की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी का गोल्डन दाव, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता।
0: जयपुर में कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एम्स जोधपुर के दीक्षांत समारोह में शिरकत की।
0: राजस्थान ने अंगदान शपथ अभियान में पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया।
1: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का डीग, भरतपुर, उदयपुर और राजसमंद दौरा।
0: बाघों और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर कई जागरूकता कार्यक्रम।
1: और जयपुर नगर निगम की अनूठी पहल, सावन के महीने में मंदिरों से बिल्व पत्र और फूल इकट्ठे कर जैविक खाद बनाई जाएगी।
0: कोटा की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी ने ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड की चेंटल रीड को 5-0 से हराया। अरुंधति की इस जीत को न सिर्फ उनके परिवार ने बल्कि पूरे प्रदेश ने खुशी और उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया है। अरुंधति प्रदेश से ऐसी पहली मुक्केबाज बन गई है जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। कोटा से हमारे संवाददाता आशीष मेहता ने बताया कि अरुंधति के जीतने के बाद शहर में जश्न का सा माहौल हो गया।
2: शहर की बेटी अरुंधति चौधरी की जीत पर शिक्षा नगरी कोटा में जश्न का माहौल है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में बॉक्सिंग का गोल्ड मेडल जीतकर अरुंधति ने पूरे देश के साथ साथ अपने शहर कोटा का भी सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। गलियों से लेकर चौराहों तक इस समय बस एक ही नाम गूंज रहा है, ढोल नगाड़ों की थाप के बीच कोटावासी अपने स्वर्णिम पंच वाली गोल्डन गर्ल की ऐतिहासिक जीत का जश्न मना रहे हैं।
1: जयपुर में कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ विषय पर 3 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। न्याय तक आसान और जल्द पहुंच सुनिश्चित करने में मध्यस्थता की भूमिका पर विचार विमर्श किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मध्यस्थता, संवाद, सहमति और विश्वास पर आधारित विवाद समाधान की प्रभावी व्यवस्था है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में मध्यस्थता केवल एक विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन चुकी है। उन्होंने कहा कि संवाद और मध्यस्थता से वर्षों पुराने विवादों का स्थायी समाधान संभव होता है।
3: संवाद और मध्यस्थता की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि हार जीत से आगे बढ़कर समाधान की बात करती है। यह केवल एक कानूनी या प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि हमारे समाज की वह सांस्कृतिक शक्ति है जो सदियों से हमें आपस में जोड़े हुए है। आज हमारी अदालतों पर मुकदमों का भारी बोझ, न्याय में देरी से आम आदमी का समय, पैसा और मानसिक शांति तीनों छिन जाते हैं। ऐसे समय में मध्यस्थता एक वैकल्पिक मार्ग नहीं बल्कि समय की सबसे बड़ी मांग बन चुकी है।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एम्स जोधपुर के दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को उपाधियां तथा मेधावी छात्रों को पदक प्रदान किए। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा, शिक्षा, शोध और नवाचार से स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाया जा सकता है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने युवा डॉक्टरों से सेवा, संवेदनशीलता और समर्पण की भावना के साथ समाज सेवा करने का आह्वान किया।
4: एम्स जोधपुर आज हमारे देश के टॉप 10 मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में से एक है और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है। यहाँ 5वें दीक्षांत समारोह में 900 बच्चों को, जो जिसमें हमारे एमबीबीएस के डॉक्टर्स हैं, पीजी डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग प्रोफेशनल्स हैं, सभी को उनके डिग्रीज और मेडल्स दिए गए हैं।
1: राजस्थान ने अंगदान शपथ अभियान में पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। स्वास्थ्य विभाग के स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन सोटो की संयुक्त निदेशक डॉ. चित्रा सिंह ने बताया कि अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सोटो और शिक्षा चिकित्सा निदेशालय की ओर से राज्यव्यापी अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 1,17,000 से अधिक लोगों ने अंगदान की शपथ ली है।
5: इसी विषय में राजस्थान ने ऑर्गन डोनेशन

0: एजिस यानी कि जो राजस्थान की जनता है उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि अगर ईश्वर कभी ना करे अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके मस्तिष्क की मृत्यु हो जाती है तो उनके ऑर्गन दूसरों को लगाए जा सके, ऐसा उन्होंने प्लेज किया है। राजस्थान में 1,17,976 जो है प्लेजेस करके पहला स्थान प्राप्त किया है और इसमें झुंझुनू, उसके बाद हनुमानगढ़ और चूरू ये सर्वोपरि प्लेज कराने में रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री भूजनलाल शर्मा बीते सप्ताह विभिन्न जिलों के दौरे पर रहे, इनमें डीग, धौलपुर, भरतपुर, उदयपुर और राजसमंद शामिल हैं। उन्होंने प्रदेश को कई विकास कार्यों की सौगात दी। भरतपुर जिले के खेड़ली गुर्जर गांव से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 40 लाख पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में यूनिफॉर्म के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी की। मुख्यमंत्री ने मिशन पढ़ो अभियान के तहत रीडिंग प्रमोशन कैंपेन की भी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि स्कूलों में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो और कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।
2: बच्चों की शिक्षा उन्हें मिलने वाले सही संस्कार काफी हद तक तय करते हैं कि वे भविष्य में क्या बनेंगे और उनका व्यक्तित्व कैसा होगा। इस दृष्टि के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा दे रहे हैं, उपलब्ध कराने लगी अनेक स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। इस बार के बजट में हमने संकल्प लिया था कि हम प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक के 40 लाख से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराएंगे। मुझे प्रसन्नता है गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर और वैर की धरती से भरतपुर जिले से उस संकल्प को धरातल पर उतारा जा रहा है।
1: उन्होंने धौलपुर के फूलपुर स्टेडियम में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उदयपुर से राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। राज्य में निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि इसके लिए सरकार जल्दी ही आरक्षित वार्डों की घोषणा कर देगी, इसके बाद तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। चुनाव की अधिसूचना 15 अगस्त को जारी होगी।
3: देखिए, ये पहली बार है जब सारे नगरीय निकायों के और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एक साथ हो रहे हैं। हालांकि होंगे क्रमिक रूप से, पहले नगरीय निकायों का चुनाव होगा और उसके बाद फिर हम पंचायती राज संस्थाओं का कराएंगे। जो नगरीय निकाय हैं उनके चुनाव 2 चरण में कराएंगे और पंचायती राज के चुनाव 4 चरण में कराएंगे। और हम लोग जो है इसके लिए दिन रात लगे हुए हैं कि ये चुनाव जो है बिल्कुल त्रुटिहीन तरीके से, नियमानुसार तरीके से और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो।
1: प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन के आधार पर कराए जाएंगे। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा झुंझुनू के कमालसर गांव पहुंचे। एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से चुनाव संबंधी सभी तैयारियां इस साल मार्च में ही पूरी कर ली गई थी, अब आगे की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग के जिम्मे है।

0: को अपनी तैयारी करनी है। राज्य निर्वाचन आयोग या पिछड़ा वर्ग आयोग जब भी सरकार के किसी प्रकार की सहयोग की आवश्यकता हो और वो अगर अनुरोध करें तो हम तत्काल जो सहायता उनके अपेक्षा रखते हैं।
1: प्रदेश में बाघ संरक्षण के लिए किए गए विशेष प्रयासों के सकारात्मक नतीजे सामने आ रहे हैं। जहां सरिस्का बाघ अभयारण्य में बाघों की दहाड़ गूंज रही है, वहीं करौली का कैला देवी अभयारण्य रणथंभौर से छोड़े गए बाघों के लिए सुरक्षित आशियाना बन गया है। रणथंभौर बाघ परियोजना बाघों के संरक्षण को लेकर देश भर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पेश है सवाईमाधोपुर से हमारे संवाददाता सतीश वर्मा की रिपोर्ट।
2: वर्ष 1973 में बाघ परियोजना घोषित होने के बाद से रणथंभौर के राष्ट्रीय उद्यान घोषित होने और विश्व स्तर तक प्रसिद्धि के पीछे वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के कठिन परिश्रम मेहनत के साथ साथ स्थानीय ग्रामीणों की सहभागिता भी प्रमुख है। वर्तमान में यहां 1700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में करीब 78 बाघ बाघिन और शावक विचरण कर रहे हैं। लाखों की संख्या में आने वाले देशी विदेशी सैलानियों फोटोग्राफर मूवी मेकर तथा रिसर्चर की पहली पसंद बन चुका है। वर्ष 2008 से राज्य के सरिस्का मुकंदरा रामगढ़ विजधारी तथा करौली धौलपुर

0: स्थापित कर रणथंभौर के अलावा पूरे राज्य के अन्य क्षेत्रों में बाघ संरक्षण सहित पर्यटन तथा रोजगार के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
1: जैसलमेर के रामदेवरा स्थित गोडावण संरक्षण केंद्र में पहली बार 3 गोडावण चूजों को नवनिर्मित रिवाइल्डिंग टनल में छोड़ा गया है। वन विभाग ने इसे गोडावण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताए हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क के ACF अशोक सिंह ने बताया कि रिवाइल्डिंग टनल का उद्देश्य चूजों को प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल बनाना है ताकि उन्हें भविष्य में सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ा जा सके और उनके जीवित रहने की संभावना बढ़ सके।
2: जो ब्रीडिंग सेंटर्स के अंदर तैयार हुए हैं उनको फील्ड में रिलीज करने के लिए पहले रीवा स्ट्रक्चर में ट्रांसलोड किया जाता है और ट्रांसलोड करने के बाद में उनको 4 महीने उसमें रखा जाएगा। उनको फील्ड में सर्वल की ट्रेनिंग मिलने के बाद में फिर फील्ड में रिलीज करने का प्लान है। जीआईबी के रामदेवरा में जो ब्रीडिंग सेंटर है उसके पास में ही रीवा स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है जिसका पैमाना 160x64 मीटर है।
1: जयपुर को हरा भरा और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए सहकारिता विभाग की ओर से सहकार वन विकसित किया जा रहा है। विभाग के सचिव समित शर्मा ने बताया कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने इसके लिए 88 बीघा भूमि उपलब्ध कराई है। लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाला ये सहकार वन पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता का केंद्र बनेगा।
3: बेसिकली एक एनवायरमेंटल सेंटर होगा जहाँ पे फ्रूट ट्रीज लगेंगे, जहाँ पे लोग जा सकेंगे, जहाँ पे वाटर बॉडी होगी, बच्चों के लिए स्थान होगा, पास में जो फॉरेस्ट की भी लैंड है तो वाइल्ड लाइफ के लिए भी स्थान होगा। तो जयपुर में एक ऐसा शांत प्राकृतिक सुरम्य रमणीय स्थल विकसित करने का प्रयास है जहाँ पे की क्षेत्रवासी जा सकें, वहाँ पे अपने बच्चों को ले जा सकें, वॉकिंग ट्रैक भी होगा, अपने स्वास्थ्य में भी सुधार करें, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़े और जयपुर को अधिक से अधिक ऑक्सीजन मिल सके, जयपुर की लंग्स की तरह वो एक्ट करे, लंग्स की तरह काम करे।
1: जयपुर नगर निगम की ओर से एक अनूठी पहल शुरू की गई है। इसके तहत सावन में मंदिरों से बिल्व पत्र और फूल इकट्ठे कर जैविक खाद बनाई जाएगी और ब्यौरा हमारे संवाददाता जितेंद्र द्विवेदी से।
4: जेएमसी की ओर से सावन महीने के हर सोमवार को निगम के इलेक्ट्रिक ऊपर मंदिरों से जैविक पूजन सामग्री एकत्र करेंगे। इनसे मशीन और कंपोस्ट किट के जरिए उच्च गुणवत्ता वाली खाद तैयार की जाएगी। शिवा अर्पणम नाम से तैयार इस खाद को विशेष पैकेट्स में श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत शहर के तारकेश्वर महादेव, झारखंड महादेव, जंगलेश्वर महादेव सहित 5 प्रमुख शिवालयों से की जा रही है।
1: पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र की नेहा सोलंकी ने सर्बल पल्सी और अन्य न्यूरो मोटर समस्याओं से पीड़ित बच्चों के लिए खास कुर्सी विकसित की है जिसे उन्होंने बेक चेयर नाम दिया है। इस कुर्सी के लिए उन्हें नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में ग्रास रूट्स इनोवेटर रिकॉग्निशन 2026 से सम्मानित किया गया। नेहा ने बताया कि ये बेक चेयर बच्चों को सुरक्षित और सही मुद्रा में बैठने में मदद करती है जिससे वे पढ़ाई, थेरेपी और दैनिक गतिविधियां बेहतर ढंग से कर सकेंगी।
5: हमने एक कुर्सी बनाई है जिसका नाम बड़ी चेयर है। ये कुर्सी स्पेशल जो बच्चे हैं उनके लिए काम आती है, जो बैठ नहीं सकते, जिसमें सर्वे पार्सी और दूसरे न्यूरो मसल डिसऑर्डर्स के बच्चों के लिए काम आएगी। ये 4 साल से लेकर 13 साल तक के बच्चों के लिए काम आने वाली कुर्सी है। इसमें बच्चा स्कूल जा सकता है, थेरेपी सेंटर में स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशन थेरेपी कर सकता है और सबसे ज्यादा ये कुर्सी बच्चों को घर में काम आ सकती है जहां वो सबसे ज्यादा अपना समय बिताते हैं। उनके माँ बाप उनको कुर्सी पे छोड़ के अपने दूसरे घर के काम कर सकते हैं।
1: श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर से सोमवार को मुलाकात होगी। अब हमें इजाजत दीजिए। जाने से पहले आपको बता दें कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है रामनाथ।

हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी जयपुर का आमेर चैनल है। अब हमारे केंद्र से सुनिए प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद में आज कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश होंगे, इनमें सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या से जुड़ा संशोधन विधेयक भी शामिल। कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन कॉन्फ्रेंस 2026 जयपुर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ संपन्न हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 संपन्न, भारत ने 13 स्वर्ण सहित कुल 39 पदक जीते। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र में आज कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होगी। लोकसभा में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित कराने का प्रस्ताव रखेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 और केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पारित कराने के लिए सदन में प्रस्तुत करेंगे। जयपुर में आयोजित 3 दिवसीय कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन कॉन्फ्रेंस 2026 जयपुर डिक्लेरेशन ऑन पीस मीडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ जयपुर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ संपन्न हो गई। सम्मेलन में कॉमनवेल्थ देशों के न्यायाधीशों, विधि विशेषज्ञों और मध्यस्थता से जुड़े प्रतिनिधियों ने शांति, मध्यस्थता और विधि के शासन को मजबूत बनाने पर विचार विमर्श किया। समापन सत्र में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने कहा कि मध्यस्थता केवल विवाद समाधान का माध्यम नहीं बल्कि जीवन जीने का दृष्टिकोण है जो विश्वास और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करता है। इस अवसर पर राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा ने न्याययान द डिजिटल वे ऑफ जस्टिस सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया। सम्मेलन में जयपुर घोषणा पत्र के माध्यम से न्याय तक आसान पहुंच, संवाद और मध्यस्थता को बढ़ावा देने की साझा प्रतिबद्धता दोहराई गई। अगले वर्ष इस सम्मेलन का आयोजन बहामास में होगा। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के बाद जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि युवाओं में नशा मुक्त जीवन शैली को बढ़ावा देने और उन्हें राष्ट्र निर्माण से जोड़ने की दिशा में यह अभियान महत्वपूर्ण साबित होगा। अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और स्वस्थ तथा सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है।
1: देशों के समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है अवसाद और अवसाद के साथ में नशा। किसी भी देश को यदि आगे बढ़ जाए युवा शक्ति को सहेजने, संवारने और मोटिवेटेड रखने की सबसे बड़ी आवश्यकता। देश में बढ़ते हुए नशे के प्रभाव को कम करने और नशे से युवा दूर रहे इस दृष्टिकोण से पिछले एक साल से देश के सरकार के विभिन्न मंत्रालय समन्वित रूप से प्रयास कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी के प्रेरक उद्बोधन के साथ 100 सप्ताह तक चलने वाला, लगभग 2 वर्ष तक चलने वाला एक महाअभियान नशा मुक्त युवा फिर विकसित भारत, वो नशे से मुक्त हो, दूर रहे, इस दृष्टिकोण से एक मील का पत्थर अभियान साबित होगा।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करें ताकि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। कल उदयपुर में राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए हर 2 महीने में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में परिषद की बैठक आयोजित की जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उदयपुर जिले के प्रगतिशील किसान प्रेमचंद कपाया को जैविक, पारंपरिक और प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में

उल्लेखनीय कार्य के लिए किसान ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। उन्हें कोटा स्थित जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में ट्रेनर भी नियुक्त किया गया है, जहां वे प्रदेश के किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण देंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन

0: ईमेल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 कल रात संपन्न हुए। इन खेलों में भारत ने 13 स्वर्ण सहित कुल 39 पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक जीतने में महिला खिलाड़ी पुरुषों से आगे रही। 13 स्वर्ण पदकों में से 8 महिला खिलाड़ियों के खाते में गए, जबकि 5 स्वर्ण पदक पुरुष खिलाड़ियों ने हासिल किए। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। भारतीय मुक्केबाजों ने सबसे अधिक 7 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते। इस बार राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज अरुंधति चौधरी ने महिलाओं के 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। वहीं पैरा स्पर्धियों ने भी भारत में 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक अपने नाम किए। समापन समारोह में 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी अहमदाबाद को सौंपी गई। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में आज सावन के पहले सोमवार पर बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। जयपुर के साथ भीलवाड़ा और जैसलमेर में भी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। मौसम केंद्र के अनुसार आज दक्षिणी जिलों में बारिश की गतिविधियां कुछ कम होंगी, जबकि जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और शेखावाटी क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा का दौर जारी रहने के आसार है। इधर सावन के पहले सोमवार पर जयपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों के शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। भक्त भगवान शिव का जल, दूध, बिल्व पत्र और गंगा जल से अभिषेक कर रहे हैं। जगह जगह बम बम भोले और हर हर महादेव की जयकारी गूंज रही है। कांवड़ियों के दल विभिन्न पवित्र सरोवरों से जल लाकर शिव जी का विशेष अभिषेक कर रहे हैं। कई प्रमुख मंदिरों में विशेष श्रृंगार और धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। अजमेर में भी शिवालयों में वातावरण शिवमय बना हुआ है। ब्यौरा दे रही है हमारी संवाददाता।
1: तीर्थराज पुष्कर सहित जिले के शिवालयों में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा हुआ। धर्मेश्वर, शांतिश्वर, पुष्कर, चित्रकूट धाम सहित विभिन्न शिव मंदिरों में रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, दूधाभिषेक कर श्रद्धालुगणों द्वारा धर्म लाभ उठाया जा रहा है। ब्रह्म सरोवर पुष्कर क्षेत्र में कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोषों के साथ शिव भजनों पर नाचते गाते कांवड़ियों द्वारा पवित्र जल पुष्कर सरोवर से ले जाकर विभिन्न शिव मंदिरों में शिवाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की जा रही है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा भक्तों और कांवड़ियों की सुरक्षा सुविधाओं को देखते हुए सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार अजमेर।
0: इस बीच पाली के डाक विभाग ने सावन के अवसर पर डाकघरों में न्यूनतम शुल्क पर गंगाजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। पाली के डाकघर अधीक्षक तरुण कुमार शर्मा ने बताया कि श्रद्धालु डाकघर से पूजा अर्चना के लिए आसानी से गंगाजल प्राप्त कर सकते हैं।
2: डाकघर के माध्यम से जो है गंगाजल बिक्री के लिए उपलब्ध है, तो मेरा सभी से आग्रह है कि इस सावन में जो है शिव जी की विशेष आराधना गंगा जल के माध्यम से करें और गंगा जल जो है पवित्र गंगा जल डाकघर में बिक्री के लिए सभी जगह उपलब्ध है, इसका अधिक से अधिक उपयोग करें सावन में।
0: राजस्थान पुलिस की ओर से आयोजित महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश के सभी जिलों में जागरूकता रैली और जनसंपर्क कार्यक्रम रखे गए। अभियान के माध्यम से महिला सुरक्षा और सम्मान का संदेश आम जन तक पहुंचाया गया। जिला पुलिस अधीक्षकों ने महिला पुलिस कर्मियों, महिला बीट अधिकारियों और कालिका पेट्रोलिंग टीम के साथ संवाद कर उनके सुझाव भी लिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में आज कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश होंगे, इनमें सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या से जुड़ा संशोधन विधेयक भी शामिल। कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन कॉन्फ्रेंस 2026 जयपुर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ संपन्न हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 संपन्न, भारत ने 13 स्वर्ण सहित कुल 39 पदक जीते। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9:10 हुए हैं। अब समय है लोक संगीत का।

0: सीमा मिश्रा और साथियों के स्वर में आपने ये लोकगीत सुना। लोकगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोल मारू चंद से।
1: कृपया ध्यान दें, पता है जन विश्वास अधिनियम 2026 के द्वारा रेलवे अधिनियम 1989 की कई धाराओं में बदलाव किया गया है।
2: हाँ, अब ट्रेन में बिना टिकट या अनाधिकृत टिकट धूम्रपान जैसे अपराधों पर जुर्माना राशि बढ़ाई गई है।
1: अब रेल परिसर या ट्रेन में धूम्रपान करते पाए जाने पर नए अधिनियम में 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
2: जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसके द्वारा 2000 से 5000 रुपए तक का आर्थिक दंड दिया जा सकता है।
1: ये जन विश्वास अधिनियम ट्रेन में यात्रियों को सुरक्षित रक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने और रेल प्रशासन पर आपका भरोसा कायम रखने के लिए बनाया गया है।
2: उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: कार्यक्रम में आगे सुनते हैं बद्रीदास माल्यादास और साथियों की आवाजों में ये लोकगीत।

0: कृपया ध्यान दें, पता है जन विश्वास अधिनियम 2026 के द्वारा रेलवे अधिनियम 1989 की कई धाराओं में बदलाव किया गया है।
1: हाँ, अब ट्रेन में बिना टिकट या अनाधिकृत टिकट धूम्रपान जैसे अपराधों पर जुर्माना राशि बढ़ाई गई है।
0: अब रेल परिसर या ट्रेन में धूम्रपान करते पाए जाने पर नए अधिनियम में 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
1: जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसके द्वारा 2000 से 5000 रुपए तक का आर्थिक दंड दिया जा सकता है।
0: ये जन विश्वास अधिनियम ट्रेन में यात्रियों को सुरक्षित, संरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने और रेल प्रशासन पर आपका भरोसा कायम रखने के लिए बनाया गया है।
1: उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

छाया बोहरा के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के टूला मारुचंदन से बोल रहे हैं। डीजे प्रस्तुत है NCERT का स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग। आज आप इसकी 1341वीं कड़ी सुनेंगे।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है।
2: वो लिखते हैं, रेडियो उद्घोषक और श्रोता का रिश्ता आवाज से शुरू होकर विश्वास, आत्मीयता और दिलों के जुड़ाव तक पहुंचता है। इसी आत्मीयता को हम उमंग कार्यक्रम में देख सकते हैं। यही जुड़ाव बना रहे।
0: जी हाँ श्रोताओं, यही जुड़ाव बना रहे, हमारी भी यही इच्छा है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी सुनवाई जाती है। इसी कड़ी में श्रोता संवाद में सर अजीत जी और प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल जी से मनोदर्पण विषय पर बातचीत सुनी और पसंद आई।
0: आगे आपने लिखा है, कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी सराहनीय लगी। इस जानकारी को सुनकर विद्यार्थी, शिक्षक एवं अभिभावक निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। श्रोता संवाद में मानसिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण जानकारी सुनवाने के लिए हम प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल जी एवं सर अजीत जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
2: एक निवेदन भी करते हैं कि ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित करें। किसी कारणवश ये कार्यक्रम श्रोता सुनने से वंचित रह गए हों तो वो भी इस कार्यक्रम को सुन सकें और कार्यक्रम सुनकर लाभ भी उठा सकें। एक बार पुनः आभार, शुक्रिया, धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और आदित्य जंघेल के साथ साथ अंजलि जंघेल जी का। आप लिखते हैं कि रेडियो की पहचान उसकी आवाज नहीं बल्कि श्रोताओं के दिलों से उनका जुड़ाव है। और अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान जिज्ञासा, विराट तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव लिखते हैं,
0: नियत स्टेशन से अगर हम उमंग कार्यक्रम नहीं भी सुन पाते हैं तो किसी न किसी स्टेशन से जरूर सुन लेते हैं
2: जी,
0: क्योंकि ये आसपास के किसी न किसी स्टेशन से अलग अलग समयों में प्रसारित होता रहता है।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
0: तो श्रोता, हमारा पहला प्रश्न था, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार या सम्मान क्या है?
2: इसका उत्तर है साथियों, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार या सम्मान है दादा साहब फाल्के पुरस्कार।
0: अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, श्री महादेव देसाई महात्मा गांधी जी के निजी सचिव थे। वे महान देशभक्त और गांधी जी के अनुयायी थे।
0: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था श्रोताओं कि बिजली बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे?
2: इसका उत्तर है लगभग 10,000 बार
0: जी। और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। श्रोताओं, हमने आपसे पूछा था अंग्रेजी शासन के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है?
2: अंग्रेजी शासन के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या IAS के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा।
0: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न।

0: हमने आपसे पूछा था, अपनी किस पुस्तक में एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है।
1: साथियों, पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार उनके शिक्षक ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
0: तो श्रोताओं, ये थे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये नारा किसने दिया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करके सुनिए।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पुस्तक भी डाउनलोड कर सकते हैं।
0: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर जैसा कि आप जानते हैं, और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। श्रोताओ, संदेश जरूर भेजिएगा।
1: जी, आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIET NCERT के बारे में ताजा जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है मेरी माँ।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है। ये पाठ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी और शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी की जेल डायरी का एक अंश है, जिसमें उन्होंने अपने चरित्र निर्माण में अपनी माताजी की भूमिका को सराहा है।
0: मेरी माँ, मेरी

0: سر فروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے, سر فروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے, دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل نے ہے.
1: राम प्रसाद बिस्मिल के मुख से निकली इन पंक्तियों से भला कौन परिचित नहीं होगा. ये वो गीत है जिसे लगभग पूरा भारत गाता था.
2: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है.
1: इस गीत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशवासियों की रग रग में क्रांति की ज्वाला भर दी थी. इस गीत को गाते गाते न जाने कितने स्वाधीनता सेनानी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए.

0: उनका नाम था राम प्रसाद, लेकिन बिस्मिल के उपनाम से वो बहुत प्रसिद्ध हुए। इसी उपनाम से उन्होंने बहुत सी देशभक्ति की कविताएं और गजलें लिखी। बिस्मिल का अर्थ होता है बेचैन या घायल। राम प्रसाद बिस्मिल एक लेखक, कवि और क्रांतिकारी थे, जिनका जीवन हमेशा देश के असंख्य युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।
1: वो कहते थे,
2: मेरा रिश्ता क्रांति और कलम दोनों से है।
0: बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के एक गांव में मुरलीधर और मूलमती के यहां हुआ था। वो बचपन से ही बहुत नटखट प्रवृत्ति के थे। उनका मन पढ़ाई में कम

0: और खेल कूद में ज्यादा लगता था। उन्हें तैराकी, कुश्ती जैसे खेल बहुत पसंद थे।
1: अपने बचपन और शिक्षा के बारे में बताते हुए उन्होंने अपनी आत्मकथा मेरे निज दिनों की छटा में लिखा है।
2: जब मैं कोई 7 वर्ष का हुआ तो पिताजी ने स्वयं ही मुझे हिंदी अक्षरों का बोध कराया और फिर एक मौलवी साहब के मकतब में उर्दू पढ़ने के लिए मुझे भेज दिया गया। वहां से मैंने 4th जमात पास की।
0: समय का पहिया चलता गया। उनके पिताजी पर स्वाधीनता संग्राम का बहुत प्रभाव था और शायद इसलिए वो अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे, लेकिन उनकी माता के हस्तक्षेप के कारण उन्हें अंग्रेजी पढ़ने के लिए मिशन स्कूल भेज दिया गया।
1: बिस्मिल के जीवन में यदि हम गहराई से झांकें, तो पता चलता है कि वो अपनी माता से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने जीवन में अपनी माता की भूमिका को बहुत अहम माना है। वो मानते हैं कि उनके व्यक्तित्व के निर्माण में उनकी माता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो लिखते हैं,
2: 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वे नितांत अशिक्षित ग्रामीण कन्या के समान थी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष के बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उनमें खुद ही पैदा हुआ। मोहल्ले की सखी सहेली जो भी घर पर आया करती थी, उनमें जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। परिश्रम के फल से थोड़े ही दिनों के बाद वे देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी।
0: साथियों, उन दिनों समाज द्वारा स्त्री शिक्षा पर बिल्कुल जोर नहीं दिया जाता था। इसके बावजूद इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिस्मिल की माताजी आज भी सब महिलाओं और कन्याओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा और आदर्श हैं।
2: मां तो मां होती है बस। वैसे मेरी माता मेरे धर्म कार्यों और शिक्षादी में बड़ी सहायता करती थी। वे प्रातः 4 बजे ही मुझे जगा दिया करती थी। मैं नित्य प्रति नियम पूर्वक हवन किया करता था और यहीं से मेरी रुचि अध्यात्म और सत्य निष्ठा के प्रति बढ़ी। सच कहता हूं, यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो शायद मैं भी साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता और सत्य के प्रति मेरा इतना अधिक अनुराग न होता।
1: अपनी सत्य निष्ठा के बारे में उन्होंने अपनी आत्मकथा में वर्णन किया है।
2: एक बार पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वो मुझसे करा ले। आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया, ये तो धर्म के विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मामला खारिज हो जाएगा, लेकिन मुझ पर कोई प्रभाव ना हुआ और ना ही मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में मैं हमेशा सत्य का आचरण करता था और चाहे कुछ हो जाए मैं सत्य बात कह देता था।
0: तो ऐसी थी सत्यवादिता राम प्रसाद बिस्मिल की और इस शिक्षा की नींव डाली थी उनकी माताजी ने।
1: पराधीन भारत में अपनी पीढ़ी के कई युवाओं की तरह राम प्रसाद बिस्मिल भी अंग्रेजी शासन के अत्याचारों से परेशान थे। माता की शिक्षा, श्रेष्ठ गुरुजनों की प्रेरणा और अनेकानेक देश प्रेम और अध्यात्म से ओतप्रोत साहित्य के अध्ययन ने उनके मन में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर दी थी।
0: उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपना जीवन देश की आजादी की लड़ाई में समर्पित करने का फैसला कर लिया। 8वीं कक्षा तक अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद

0: राम प्रसाद बिस्मिल बहुत कम उम्र में ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए थे।
1: अगस्त 1925 को हुए काकोरी रेल कांड में वो अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। जेल में ही उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से छिपकर उसके अंशों को जेल से बाहर भेजते रहे।
0: उनकी आत्मकथा का शीर्षक था मेरे निज जीवन की छटा। आत्मकथा को उनके मित्रों ने प्रकाशित करवा दिया।
1: गोरखपुर जेल में लिखी गई आत्मकथा में उन्होंने अपनी माता को बड़े ही मार्मिक शब्दों में संबोधित किया है।
2: जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या, मैं अनेक जन्मों में भी प्रयत्न करूं तो तुमसे ऋण नहीं हो सकता। मां, तुम्हारी ही दया से तो मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी मां, पर मुझे विश्वास है तुम ये सब समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत

काकोरी रेल कांड में उन पर मुकदमा चला और उनके साथ तीन और क्रांतिकारी साथियों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। 19 दिसंबर 1927 को उन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरी माँ, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम राग शंकरा।
1: इस कार्यक्रम में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध राग शंकरा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसके स्वर विस्तार, आरोह अवरोह, गायन समय और स्वर मालिका के बारे में भी बताया गया है।

इसके आरोह में ऋषभ और मध्यम अर्थात रे और म तथा अवरोह में केवल मध्यम यानी म वर्जित स्वर है। परंतु राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए ऋषभ अर्थात रे का प्रयोग कर्ण स्वर के रूप में किया जाता है। आरोह में 5 और अवरोह में 6 स्वर प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औरव शाड़व है। इसका वादी स्वर गंधार यानी ग है और संवादी स्वर निषाद

राग शंकरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है, इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग शंकरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग शंकरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल है हम आशा का दीप जलाएं। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम राग शंकरा, और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: सौम्या मलिक,
1: जगबंधु और मुकुल के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग। आज आपने इसकी 1341वीं कड़ी सुनी। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 10:01 हुआ है और आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: 50-50 इस फिल्म का ये दो गीत आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के डोलेमारू चैनल से।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड

0: बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में अनजान का लिखा गीत आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम था फर्स्ट लव लेटर।
1: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
2: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
2: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
2: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
2: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।

0: भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

गोलमाल रिटर्न्स इस फिल्म का ये गीत आपने सुना शेखर स्नेहा पंत और साथियों की आवाजों में। गीत को लिखा था समीर ने और संगीत प्रीतम का था। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोल मारू चैनल से।

यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 11 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे भूले बिसरे गीतों का कार्यक्रम।

कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम था आमने सामने।

कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम था आमने सामने।

आवारा फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के भला मारू चैनल पर। कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है नूरी, स्वर है लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की।

फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का ये गीत अभी आपने सुना, स्वर था आशा भोसले का। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है चांदनी, स्वर है आशा भोसले और विनोद राठौड़ के।

किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया। ये गीत अभी आपने सुना फिल्म नमक हलाल से। श्रोताओं, बारिश का मौसम चल रहा है, ऐसे में इन बारिश के दिनों में वर्षा जल को जरूर सहेजें, जिसे हमारे बीकानेर क्षेत्र में पालर पानी के नाम से भी जाना जाता है। इस मिनरल युक्त पानी को सहेजें और वर्ष पर्यंत उपयोग में अवश्य लेवे। साथ ही साथ बारिश के इस सीजन में एक पेड़ जरूर लगाएं और अपनी मरुभूमि को हरा भरा करने की कोशिश जरूर करें। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल पर। कार्यक्रम में अगली पेशकश फिल्म डुप्लीकेट से स्वर है कुमार सानू का।

नवादिस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, स्वर थे आशा भोसले और किशोर कुमार के। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है मोहरा, आवाजें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की।

मोहरा फिल्म में अलका याग्निक और उदित नारायण के गाए इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

0: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दिन के 12 बजने को है प्रस्तुत है हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज 3 दिवसीय ओडिशा यात्रा का कार्यक्रम है। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों की मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर सीट से भाजपा के सत्येंद्र भाई पटेल और दतिया सीट से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट के लिए मतगणना सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही है, जहां 20 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज भी बाधित रही। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की। विपक्ष के सदस्यों ने फिर नीट पेपर लीक मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया। विपक्ष के सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
2: सदन चर्चा संवाद के लिए

0: अपने विचार अभिव्यक्ति रखने के लिए है, अपने मत रखने के लिए है। अगर असहमति है तो भी सदन के अंदर अपने मत विचार से अभिव्यक्त की जाती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, सदन को चलाने में सहयोग प्रदान करें। नियोजित तरीके से सदन बाधित करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है।
1: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सहारोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया है। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज बातचीत होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन ने पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने इस बड़े हमले को रोक दिया। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम की धुन के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल तथा युवा कार्यक्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और झारखंड में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

शाम 6:40 पर आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम जिले की चिट्ठी और खेल जगत कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे हमारे जयपुर केंद्र से।

दिन के 1:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत। कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे हमारी संस्कृति राजस्थानी ओढ़िया। बारिश में अपना व घर का ध्यान रखें, बच्चों के स्वास्थ्य पर फास्ट फूड का प्रभाव, आजादी विशेष, महिलाओं का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। और कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता, विषय है महिलाएं पहचाने अपने

शाम 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा युवा उद्यमिता और अवसर। लघु जानकारी के विषय रहेंगे मैथिली शरण गुप्त जयंती, मानसून और स्वास्थ्य।

शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण जगत। कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे खरीफ की मुख्य फसल मोठ, देशी प्रजातियों किस्मों के पौधे लगाए, किसान सम्मान निधि, मानसून में मच्छर जनित बीमारियों से कैसे बचाव करें। कार्यक्रम के आज के अंक की प्रस्तुति होगी अश्विनी व्यास और

अब से थोड़ी ही देर में 12:10 पर आप सुनेंगे नाटक शीर्षक मैनचेस्टर का अंत, लेखक श्री राजेश महोता। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन के 12:40 पर। दोपहर 2:30 पर, शाम 6:05 पर और रात्रि 9:15 पर। पुरानी फिल्मों से गीत आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर।

ये था कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है नाटक शीर्षक मैनचेस्टर का अंत, लेखक श्री राजेश महता।

0: क्या बात है भाई, क्या बात है,
1: काफी दिनों बाद मुलाकात हुई यार।
0: आज बड़े दिनों बाद मिले, बहुत अच्छा लग रहा है।
1: चलो डॉक्टर साहब का सेवानिवृत्ति समारोह है ना।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी मौलिक खोजों से विज्ञान को अनंत ऊंचाइयों पर ले जाने वाले डॉक्टर दिवाकर आज सेवानिवृत्त हो गए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपनी उपलब्धियों व जीवनानुभवों पर दो शब्द कहें। डॉक्टर दिवाकर।
3: धन्यवाद श्री रमेश जी। दोस्तों, सेवा काल के दौरान शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरा हो जब मैंने हमारे जीवन में विज्ञान के बढ़ते हस्तक्षेप के बारे में न सोचा हो। क्योंकि आज मैं सेवानिवृत्त हो गया हूं, इसलिए अपने लंबे अनुभव के आधार पर ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने विज्ञान से प्रभावित होकर जीने के जिस ढंग और जीवन को देखने समझने का जो नजरिया विकसित किया है, उसने हमारा इतना भारी नुकसान किया है कि आने वाली 10-15 पीढ़ियों तक इसकी भरपाई नहीं हो सकेगी। रही बात जीने के ढंग को बदलने की, तो वो तो और भी आगे की बात है, जिसमें न कोई मूल्य है न कोई आस्था।
2: बात तो गले नहीं उतरती, फिर भी चलो मान लेते हैं।
3: मान नहीं लेते, मानना ही पड़ेगा। एक बात और मैं पूछता हूँ कि आज समाज, बल्कि समूचा राष्ट्र, यहाँ तक कि पूरा विश्व भौतिकवाद की दिशा में भागा चला जा रहा है। ऐसे में आप उस व्यक्ति की कल्पना कर सकते हैं जो इस प्रभाव से मुक्त हो?
4: शायद नहीं। शायद क्या, ये तो बिल्कुल ही असंभव है। आज किसी को भी लो, चाहे वे राजनेता हो या साहित्यकार, संत हो या उद्योगपति, आम आदमी हो या खास आदमी, सभी भौतिकता की तरफ भागे जा रहे हैं। वैसे भी अपने अतीत में हम सब भौतिकवादी ही थे, तभी तो हमारा वर्तमान ऐसा है। स्वाभाविक है भविष्य भी भौतिकवादी ही होगा, इसीलिए भौतिक प्रभाव से मुक्त होने की बात महज एक साहित्यिक कल्पना है। कोई लाख चाहे, वे इतिहास की बहती धारा से खुद को अलग नहीं कर पाएगा।
3: तो सुनिए मिस्टर पंकज जी, पहली बात तो ये है कि नजरिया भी आपको विज्ञान से मिला है, जो ये मानता है कि पदार्थ की पूर्व अवस्था के आधार

0: पर ही उसका वर्तमान और भविष्य निश्चित होता है। तो दोस्तों, आज मैं सार्वजनिक रूप से घोषित करता हूँ कि अपनी चल अचल संपत्ति और समस्त भौतिक सुख सुविधाओं से अपना मालिकाना हक छोड़ता हूँ तथा उसे ट्रस्ट का रूप देकर सिर्फ देखभाल का दायित्व स्वयं पर लेता हूँ। आज से मैं मालिक नहीं बल्कि संपत्ति की देखभाल करने वाला चौकीदार हूँ।
1: चौकीदार साहब, मेरा मतलब है डॉक्टर साहब। जन प्रतिनिधि होने के नाते मैं आपके निर्णय का स्वागत करता हूँ।
0: भाटिया साहब, मैं तो कहूँगा कि आप भी राजनीतिक अधिकार लिप्सा को छोड़कर एक अनासक्त जन सेवा आरम्भ क्यों नहीं कर देते? मेरा मतलब आपको भी राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि राजनीति की दुनिया में मैं अनासक्त योगी ही माना जाता हूँ। दूसरा ये कि हम आपकी तरह सरकारी सेवा में नहीं है कि निवृत्ति ले लें। अरे, हमें तो अंतिम सांस तक राजनीति ही करनी है।
2: और हम हैं अभिनेता। हम तो इतना मानते हैं भैया कि निवृत्ति एक सुंदर और अच्छी अभिनेत्री है, इसलिए उसका भविष्य उज्जवल है।
1: अरे यार, सुनो यार, अरे सुनो भाई, अरे यार, छोड़ो अब इस निवृत्ति विवृत्ति को, सब इस चक्कर को छोड़ दो। और डॉक्टर साहब, जरा जाम टकराएं और इस माहौल को रंगीन बनाने के लिए इन उटपटांग बातों से भी निवृत्त हो जाएं।

0: चलो फंक्शन तो खत्म हुआ और साथ ही खत्म हुआ अब तक के जीवन का भव्य आयोजन। अब एक नई शुरुआत करूंगा जिंदगी की, केवल जरूरत भर के साधनों के साथ। घर में पड़ी इन भारी भरकम मशीनों ने जीवन को कितना बोझिल बना दिया। यंत्र मनुष्य को संवेदनहीन बनाता है। क्यों, सुन रही हो? क्या बात है, तबीयत तो ठीक है?
1: तबीयत? हाँ ठीक है, पर मेरी तबीयत से आपको क्या लेना देना है? आप तो अपना मुक्ति दिवस मनाइए डॉक्टर दिवाकर।
0: क्यों, क्या नाराज हो मुझसे?
1: ऐसा समझ सकते हो तुम, मेरे लिए विदेशी यात्राएं, लग्जरी गाड़ियां, गहने जेवरात, सौंदर्य प्रसादन, किटी पार्टियां, एसी, कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सब सुविधाओं को छोड़ना नामुमकिन है।
0: और शायद तुम्हें मालूम भी नहीं है कि इन्हीं सुविधाओं ने तुम्हें बीमारी का घर बनाकर छोड़।
1: हाँ हाँ, मैं बीमार हूँ, मैं बूढ़ी हूँ, और तुम इस बुढ़ापे में जवान हो गए। क्यों, कोई और क्यों नहीं ढूंढ लेते? तुम तो जाने माने वैज्ञानिक हो, तुम्हारे गले में तो कोई भी वरमाला डालने को तैयार हो जाएगी। जैसे वो तुम्हारे मंत्री साहब, क्या नाम है उनका? हाँ, मिस्टर भाटिया, जिन्होंने 70 साल की आयु में एक 35 साल की युवती को पत्नी बना लिया। वैसे ही
0: देखो सुमित्रा, थोड़ा संभल कर बात करो, तुम तो जो जी में आए बके जा रही हो।
1: हाँ बके जा रही हूँ दिवाकर, बके जा रही हूँ। हाँ मैं बके ही जा रही हूँ। सच तो ये है दिवाकर कि मैं जान गई हूँ कि तुम्हारी नजर में मैं एक बीमार बूढ़ी औरत हूँ। क्यों, और इसलिए तुम मुझे अपनी दादी के समय की सुविधाहीन जिंदगी में ला पटकना चाहते हो? क्यों?
0: ओहो सुमित्रा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं कि विज्ञान और यंत्र ने मनुष्य से क्या छीन लिया। चलो अब सो जाओ, उम्मीद है सुबह तक तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा, तब बात करेंगे शायद तुम्हारी।

0: सांस लेने में तकलीफ हो रही है शायद। लगता है पार्टी के चक्कर में रात को बीपी की गोली तुम लेना भूल गई थी। खैर मैं कुछ करता हूँ, तुम घबराना नहीं। सुमित्रा मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं कुछ करता हूँ। उल्टी सुमित्रा, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। बस बस एक मिनट, मैं डॉक्टर डॉक्टर शर्मा को फोन लगाता हूँ। सुमित्रा हिम्मत रखो, मैं फोन लगाता हूँ, फोन लगाता हूँ। हेलो, कौन? डॉक्टर शर्मा बोल रहे हैं?
1: यस, शर्मा स्पीकिंग।
0: हाँ डॉक्टर शर्मा, मैं दिवाकर बोल रहा हूँ। यार एम्बुलेंस लेकर तुरंत चले आओ, सुमित्रा तुम्हारी भाभी की तबीयत खराब हो गई है।
1: क्या हुआ दिवाकर, क्या हुआ भाभी जी को?
0: अरे यार पता नहीं, उल्टी होने के बाद एकदम से रुक रुक कर सांसें आ रही है। तुम तुरंत चले आओ।
1: बस बस मैं 5 मिनट के भीतर ही पहुंचता हूँ।
0: हाँ ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। सुमित्रा सुमित्रा घबराओ नहीं, सांस कुछ धीमे धीमे लेने की कोशिश करो। हाँ डॉक्टर शर्मा आ रहे हैं, हम तुम्हें अस्पताल ले चलेंगे, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे पास। लो लो तो थोड़ा पानी पी लो। मैं भी कैसा बेवकूफ हूँ, सांस की तकलीफ में भला पानी कैसे पिया जा सकता है। वो डॉक्टर शर्मा 10 मिनट होने को आए हैं और अब तक तुम्हारा कुछ पता नहीं है। आ गए डॉक्टर शर्मा, आ गए। आइए आइए डॉक्टर, देखिए देखिए क्या हो गया सुमित्रा को।
1: हौसला रखिए डॉक्टर दिवाकर, मैं देखता हूं ना। दिवाकर बीपी खतरनाक स्थिति तक जा पहुंचा है, तुरंत आईसीयू में भर्ती करवाना होगा। फिलहाल मैं एक इंजेक्शन देता हूं, उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा। नर्स पेशेंट को अस्पताल ले चलने की तैयारी करो। दिवाकर तुम मेरे साथ आओ।
0: चलो डॉक्टर शर्मा चलते हैं,
1: जल्दी जल्दी, हरिया हरिया। ओहो अरे तुरंत आईसीयू में ले चलो। अरे कहां आ रहे आप? अरे मैं कह रहा हूं हटिए फार्मेसी से, हटिए, अरे अरे चलिए चलिए।
0: डॉक्टर डॉक्टर साहब सब ठीक तो हो जाएगा ना?
1: दिवाकर हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे हम लोग। दिवाकर मैं पेशेंट के साथ अंदर हूं, तुम बाहर मेरा इंतजार करो।
0: ठीक है डॉक्टर, मैं इंतजार करूंगा, मैं इंतजार करूंगा, मैं इंतजार करूंगा। सुमित्रा तबीयत सुधरने तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, फिर मैं तुम्हें बहुत डांटूंगा, कहूंगा कि बताओ क्या मैं गलत था। हाँ ये मानता हूं कि सहमति के बिना ट्रस्ट वाला निर्णय नहीं लेना था, पर क्या करता मैं? तुमसे पूछता भी तो क्या तुम मान जाते? नहीं सुमित्रा ये एक बड़ा कदम था, जो हुआ सो हुआ। अब मुझे एक मौका दे दो सुमित्रा, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस एक बार लौटा हूं।
1: सॉरी डॉक्टर दिवाकर, हम सुमित्रा को बचा नहीं सके। ड्यू टू ब्रेन हेमरेज शी इज नो मोर।
0: ओह नो डॉक्टर, कह दो ये झूठ है, मेरी सुमित्रा मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। डॉक्टर डॉक्टर नहीं जा सकती, वो नहीं जा सकती।
1: दिवाकर दिवाकर अरे संभालो खुद को दिवाकर, अपने आप को संभालो दिवाकर, होनी को कौन टाल सकता है?
0: नहीं डॉक्टर ये होनी नहीं थी, ये अस्वाभाविक मौत थी, एक ऐसी मौत जिसे सुमित्रा ने खुद चुना था। सुख सुविधाओं का ढेर, मशीनों का साथ, आधुनिकता का कपट चुनकर सुमित्रा ने खुद को लंबे समय तक बीमार बनाए रखा। देखना देखना एक दिन ये विज्ञान सबके लिए आईसीयू बन जाएगा। डॉक्टर आईसीयू।

0: यही है वो आश्रम जहां मैं बरसों पहले आया था। तब सुमित्रा भी साथ थी, पर आज केवल उसकी यादें हैं। कहीं गुरुदेव दिखाई नहीं दे रहे? अरे फिर भगवान बुद्ध के जीते जागते रूप, तो चलो उनसे मिलता हूं। गुरुदेव चरणों में प्रणाम करता हूं।
1: हरिओम हरिओम। कौन? अरे दिवाकर, आओ यहीं बैठो मेरे पास। कहो घर में सब ठीक तो है? हरिओम।
0: कुछ भी ठीक नहीं है गुरुदेव, क्योंकि क्योंकि सुमित्रा अब नहीं रही।
1: ओम शांति शांति शांति। दिवाकर, सुमित्रा देह मुक्ति के बाद मन व प्राण के आवरण से मुक्ति की प्रतीक्षा में है। ईश्वर से प्रार्थना करो जिससे शीघ्रताशीघ्र उसे मुक्ति मिले।
0: पर कैसे गुरुदेव? मेरा हृदय तो दुख से पटा जा रहा है।
1: दिवाकर, तुम्हारा दुख ही उसके आगे की यात्रा में बाधा डाल रहा है।
0: परंतु गुरुदेव, दुख पर तो मेरा वश नहीं है ना।
1: इसे वश में करना आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है दिवाकर।
0: वो तो है गुरुदेव, पर कैसे?
1: अपनी आत्मा के सूरज का ध्यान करो दिवाकर, दुखों के बादलों का नहीं।
0: गुरुदेव, पर मैं सुमित्रा के अलावा किसी का भी ध्यान नहीं कर पा रहा हूं।
2: उसकी मृत्यु से मैं टूट गया हूं गुरुदेव। मुझे लगता है उसकी मौत का कारण मैं ही हूं।
1: ऐसा लगने का कोई औचित्य?
0: अब कैसे बताऊं? दरअसल कल रात रिटायरमेंट की पार्टी में मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके ट्रस्ट के नाम देने की घोषणा कर दी। इसी बात को लेकर सुमित्रा नाराज हो गई। रात को उसने अपनी नाराजगी प्रकट भी की थी और सुबह उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसे बचाया नहीं जा सका। मुझे लगता है कि मैं ऐसी बात न कहता तो ये घटना नहीं
1: ना। दिवाकर, तुम स्वयं को दोषी मत मानो। मृत्यु से पूर्व सब प्रकार के योग संयोग बनते हैं। तुम्हारा हृदय शुद्ध था, भावना बुरी न थी, तो फिर स्वयं को दोषी क्यों मानते हो?
2: गुरुदेव, दोषी तो मैं हूं।
1: अभी तुम्हारा मन दुख से ग्रस्त है। दिवाकर जाओ, हाथ मुंह धोकर आराम कर लो, बाकी बातें शाम को करेंगे।
0: ठीक है गुरुदेव।

0: दिवाकर आओ, यहां बैठो मेरे पास। कहो अब मन कैसा है?
1: मन कैसा? मन गुरुदेव, मन तो सूनेपन से घिरा एक ब्लैक होल बन चुका है। लगता है सब कुछ उसमें धंसता जा रहा है।
0: दिवाकर, ये ब्लैक होल नहीं, सिर्फ शून्य है।
1: पर कितना

0: भयानक और डरावना है ये शून्य।
1: जानते हो, इसी शून्य के गर्भ में सृजन होता है दिवाकर।
0: होता होगा गुरुदेव, पर मुझे ये सब बातें किताबी लगती है।
1: नहीं दिवाकर, नहीं। आज जिस शून्य भास में तुम आ गिरे हो, उसी में से तुम्हारे सेवानिवृत्ति के बाद वाले जीवन और सुमित्रा का जन्म होगा।
0: सुमित्रा का जन्म? क्या कहा आपने? सुमित्रा फिर से मेरे जीवन में आएगी?
1: हाँ दिवाकर, ईश्वर बड़ा दयालु है, बड़ा दयालु है। बस इसके लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी, केवल प्रतीक्षा।
0: मैं प्रतीक्षा करूंगा गुरुदेव। मैं अवश्य अवश्य प्रतीक्षा करूंगा, अवश्य अवश्य प्रतीक्षा करूंगा। फोन, एक मिनट। हेलो, कौन?
2: मैं आपका वकील समीर बोल रहा हूँ दिवाकर जी। आपने ट्रस्ट संबंधी कागजात तैयार करने के लिए कहा था ना, तो बताइए कब मिलने आऊँ?
0: अच्छा समीर जी,
2: हाँ
0: हाँ, ऐसा कीजिए, आप कल सुबह 10 बजे तक घर आ जाइए। अभी मैं आश्रम में हूँ, कल तक पहुँच जाऊँगा।
2: ठीक है डॉक्टर साहब, मैं कल मिलता हूँ आपसे।
0: ठीक है समीर साहब। गुरुदेव, मैं अपनी समस्त चल अचल संपत्ति आपके ट्रस्ट अर्श मेमोरियल ट्रस्ट को सौंपना चाहता हूँ, कृपया स्वीकृति दें।
1: नहीं दिवाकर, संपत्ति अर्श मेमोरियल ट्रस्ट को नहीं, बल्कि सुमित्रा मेमोरियल ट्रस्ट को समर्पित की जाएगी।
0: सुमित्रा मेमोरियल ट्रस्ट?
1: हाँ, यही नाम होगा नए ट्रस्ट का। उसी में से सुमित्रा की स्मृतियां नए रूप में जन्म लेगी।
0: गुरुदेव,
1: जाओ, मेरे आशीर्वाद के साथ नए जीवन की शुरुआत करो।

0: नमस्ते नमस्ते डॉक्टर दिवाकर।
1: समीर बाबू, आओ, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। आओ आओ, यहाँ बैठो।
0: कैसे हैं आप?
1: बस समझ लो पहले से ठीक हूँ।
0: कहिए, कागज किस ट्रस्ट के नाम से बनाने हैं?
1: कागज सुमित्रा के नाम से बनाने।
0: भाभी जी के नाम? ये अच्छा विचार है आपका।
1: समीर बाबू, मैं चाहता हूँ कि कागज आज शाम तक तैयार हो जाए, क्योंकि 7 बजे मेरा आश्रम की तरफ निकलने का इरादा है। कार से जाऊंगा तो 100 किलोमीटर का सफर 1.5 घंटे में तय कर ही लूंगा।
0: ठीक है डॉक्टर दिवाकर, मैं ठीक 5 बजे यहाँ पहुंच जाऊंगा। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ।
1: नमस्ते। याद है तुम्हें? याद है सुमित्रा,

0: छोड़ दो, छोड़ो मुझे भाई,
1: नहीं छोड़ूंगा। चलो मेरे साथ उस बस्ती में।
0: देखो मेरे पास कुछ गहने हैं, उनमें से मैं तुम्हें कुछ दे दूंगा। मुझे अपनी कार में

0: निकल के चलो, यहाँ से अगले गांव में उतर जाऊंगा, समझ गए ना? देखो देखो तुम शहरी भाई हो है? मेरी बात को समझो है, समझ सकते हो ना? देखो मेरा नाम रामलाल है, रामलाल। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक गांव है, उसमें मेरी प्रेमिका खुलसी रहती है, वो बहुत अच्छी है, पर मेरी पत्नी तुलारी हमेशा मेरे साथ झगड़ा करती है, वो शराब भी पीती है और उसके कई यार भी है, पता नहीं किसका गर्भ लिए घूम रही है। आज उसे अपने पापों की सजा जरूर मिल जाएगी, जल मरेगी इसी आग में। बाबूजी मुझे आग में अगले गांव उतार देना, बड़ा उपकार होगा, मुझे अपने साथ ले चलो।
1: प्यारे कायर, पत्नी तो पत्नी, उस मासूम के लिए भी तेरे दिल में जगह नहीं है जिसका जन्म तक नहीं हुआ, और अभी तू उसे छोड़कर अपनी प्रेमिका के साथ रंगरेलियां मनाने की सोच रहा है, मैं बताता हूँ तुझे।
0: छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। अरे फट मारो,
1: नहीं छोड़ूंगा। अरे तो भाग गया। ये नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, मुझे कुछ करना होगा। मैं उस औरत को जलते हुए नहीं देख सकता। मैं आ रहा हूँ
2: तुलारी, मैं आ रहा हूँ, तुम घबराना मत, आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ।
1: यहाँ तो बहुत भयानक आग लगी है, पर इस झोपड़ी के सामने ये कौन खड़ा है?
2: अरे कौन हो भाई, यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं?
3: अरे जान तो प्यारी है, वो झोपड़ी देख रहे हो बाबूजी? उसमें रामलाल की गर्भवती औरत फंसी हुई है, सोचता हूँ उसे निकाल लूं, पर क्या करूँ, आग बहुत ज्यादा है,
1: आग से मैं लड़ूंगा, हटो, मैं बचाऊंगा उसे।
3: अरे बाबूजी आग बहुत तेज है।
1: कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ दुलारी, मैं आ रहा हूँ।
3: अरे बाबूजी सुनो,
1: मैं आ रहा हूँ दुलारी, मैं आ रहा हूँ।
4: बचा लो, अरे बचा लो रे, कोई इस मासूम को बचा लो।
1: घबराओ मत,
4: बचा लो,
1: घबराओ मत, मैं आ गया हूँ। ये औरत तो बहुत
4: बाबूजी, बचा लो,
1: जल्दी से जल्दी से मेरा सहारा, और निकलो यहाँ से। ठीक है, पकड़े रहना मुझे, जल्दी बाहर आ गए, बस थोड़ी दूर और।
4: मैं नहीं बचूंगी बाबूजी, मैं नहीं बचूंगी। वैसे भी जिंदा रहकर क्या करूंगी? रामलाल तो मुझे छोड़कर भाग गया है।
1: उस प्यारे का नाम मत लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी।
4: मेरी चिंता छोड़ो, हो सके तो इस मासूम की जान बचा लो बाबूजी, इसकी जान बचा लो।
1: चुप क्यों नहीं? ये हो गया, बस थोड़ा। सब ठीक हो गया। है ये क्या? दुलारी नहीं रही दुलारी। हे मेरे राम, दुलारी नहीं रही, पर अपनी कोख को जन्म तो दे ही गई, देखूं तो लड़की है या लड़का, कन्या है, लड़की है, मतलब सुमित्रा तुम लौट आई हो, तुम आ गई हो सुमित्रा, अग्निशिखा बनकर। हाँ अग्निशिखा नाम होगा तुम्हारा, तुम्हें मेरे अंधेरे जीवन में उजाला लाओगी। देखना, अब मैं सब ठीक कर दूंगा,

नया जीवन आरंभ होगा, एक एक नया नया युग आरंभ होगा। धरती पर फिर से मानव फूल खिलेंगे, फिर से मानव का सौंदर्य जाग उठेगा। मशीनें रक्त पीना बंद कर देगी। सुन रहे हो मैनचेस्टर, अंत होगा तुम्हारा, तुम्हारी मशीनी सभ्यता का, क्योंकि अगली शिखा तुम्हारी गोद में नहीं, प्रकृति की गोद में पलेगी, भगवान की गोद में पलेगी। हाँ मैनचेस्टर, तुम्हारा अंत होगा। मैं माली बनकर इस फूल को सींचूंगा। सुन रहे हो ना मैनचेस्टर, तुम मेरी दार, सुन रहे हो ना, अपनी शिखा को

आप सुन रहे थे नाटक मैनचेस्टर का अंत, शीर्षक पर लेखक श्री राजेश मेहता।

आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, साजन फिल्म से। स्वर है अलका याग्निक और कुमार सालू की।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।

खुशी की फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना। स्वर थे अनुभवा पोडवाल और कुमार सानू के। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है बर्दाश्त। स्वर है उदित नारायण का।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 1 बजने को है प्रस्तुत हमारे जयपुर केंद्र से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। नीट परीक्षा को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर गतिरोध के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। उधर लोकसभा की कार्यवाही भी बार बार बाधित हुई। अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही शुरू होने पर ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय एथलीट्स की प्रशंसा की। इसके बाद श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। लोकसभा अध्यक्ष ने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर किए जा रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी सदस्यों से अपनी अपनी सीटों पर लौटने और सदन की कार्यवाही जारी रखने का आग्रह किया, लेकिन गतिरोध जारी रहने के कारण सदन को पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले आज जयपुर दौरे पर हैं। उन्होंने खासाकोटी में प्रेस वार्ता की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाया है। अब पेपर लीक के दोषियों को 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने युवाओं से शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने की अपील करते हुए कहा कि सरकार उनकी भावनाओं को समझती है। श्री अठावले ने कहा कि राजस्थान में 3,84,00,000 जनधन खाते खोले गए हैं और 2,51,00,000 लोगों को मुद्रा योजना का लाभ मिला है। उन्होंने राजस्थान सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सभी वर्गों के हित में काम कर रहे हैं। उन्होंने भूमिहीन परिवारों को 5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए समिति गठित कर सर्वे कराने का सुझाव दिया और कहा कि इस संबंध में वे मुख्यमंत्री

0: बच्ची को पति भी सौंपेंगी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि समाज में अंगदान से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अंगदान मानवता के लिए अपने आप को समर्पण करने से जुड़ा महादान है। राज्यपाल आज राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा जयपुर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अंगदान की सबसे बड़ी बाधा मनुष्य के भीतर का डर है, इसे भगाने और इस संबंध में लोगों को प्रेरित किए जाने की आवश्यकता है। राज्यपाल ने अंगदान के साथ स्वास्थ्य जागरूकता के लिए भी अभियान चलाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में श्री बागड़े ने अंगदान जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण प्रयास करने वाले चिकित्सकों और अंगदान जागरूकता प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में आगामी पर्यटन सत्र के लिए ऑनलाइन एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले नए पर्यटन सत्र के तहत 31 दिसंबर तक की सफारी बुकिंग 1 अगस्त से की जा रही है। अग्रिम बुकिंग को लेकर देश विदेश के पर्यटकों में उत्साह है। नए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पर्यटक आसानी से अपनी सफारी बुक कर रहे हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: एडवांस ऑनलाइन बुकिंग के पहले 2 घंटे में 40,000 से अधिक पर्यटकों ने अपनी बुकिंग की, जिसमें 14,000 विदेशी पर्यटकों के टिकट बुक हुए। प्रक्रिया के दौरान पोर्टल पर करीब 20 लाख संदिग्ध अटैक प्रयासों, 150 से अधिक संदिग्ध आईपी और 2 करोड़ से अधिक फर्जी अनुरोधों को सुरक्षा प्रणाली ने सफलतापूर्वक रोका। 200 से अधिक विदेशी पर्यटकों ने स्वयं की ही आधिकारिक पोर्टल पर अपनी सफारी बुक की है। इसमें अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड सहित कई देशों के पर्यटक शामिल हैं। भारी डिजिटल ट्रैफिक के बीच पोर्टल का सुचारू संचालन इस दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
0: सावन के पहले सोमवार पर आज प्रदेश की प्रमुख शिवालयों सहित अन्य शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही श्रद्धालु बम बम भोले और हर हर महादेव की जयकारे के साथ शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं। आज भगवान शिव का जल, दूध, बिल्व पत्र और गंगा जल से विशेष अभिषेक किया जा रहा है। कई मंदिरों में भगवान का आकर्षक श्रृंगार किया गया है। जयपुर के प्रमुख तारकेश्वर महादेव और झारखंड महादेव सहित झुंझुनू के प्रसिद्ध बावलिया के बगीचे स्थित शिव मंदिर, अलवर के त्रिपोलिया मंदिर, बालोतरा के हल्देश्वर महादेव, सवाई माधोपुर के घुश्मेश्वर महादेव और बारा के मनिहारा महादेव मंदिर में कई धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दिन के 1:05 हो रहे हैं। आरंभ होता है कार्यक्रम महिला जगत।

0: महिला जगत सुनने वाली सभी बहनों का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम लेकर आई हैं आपकी दो रेडियो सखियां, मैं रुपल शर्मिला
1: और मैं मीनाक्षी सुनकर।
0: तो बहनों स्वीकार कीजिए
1: हमारा प्यार भरा नमस्कार। बहनों आज है सावन का पहला सोमवार, यानी आस्था, उल्लास और हरियाली का सुंदर संगम। सुबह सुबह मंदिरों में बजती घंटियां, हर हर महादेव के गूंजते जयकारे, हाथों में पूजा की थाली, बेलपत्र धतूरा और जल लिए शिव भक्त और रिमझिम फुहारों से धुली हुई प्रकृति, ऐसा लगता है ना शर्मिला जैसे पूरा वातावरण शिवमय हो गया हो।
0: बिल्कुल मीनाक्षी, और मुझे तो सावन की

0: यही बात सबसे अच्छी लगती है कि ये सिर्फ मौसम नहीं बल्कि मन को भी हरा भरा कर देता है। और हर घर में भक्ति का माहौल, तीज त्योहारों की रौनक, झूलों की मस्ती और लोकगीतों की मधुर गूंज, सचमुच सावन अपने साथ खुशियां ही खुशियां लेकर आता है।
1: सही कहा तुमने शर्मिला, और पहला सोमवार तो शिव भक्तों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होता। कोई व्रत रखता है, कोई शिवालय में जलाभिषेक करता है, तो कोई पूरे परिवार की सुख समृद्धि की कामना करता है। भोलेनाथ भी तो ऐसे ही है, सरल सहज और अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा से ही प्रसन्न हो जाने वाले।
0: हाँ, और शायद यही कारण

0: करता है तो कोई पूरे परिवार के सुख समृद्धि की कामना करता है। भोलेनाथ भी तो ऐसे ही है, सरल सहज और अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा से ही प्रसन्न हो जाने वाले।
1: हाँ, और शायद यही कारण है कि उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। सावन का संदेश भी यही है कि जीवन में प्रेम हो, धैर्य हो, सेवा का भाव हो और सबके कल्याण की कामना भी हो। क्यों मीनाक्षी?
0: वाह, कितनी सुंदर बात कही ना तुमने शर्मिला। और आज जब हम भोलेनाथ का स्मरण कर रहे हैं तो मन में एक और भावना भी जागती है, अपने देश के उन वीरों और वीरांगनाओं के प्रति कृतज्ञता की, जिनके त्याग और बलिदान की बदौलत आज हम स्वतंत्र भारत में खुलकर सांस ले रहे हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि अगस्त का यह महीना केवल सावन की भक्ति ही नहीं बल्कि देशभक्ति का भी महीना है। तो बहनों, हम अभी आपसे बहुत सारे विषयों पर बात करने वाले हैं जिनमें हम महिलाओं के योगदान को भी आपसे चर्चा करेंगे कि किन किन महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह से अपना अमूल्य योगदान दिया, और हमारी संस्कृति राजस्थानी ओढ़नियों पर भी बात करेंगे, और बारिश का मौसम है तो घर का ध्यान कैसे रखना है मीनाक्षी, ये भी हम अपने जरूर बताएंगे, और हम अपनी बहनों को एक वार्ता भी सुनवाएंगे जिसमें महिलाएं पहचाने अपने कानूनी अधिकार विषय पर भी वार्ता रहेगी। तो अपनी बहनों को हम ये सब बताएंगे लेकिन एक छोटे से संगीत के बाद।

0: मिल गया है पत्थर। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मीनाक्षी आज तो तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। ये जो रंग बिरंगी ओढ़नी तुमने ओढ़ रखी है ना, मुझे बड़ी प्यारी लग रही है ना।
3: हाँ वही, सावन का महीना जो शुरू हो गया है और ऐसे में नहरिया तो बनता है। और ओढ़नी की अगर बात करें ना तो वह तो हमारे राजस्थान की शान है।
2: बिल्कुल मीनाक्षी, क्योंकि और मुझे लगता है कि राजस्थान की पहचान जितनी उसके किलों और लोकगीतों से है ना, उतनी ही उसकी खूबसूरत ओढ़नियों से भी है।
3: हाँ शर्मिला, बहुत सुंदर बात कही तुमने। और सच में है, यहाँ की ओढ़नियाँ सिर्फ पहनने के लिए नहीं होती, ये हमारी परंपरा और संस्कारों की कहानी भी कहती है।
2: हाँ, और तुमने ध्यान दिया होगा हर मौके की अपनी अलग ओढ़नी होती है। तीज पर हरी, सावन में लहरिया, शादी ब्याह में बंधेज या चुनरी, हर रंग का अपना अलग संदेश होता है, क्यों मीनाक्षी?
3: बिल्कुल, और रंगों की बात चली है तो मुझे एक बात याद आ गई। बचपन में जब तीज आती थी ना तो नई लहरिया ओढ़नी मिलने का इंतजार ही सबसे ज्यादा रहता था।
2: हमारे सिर्फ तुम्हें नहीं, हम सब इसका यही हाल है, पता है। नई ओढ़नी पहनकर झूला झूलने का अंदाज ही कुछ अलग होता है ना।
3: सही कहा शर्मिला। वैसे क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज की युवा पीढ़ी भी फिर से पारंपरिक ओढ़नियों की ओर लौट रही है?
2: बिल्कुल, पहले लोग सोचते थे कि पारंपरिक पहनावा सिर्फ त्योहारों तक सीमित है, लेकिन अब युवतियां बंधी जो लहरियों को नए अंदाज में पहन रही हैं, ये हमारी संस्कृति के लिए बहुत अच्छी बात भी है।
3: और जैसे रंगों की बात चलिए ना, तो जैसे सावन या तीज में हरा पीला रंग यह हरियाली और सुहाग का प्रतीक होता है। शादी में लाल या मैरून ये रंग पहनते हैं जो सुहाग का प्रतीक होता है।
2: बिल्कुल।
3: और कोई पर्व होता है तो केसरिया रंग पहनते हैं, जैसे त्योहार और मांगलिक कार्यक्रम में
2: केसरिया रंग पहना जाता है।
3: हाँ, और अगर रोजाना ओढ़नी हो तो प्रिंटेड या सूती हल्के रंग की ओढ़नियाँ ओढ़ी जाती है।
2: और बताए, कपड़ों का भी अपना होता है। जैसे अगर आपको गर्मी है और रोजाना ओढ़ना है तो सूती ओढ़नी, जिसमें आपको कोटा डोरिया कह सकते हो, और अगर त्योहार है तो आप रेशमी ओढ़नी ले सकते हो, चंदेरी तसर जिसके अंदर है, और अगर आपकी शादी है तो आप उसके अंदर जॉर्जेट शिफॉन जिसमें जरदोजी मिरर वर्क है ना। और बीकानेर में तो ओढ़नी शब्द ही सबसे ज्यादा चलता है। यहाँ लाल मैरून में गोटा किरण वाली ओढ़नी सबसे ज्यादा पसंद की जाती है।
3: मतलब किसी भी बहन का वार्डरोब ऐसे नहीं होगा जिसमें

0: बिल्कुल।
1: और पता है हमारे राजस्थान का जो क्षेत्र है उसमें अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से भी उड़नियाँ उड़ी जाती हैं, है
0: बिल्कुल।
1: जैसे हम बात करें शेखावाटी की, इसमें झुंझुनू सीकर चूरू की अगर बात करें तो वहां पर जो है पोंचा और चुरजी उड़ी जाती है जो लाल पीली और केसरिया रंग की होती है। और इसकी एक खास बात है मीनाक्षी कि इसमें सफेद डॉट्स होते हैं और बांधने का भी इसमें काम होता है। सावन में पीली पोंचा सबसे ज्यादा और शादी में लाल पोंचा सबसे ज्यादा।
0: अरे वाह। और वहीं अगर हम मारवाड़ की बात करें जैसे जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर, तो वहां पर ज्यादातर तारा भांत, लहरिया और मोती वाली ओढ़नी उड़ी जाती है जिसमें गहरा लाल, मैरून, हरा, काला ये रंग होता है। और खास बात ये होती है बीकानेर में ओढ़नी में मिरर वर्क और गोटा बहुत होता है। काले रंग की ओढ़नी पर लाल पीले बूटे मारवाड़ी पहचान है।
1: और मीनाक्षी बात करें मेवाड़ की जिसके अंदर उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़ की, तो उसमें ओढ़नी राजपूती ओढ़नी या चुनरी भी जिसको कहते हैं, इसका रंग होता है रानी पिंक, फिरोजी, पीला या लाल। और इसकी पता है खास बात क्या है, इसमें जरी का काम होता है चूड़ी किनारी वाला, है ना। और मेवाड़ी ओढ़ते लंबी ओढ़नी सिर से पैरों तक ओढ़ती है।
0: और अगर हम ढूंढाड़ क्षेत्र की बात करें जिसमें जयपुर, दौसा, कोतपुतली आते हैं, तो वहाँ पे जयपुरी लहरिया या बंदेज चलता है। इनके रंग होते हैं हरा, पीला, लहरिया, गुलाबी। और खास बात ये होती है कि तीज सावन में हरे पीले लहरिया की ओढ़नी का रिवाज होता है। और जिसे पांच रंग की लहरिया होती है उसे पचरंगी भी कहते हैं।
1: हाँ, और हाड़ौती की बात करें जिसमें कोटा, बूंदी और बारा आते हैं, तो वहाँ भी डोरिया और कोटा डोरिया की ओढ़नियाँ ओढ़ी जाती हैं जिसका रंग होता है आसमानी, सफेद, हल्का और गुलाबी। और खास बात इसकी है कि एकदम हल्की और पारदर्शी होती है और गर्मी में भी हम इसको बहुत आसानी से पहन सकते हैं। और बूंदी की डोरिया तो बहुत फेमस है।
0: वहीं अगर हम बात करें ब्रज और मेवात की जिसमें भरतपुर, डीग, अलवर आते हैं, तो वहाँ बांधनी और फूल पत्ती वाली ओढ़नी चलती है जिनमें लाल, नारंगी और पीला रंग विशेष होता है। और उसकी खास बात होती है छोटे छोटे बूंदों वाली बांधनी कृष्ण भक्ति में जुड़ी हुई।
1: बिल्कुल मीनाक्षी, तो हम ओढ़नियों पर गर्व कर सकते हैं क्योंकि हमारी राजस्थानी ओढ़नियाँ है ही गर्व करने वाली। तो उन्हें हम ओढ़े और आने वाली पीढ़ी को भी इस विरासत को पहुंचाएं उन तक। तो बहनों को सुनवा दे अब ये गीत भी।
0: बिल्कुल।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाश।

0: बहनों, कानून ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं, बस हमें उनके बारे में पता होना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर हम डर के नहीं बल्कि जानकारी के साथ जिए। जागरूक बनो, सशक्त बनो, आपकी सुरक्षा ही आपका अधिकार है। तो इसी विषय को और अधिक विस्तार से समझाने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक वार्ता जिसका विषय है महिलाएं पहचाने अपने कानूनी अधिकार। वार्ताकार हैं सुहानी शर्मा।
1: हमारे समाज में महिलाएं शिक्षित होने के बावजूद भी अपने कानून के अधिकारों से वे अनभिज्ञ हैं, और हालांकि ये कहा भी जाए कि भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रचार प्रसार केंद्रीय और राज्य सरकार के माध्यम से एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से काफी हद तक किया जा सका है, पर ये कहा जाए कि कुछ अनपढ़ और कुछ अशिक्षित महिलाओं को तो कानून की जानकारी नहीं हो सकती, पर ये कहना भी उचित होगा कि कुछ ऐसी शिक्षित महिलाएं भी हैं जिनको कानून की जानकारी बिल्कुल नहीं है और ना ही वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। इसीलिए आज के सामाजिक परिवेश को हम अगर देखें तो महिलाओं को कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक भी है ताकि वे अपने पर हो रहे जो भी अत्याचार हैं, वो जो शोषण है, वो उससे बच सके। भारत में महिलाओं के बहुत से कानूनी अधिकार हैं और उन्हें प्रदान भी किए गए हैं, जिनकी जानकारी मैं आज आप सभी महिलाओं को देना जा रही हूँ। आपने सुना ही होगा घरेलू हिंसा। देखिए, महिलाएं घर में सुरक्षित कही जाती हैं, पर आज ऐसा समय भी आ चुका है कि महिलाएं घर में सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, मैं घरेलू हिंसा की बात बताना चाहूंगी कि महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में जो घरेलू हिंसा है उसके लिए स्त्री संरक्षण अधिनियम 2005 के संबंध में मैं आज आपसे चर्चा करना चाहती हूँ कि इस कानून में चाहे स्त्री शादीशुदा है चाहे वह अविवाहित है, स्त्रियां अपने साथ हो रहे अन्याय, प्रताड़ना या फिर जो भी उसके साथ घरेलू हिंसा के संबंध में होने जा रहा है या चल रहा है उसके खिलाफ बेहिचक वो अपना मुकदमा दर्ज करा सकती हैं। जिस घर में वो रह रही हैं, जहां पे वो घरेलू हिंसा हो रही है, उसी घर में रहकर वो कानून का सहारा ले सकती है। उसको अपने घर से भी बेदखल नहीं किया जाएगा यदि वो उस घर में रहने वाले सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती हो तो। ऐसे में एक सुविधा और भी है कि इसमें महिला खुद सीधे न्यायालय जा सकती है, उसको किसी वकील की भी आवश्यकता नहीं है। ये महिला को एक विशेष अधिकार दिया गया है कि वो अपनी घरेलू हिंसा को रोकने के लिए, अपने बचाव के लिए वह सीधे न्यायालय जाए, उसकी किसी वकील की आवश्यकता नहीं रहती। इसके अलावा उसी घर से वो अपने भरण पोषण से भी अपनी प्राप्ति कर सकती है और अपने अधिकारों के साथ वो उसी परिवार के साथ रह भी सकती है। अब आप ये सोचेंगे कि घरेलू हिंसा है क्या, तो मैं ये बताना चाहूंगी हमारी महिलाओं को कि घरेलू हिंसा किस श्रेणी में आता है और घरेलू हिंसा का क्या अर्थ है। देखिए, उस महिला के स्वास्थ्य की सुरक्षा, जीवन, शारीरिक अंग, मानसिक हानि और उसके साथ किया हुआ किसी भी रूप में दुर्व्यवहार और यौन दुर्व्यवहार, मौखिक भावनात्मक ठेस पहुंचाना, उसके रिश्तेदारों तक भी उसको कह के उसको प्रताड़ित करना और उसका और उसके रिश्तेदारों का उपहास करना और उसकी मौखिक भावनात्मक दुर्व्यवहार उसके साथ आए दिन करना, जैसे अनादर करना या उपहास करना, आप समझ ही रहे होंगे किस तरह से, ऐसे बहुत सारी आदि और भी बातें हैं जिससे उसको मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से ठेस पहुंचती है। ये सभी बातें घरेलू हिंसा में आती है।

और मेरी प्यारी बहनों और महिलाओं को विशेष तौर से बताना चाहूंगी कि आप बिल्कुल घबराएं नहीं। जो ये घरेलू हिंसा जो आज बढ़ रही है घर में, जहां महिलाएं सुरक्षित अपने घर में भी नहीं है, आप सीधे न्याय ले जाएं, किसी वकील की जरूरत नहीं है, आपको फीस देने की भी जरूरत नहीं है किसी वकील को, और आप अपना मुकदमा दर्ज करा सकती हैं। आपकी सुरक्षा का खास तौर से ध्यान रखा जाएगा न्यायालय की तरफ से। दंड का प्रावधान अगर घरेलू हिंसा में देखें तो अलग अलग तरह से होता है, अलग अलग तरीके से है कि किसी में 2 वर्ष है, किसी में 5 वर्ष है, तो अलग अलग तरीके से जैसे जैसे आपका केस होता है, जिस हिसाब से हिंसाएं हैं कम है या ज्यादा है, उस हिसाब से दंड का प्रावधान न्यायालय अपने हिसाब से जरूर देती है। अब आप आ जाइए कि एक महिला है, वो पढ़ी लिखी है पर नौकरी नहीं कर रही है, पर उसके भरण पोषण की उसको बहुत आवश्यकता है। तो अगर हम बात करें इसी प्रकार महिलाओं के भरण पोषण की, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे दंड प्रक्रिया यानी सीआरपीसी की धारा 125 में कोई भी स्त्री भरण पोषण के लिए दावा कर सकती है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, लेकिन आवश्यक यह है कि वे अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। यदि वो सरकारी नौकरी में है और अपना जीवन निर्वाह कर सकती है तो वो भरण पोषण का दावा नहीं करेगी, पर यदि कोई ऐसी स्त्री है जो महिला है, जो ससुराल से पीड़ित है, पति ने उसको छोड़ दिया है, या वो अपनी जीवन यापिका नहीं कर पा रही है, तो बेशक वो न्यायालय में जाके अपने लिए भरण पोषण का मुकदमा दर्ज कर सकती है। न्यायालय देखेगा कि उसको कितना भरण पोषण देना है। उसमें न्यायालय की एक सुविधा ये रहेगी कि आपके स्टेटस को देखा जाएगा कि कितना उसको भरण पोषण दिया जाए, जितना न्यायालय उचित समझेगी उसी के अनुसार। और एक बात और विशेष रहेगी, इस समय उसके पति की आय भी देखी जाएगी कि उसका भरण पोषण किस तरह से, उसका दैनिक भत्ता या जो आय भत्ता है या जो मासिक आय दी जाएगी न्यायालय की तरफ से वो कितनी तय होगी, पर आप अपने भरण पोषण के अधिकारी हैं। इसी प्रकार अगर आप हिंदू विधि और मुस्लिम विधि के अंतर्गत भी हैं, दोनों के अंदर ही भरण पोषण का आपको अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार आप ये अगर हम सीआरपीसी की धारा में आगे जाते हैं, धारा 498 जो कि काफी प्रचलित है, धारा 498A, उसके अंदर आईपीसी की धारा 498A में महिलाओं को दहेज के लिए जो तंग कर रहे हैं, जो कि मैं ये कहना चाहूंगी कि आज के समय में महिलाओं का हर चौथा और पांचवा केस जो जा रहा है न्यायालय में वो दहेज को लेके ही जा रहा है, उससे परेशान जो भी स्त्री है वो उसके खिलाफ मुकदमा कर सकती है। धारा 406 में जो उसका स्त्री धन है, यानी कि स्त्री धन क्या है, अब आप ये सोचेंगे स्त्री धन का मतलब जो भी उसके पास गिफ्ट आया है या उसके परिवार वालों ने उसको दिया है या जो उसके द्वारा खरीदा गया है, वह सभी स्त्री धन 406 में मुकदमा करके वो अपना प्राप्त कर सकती है। वर्तमान में एक बहुत ही एक बड़ी प्रॉब्लम या कह सकते हैं समस्याएं जो चल रही है, आम समस्या महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर, उसमें एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है बलात्कार। बहुत ही अच्छी परिभाषा दी कि बलात्कार के बारे में हमारे राज्य और केंद्र सरकार ने, और हमारे संशोधन जो किए गए बलात्कार के बारे में आए दिन नए नए संशोधन भी रहे। धारा 375 में सिर्फ बलात्कार की परिभाषा दी गई है, पर धारा 376 में आईपीसी की धारा 376 है उसमें दंड बताया गया कि वर्तमान में संशोधन करने की इस अपराध के लिए गंभीर से गंभीर दंड दिया जा सकता है। अलग अलग धाराएं हैं, अलग अलग जोड़ी गई हैं, पर अगर आप इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं या फिर आप अपने खिलाफ कुछ भी जो हो रहा है अन्याय उसके लिए बचाव करना चाहते हैं, तो बेशक आप सीधे न्यायालय जाइए और आपके लिए जो भी न्यायालय करेगा वो उचित से उचित करेगा। बहुत सारे केस में अलग अलग दंड दिए गए, इसमें आजीवन कारावास भी है, और अगर सामूहिक बलात्संग है तो फांसी तक का भी प्रावधान न्यायालय देता है, जो कि एक कठोर दंड है। इसी प्रकार वर्तमान में एक बहुत ही फैशन में है लिव इन रिलेशनशिप। लड़कियां या बालिकाएं एक विश्वास के साथ लिव इन रिलेशन में बड़े बड़े शहरों में अपने एक पुरुष साथी के साथ बिल्कुल साथ रह रही हैं और अपना जीवन यापन कर रही हैं, पर लिव इन रिलेशनशिप में वो सभी बातें क्या आएगी जो एक शादीशुदा स्त्री के साथ न्यायालय जो आपको अधिकार देता है या कानून जो अधिकार देता है, बिल्कुल आएंगी। लिव इन रिलेशनशिप के बारे में मैं यह बताना चाहूंगी कि जो इसके अंतर्गत महिला पार्टनर को वही दर्जा प्राप्त होता है जो किसी विवाहित को मिलना चाहिए। यदि कोई लड़की लिव इन रिलेशन में रह रही है, वो महिला उसके साथ पुरुष प्रताड़ना दे रहा है, घरेलू हिंसा की तरह प्रताड़ित कर रहा है, तो उसके खिलाफ बेशक वो मुकदमा दर्ज करा सकती है। ऐसे रिलेशन से उत्पन्न यदि कोई संतान भी हो जाती है तो बिल्कुल वो वैध मानी जाती है, जैसे आपकी शादी के समय जो संतान उत्पन्न होती है उसी प्रकार से वो वैध मानी जाएगी, और उसका संपत्ति का भी वही अधिकार होगा जो कि एक शादीशुदा स्त्री और पुरुष के विवाह के पश्चात जो संतान उत्पन्न होती है उसका जो वैध अधिकार है। बिल्कुल लिव इन रिलेशनशिप में भी अगर ये कोई संतान उत्पन्न होती है तो सभी उसको वैध अधिकार प्राप्त होंगे।

ऐसे ही अगर आमतौर पे हम आगे चर्चा करें तो संपत्ति के अधिकार के बारे में भी हम महिलाओं के बारे में जानना चाहते ही होंगे कि एक अविवाहित और विवाहित महिला को संपत्ति का कितना अधिकार है। ये जरूरी नहीं है कि महिला विवाहित ही हो, अविवाहित है तो उसको अपने परिवार से कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा। संपत्ति का आज के समय में बराबर का हिस्सा दिया जाता है। इसी प्रकार किसी भी स्त्री का अपने स्त्री धन का पूर्ण अधिकार होता है। पति की मृत्यु के बाद उसके पति के संपत्ति में उसका पूर्ण हिस्सेदारी रहेगी। हमारे संविधान में महिलाओं के लिए अनुच्छेद 15(3) में आरक्षण की व्यवस्था भी सरकारी नौकरियों में की गई है। ऐसा इसलिए करा गया कि उनकी जो विशेष स्थिति है महिलाओं को देखते हुए, इस कारण से संविधान ने यह व्यवस्था हमारी महिलाओं के लिए की गई। अनुच्छेद 21 में सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में प्राण देहिक स्वतंत्रता के संबंध में कुछ बहुत से ऐसे न्यायिक निर्णय दिए गए, जिसमें विशाखा का मामला बहुत प्रचलित है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया था कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ, जहां वो काम कर रही हैं, जहां कामकाजी महिलाएं हैं, जो अपने ऑफिस में अपने घर से निकल के अकेली काम कर रही हैं, उन महिलाओं के साथ यदि यौन उत्पीड़न, 2013 के अंदर ये संशोधन किया गया, रोकने हेतु एक बहुत ही लंबी चौड़ी दिशा निर्देश दी गई। इसके अंदर संविधान में समान काम करने वालों को समान वेतन तो प्राप्त होगा ही, पर उस महिला को उसको ये अधिकार प्राप्त होगा कि बिना किसी रुकावट के सीधे न्यायालय जाके उसके खिलाफ वो मुकदमा दर्ज कर सकती है और उसको सुरक्षित रखने के लिए वो सभी सुरक्षाएं प्रदान की जाएंगी कि वो नौकरी करते हुए वो मुकदमा दर्ज कर सकती है। ऐसा समस्या नहीं आए कि वो जिस ऑफिस में या जिस कार्यस्थल पे काम कर रही है और अगर वो मुकदमा उसके खिलाफ भी जिसके साथ वो काम कर रही है अगर दर्ज कर दिया जाए तो उसकी असुरक्षा ना रहे, तो उसकी सुरक्षा का भी प्रावधान न्यायालय की तरफ से उसको ऑफिस में भी दिया जाता है, उस कार्यस्थल पे भी दिया जाता है। कामकाजी महिलाएं सुबह 7 बजे से शाम को अगर 5 बजे तक कंटिन्यू लगातार काम कर रही हैं तो उनको 5 घंटे बाद रेस्ट देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा उनका जो शौचालय है वो सुविधा भी बिल्कुल महिलाओं की अलग होनी चाहिए। 30 से अधिक महिलाएं हैं, अगर बहुत छोटा बच्चा है तो उसके लिए एक अलग से रूम हो, जहां पे वो अपने बच्चे को अगर दुग्धपान कराना चाहती है तो उसके रूम की फैसिलिटी होनी चाहिए और उसकी सुरक्षा और उसके मान सम्मान को लेते हुए न्यायालय और कानून ये कहना चाहेगा कि कार्यस्थल पे जो भी महिलाएं रहती हैं उसकी गरिमा को बरकरार रखा जाए। यदि वो कार्यस्थल पे महिलाओं को कहीं भी यौन उत्पीड़न या मानसिक या शारीरिक या उपहास भी किया जाएगा तो उसके खिलाफ वो सीधा मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया अधिकार महिलाओं को आज के समय को देख के हम सबको प्राप्त है। आगे अगर हम चर्चा करें अधिकारों के बारे में तो कानून के अधिकारों में सबसे अच्छी बात एक ये है कि महिलाओं के मान मर्यादा व गरिमा का ध्यान में रखते हुए महिलाओं को एक बहुत ही अच्छे अधिकार हमें प्राप्त हैं, अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। अशिष्ट रोपण क्या है? स्त्री के रूप, उसके शरीर या उसके किसी भी भाग का अशिष्ट रीति से प्रचार करना या प्रचारित करना, चाहे वो कोई पुस्तक हो, पेपर हो, उसकी स्लाइड हो, विज्ञापन हो, फिल्म हो, फोटोग्राफ हो, रेखा चित्र हो या पेंटिंग है, उसके द्वारा महिलाओं के शरीर या उसके किसी भी भाग का अगर कोई प्रदर्शन करता है या प्रकाशित करता है तो उस श्रेणी को हम बोलते हैं अशिष्ट रूपेण। यह अधिकार महिलाओं को प्राप्त है। अधिकतम इसकी सजा 5 वर्ष है और 1,00,000 का इसका जुर्माना तय है। इसी बारे में अगर बात करें, जैसे यौन अपराध जो बढ़ रहे हैं उसमें भी जो संरक्षण अधिनियम बालिकाओं को प्राप्त है उसमें जो 18 वर्ष से कम की जो बालिकाएं हैं उनके लिए भी ये अधिनियम बना। उसमें आपको ये मैं बताना चाहूंगी कि वो दंड फांसी तक का है, काफी कठोर दंड है फांसी तक का। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं महिलाओं की एक सुरक्षा को दृष्टि से देखते हुए, कुछ ऐसी महिलाएं जो अविवाहित हैं वो भी गोद ले सकती हैं, और जो अविवाहित है और इसके साथ विवाहित है वो भी गोद ले सकती है। पर विवाहित स्त्री के साथ एक बात यह होनी चाहिए कि उसकी पति की सहमति जरूरी है, अविवाहिता को सहमति की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ केवल वयस्क होनी चाहिए, बालिग होनी चाहिए और अपने कार्य में सही निपुण रहे, अपना जीवन यापन करने में वो सही रहे, तो वो कोई भी बच्चे को वो गोद ले सकती है। हालांकि सरकार के द्वारा यह निर्णय के अनुसार एक अकेली रहने वाली महिला को खुद के नाम पर, हम कहते हैं जैसे कि राशन कार्ड नहीं बनवा सकती, पर ऐसा नहीं है कि जो महिलाएं जो अकेली रह रही हैं वो राशन कार्ड भी बनवा सकती हैं। ऐसे चलते हुए आगे और ऐसे कुछ अधिकार हमें प्राप्त हैं महिलाओं के, जैसे कि आप सभी जानते होंगे फ्री एजुकेशन का भी है, जो महिलाएं एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकती कानून के द्वारा उनको फ्री एजुकेशन ग्रेजुएशन तक वो अपना हासिल कर सकती हैं। आमतौर पर हम यह भी कह सकते हैं कि महिलाओं के अधिकारों के बारे में अगर हम जानकारी देना चाहें तो बहुत समय चाहिए, और महिलाओं के अधिकार में राज्य सरकार ने और हमारे संविधान ने इतने अधिकार, इतने अच्छे अधिकार

0: महिलाओं को दिए हैं जो हमें जानकारी प्राप्त होनी बहुत आवश्यक है। आज महिलाओं के अधिकार के विषय में कुछ हद तक मैं ये कहना चाहूंगी कि अखंडता और उसकी स्वायत्तता और उसके शारीरिक करने की आजादी, यौन हिंसा से उसकी मुक्ति, मत देने की उसकी आजादी, सार्वजनिक पद धारण करने की आजादी और कानूनी कारोबार में प्रवेश करने की आजादी, पारिवारिक कानून में बराबर हक लेना और काम करने की आजादी और समाज में अपने बराबर गरिमा को हमेशा बनाए रखने की आजादी, समान वेतन प्राप्त करने की आजादी और प्रजनन करने के अधिकारों की भी आजादी, नारी के सम्मान व गरिमा को देखते हुए ही हमारे संविधान ने ये अधिकार उनको प्रदान किए हैं, जिससे वह समाज में अपनी मान मर्यादा व प्रतिष्ठा व सम्मान को कायम कर सके।
1: तो सचों, अभी हमने सुनी कार्यक्रम में वार्ता जिसका विषय था महिलाएं पहचाने अपने कानूनी अधिकार। वार्ताकार थी सुहानी शर्मा और अब सुनते हैं कार्यक्रम में एक मधुर गीत।

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: मीनाक्षी पता है मौसम जो चल रहा है क्योंकि सावन का महीना है तो बहुत ही सुहावना मौसम है, लेकिन इस सुहावने मौसम की बहुत सारी दिक्कतें भी हैं और जिनमें सबसे बड़ी जो दिक्कत हमारी बहनों को भी शायद वो फेस करनी पड़ रही होंगी घर में सीलन की, है ना। तुमने भी देखा होगा दीवारों पे कैसे सीलन आ जाती है, कपड़ों में सीलन आ जाती है ना। तो इस तरह की समस्याएं जो हमारी घर में बहनों को देखनी पड़ती है, तो उसका क्या क्या उपाय वो करें ताकि इस समस्या का समाधान भी वो कर सके और सुहावने मौसम का आनंद भी ले सके।
1: शर्मिला तुमने एकदम सही बात कही है, सीलन तो आती है, तो उसके लिए क्या करें कि रोज सुबह 30 मिनट खिड़की दरवाजे खोल के रखें, जिससे क्या क्रॉस वेंटिलेशन बना रहेगा। इसके अलावा आप न्यूज़पेपर या चारकोल इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कोने में अखबार बिछा दे तो जो नमी होगा ना वो सोख लेगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि एक कटोरी में कोयले के टुकड़े रख दो, उससे भी नमी सूख जाएगी।
0: और पता है एक चीज और भी कर सकते हो कि अलमारी, जैसे आपने कपड़े की अलमारी है उसमें चार पांच चोक के टुकड़े रख दो आप, क्योंकि चोक पता है क्या करता है, फफूंदी नहीं लगने देता। सीलन के मौसम में कई बार कोई ऐसा कपड़ा होता है जो पड़ा रहता है अलमारी के अंदर, कई टाइम तक उसको निकालते अगर नहीं हो, सीलन बहुत ज्यादा है, फफूंदी लग सकती है उसके अंदर, तो इस समस्या से भी बच सकते हैं।
1: बहुत अच्छा है। इसके अलावा जैसे कपड़ों को हमें पूरा सुखा के फिर अलमारी में रखना चाहिए,
0: ढंग से धूप,
1: और अगर धूप नहीं हो तो आप पंखे के नीचे सुखा सकते हो।
0: कई बार ऐसा होता है कि मौसम धूप निकली नहीं तो हम कहां से सुखाएं। और पता है एक मीनाक्षी और भी काम कर सकते हैं कि अलमारी के अंदर ना सूखी नीम की पत्तियां और कपूर की टिक्की भी रख सकते हो आप, क्योंकि अभी नीम का जो है खूब पत्तियां है उसमें सुखा लो उसको और अंदर रख दो, जिससे ना तो फंगस लगेगा और बदबू भी बिल्कुल नहीं आएगी उससे।
1: इसके अलावा पता है ये जूते और के बैग में वो छोटे छोटे सिलिका जेल आते हैं वो भी रख सकते हैं, इससे नमी वो सोख लेंगे।
0: हाँ, उनको भी अलमारी में रख दो आप, है ना। ऐसा भी हम कर सकते हैं, तो हफ्ते में एक और दो बार हो सके तो ना गद्दों को धूप वगैरह भी लगवा, उस दिन बहुत अच्छा मौसम खिले उस दिन थोड़े कपड़ों को गद्दों को धूप लगवा दी। तो इस तरह की बहने हमारे इस तरह की चीजें करके इस मौसम का आनंद भी ले सकती है।
1: और अब हम आनंद लेते हैं अगले गीत का।

0: बातें करने का तो बहुत मन कर रहा है पर समय इजाजत नहीं दे रहा, तो फिर मिलने के वादे के साथ लेते हैं अपनी बहनों से इजाजत। मैं शर्मिला
1: और मैं मीनाक्षी सोनकर, तो दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: morning, sir.
1: News just in, the Lok Sabha has been adjourned till 11 a.m. tomorrow. The Indian Meteorological Department has issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Bihar, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim for today. Heavy rainfall is also expected tomorrow over Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Uttar Pradesh. President Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi have congratulated the Indian contingent on its impressive performance at the Glasgow Commonwealth Games by bringing 39 medals. President Murmu expressed confidence that the sportspersons of the country will bring greater glory to the nation in the future international events. News just in, the Lok Sabha has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Parliament proceedings disrupted following opposition protest over several issues. Counting of votes for by-elections in three assembly constituencies of Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh underway. Delhi court acquits former WFI chief Brij Bhushan Sharan Singh in sexual harassment case filed by some women wrestlers. India achieves over 5 lakh Aadhaar verified organ donation pledges, stands third globally in number of organ transplants. US and Iran expected to hold next round of peace talks today. And Weather Department forecasts heavy to very heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Bihar, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim for today. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्तना संघ के पूर्व प्रमुख ब्रज भूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अनुदान प्रक्रियाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर। अमेरिका और ईरान के बीच आज अगले दौर की बातचीत संभावित। और मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों तथा सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांडलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भीखा भाई रबारी और मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। बिहार से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
3: पिछले 30 सालों से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर विधानसभा सीट पर इस बार उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने शुरुआती बढ़त बना ली है। प्रशांत किशोर मतगणना की शुरुआत के साथ ही प्रत्येक राउंड की गिनती में लगातार आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा के नीरज कुमार हैं, जिन्हें अब तक 15,000 से ज्यादा मत मिले हैं। वहीं आरजेडी की रेखा कुमारी 4,000 से अधिक मतों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। उपचुनाव में कुल 25 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अप्रैल में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया गया था। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई, जिनमें नीट परीक्षा मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई भी शामिल है। लोकसभा की कार्यवाही आज पहले स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे फिर से आरंभ हुई तो पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद त्रिवेदी ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधायी कामकाज शुरू करने का प्रयास किया। इस बीच सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित

0: इस कार्रवाई पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने का आग्रह किया। इसके बावजूद गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
1: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे, आप सोचिएगा। इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा।
0: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही दिन में 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण अध्यक्ष सभापति सीपी राधाकृष्णन ने दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले दोनों सदनों की ओर से ग्लासगो में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी गई। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत के पैरा एथलीटों ने भी 3 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल पैरा खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि अगले राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2030 में गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होंगे।
2: कल संपन्न हुए समापन समारोह के उपरांत राष्ट्रमंडल खेलों का बैटन भारत को सौंप दिया गया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच और टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शर्मा सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक के द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि प्रत्येक सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए उचित रूप से सीमांकित और अतिक्रमण मुक्त स्थान फुटपाथ सुनिश्चित किया जाए। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और आलोक आराध्या की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज को संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा, जिसमें पैदल यात्रियों के लिए निर्धारित स्थान को मोटर वाहनों के लेन से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सके और उन्हें अतिक्रमण मुक्त रखा जा सके। पीठ ने कहा कि लक्ष्य बिना किसी बड़े निवेश या निर्माण के प्राप्त किया जा सकता है। भारत ने वर्ष 2023 में डिजिटल अंगदान पोर्टल के शुभारंभ के बाद से 3 वर्ष के भीतर आधार सत्यापित अंगदान प्रतिज्ञाओं का 5 लाख से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि पिछले 12 वर्ष में भारत में अंग प्रत्यारोपण की संख्या प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अंगदान को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने राष्ट्र से अंगदान को सबसे बड़ा दान मानने की अपील की है।
3: आप एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाइए, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और भोजन आहार ऐसा लें जो आपके शरीर को बीमारियों से मुक्त रखे। और उसके बाद भी यदि ऐसी परिस्थितियां विकसित होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि उसे अंगों की आवश्यकता पड़े, तो समाज के बीच में से हमको इन प्रयासों को बढ़ाना होगा।
0: इस अवसर पर सुश्री अनुप्रिया पटेल ने 1 साल तक चलने वाले जुगजुग जियो अभियान का शुभारंभ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बल मुख्यालय AFHQ की सेवाएं रक्षा मंत्रालय की संस्थागत धरोहर हैं। वे आज नई दिल्ली में AFHQ असैन्य सेवा दिवस के अवसर पर संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है। श्री सिंह ने AFHQ की सेवाओं को राष्ट्र के निर्णायक शक्तियों में से एक बताया।
4: किसी भी सेना को शक्ति

0: शक्ति केवल हथियारों और गोले बारूदों से ही नहीं मिलती है, बल्कि उन हजारों ऐसे अदृश्य लोगों के द्वारा भी मिलती है जो हमेशा उसके पीछे, उसके सपोर्ट में सदैव पूरी लगन के साथ खड़े रहते हैं। आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज उन्हीं अदृश्य लेकिन निर्णायक शक्तियों में से एक है।
1: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत उज्बेकिस्तान आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया है और अगले 3 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य अधिक निवेश, व्यापार बाधाओं में कमी और स्वास्थ्य सेवा तथा फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में गहन सहयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित भारत उज्बेकिस्तान व्यापार मंच में उन्होंने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के व्यवसायों में उपलब्ध अवसरों में निवेश करने पर ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग और व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव भी उपस्थित थे। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वाणी वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चल रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कर्नाटक में आज शाम 20 नए मंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह लोकभवन में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही डीके शिवकुमार मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 34 हो जाएगी। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: काफी निरीक्षा के बाद आज कर्नाटक में मंत्रिमंडल का विस्तार संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के करीबी माने वाले विधानसभा सदस्यों को मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त हुआ है और कुछ सदस्य जो सिद्धरामैया के करीबी माने जाते थे उनको बदला गया है। सिद्धरामैया और शिवकुमार के मंत्रिमंडल में 13 बदलाव देखे जा रहे हैं। कांग्रेस कमेटी द्वारा जीएस पाटिल को असेंबली स्पीकर और सलीम अहमद को काउंसिल के चेयरपर्सन के स्थान के लिए चुना गया है। सुधीन्द्रा, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज अगले दौर की शांति वार्ता हो सकती है। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने इस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी कल तेज बारिश की संभावना है। अगले 2 दिन तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरल, माही, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की आशंका है। तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, माही, लक्षद्वीप, उत्तरी आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है।
3: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में पानी का स्तर कम हो गया है। राज्य सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन शुरू कर दिया है और जिन परिवारों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गया है उन्हें 1,20,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता

0: देने की घोषणा की है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों और फसलों के नुकसान के लिए भी मुआवजा की घोषणा की गई है। हालांकि भद्रक और जाजपुर जिलों के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि धान और सब्जियों की फसलें बह गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के विभिन्न देवस्थानों में सुबह से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। तमिलनाडु में आज आषाढ़ माह का 18वां दिन है। इसे आषाढ़ पेरुक्कू कहा जाता है और ये देवी अम्मन को समर्पित है। इस त्योहार में कृषि का आधार रही नदियों में जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रार्थना की जाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर। अमरीका और ईरान के बीच आज अगले दौर की शांतिवार्ता संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामारू चैनल है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए। फिल्म का नाम है गदर। स्वर है उदित नारायण, प्रीति उत्तम और राकेश की।

0: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

कसूर फिल्म से अभी आपने गीत सुना, स्वर था कुमार सानू का। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है मोहरा, स्वर है पंकज उदास और साधना सरगम के।

फना फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, स्वर थे शान और कैलाश खेर के। कार्यक्रम का अगला गीत सुने, फिल्म का नाम है जुदाई। स्वर है हरिहरन, अलका याग्निक और जस्मिन।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दिन के 3 बज रहे हैं। हमारी ये सभा अब यही संपन्न होती है। शाम 5 बजे हमारी नियमित संध्याकालीन सभा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

0: होती है। हम इस सभा में आप सभी सुधी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। सभा में आइए, सबसे पहले सुनते हैं हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। संसद की दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकर्स बुक एविडेंस विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के मुद्दे पर, छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन में हंगामा किया। गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल प्रारंभ किया और कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। यह संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: आज प्रस्तुत ये विधेयक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्याय कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन करना है। इसका लक्ष्य भुगतान में देरी को दूर करना और विवाद समाधान को सरल बनाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ ने आज नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा। गुजरात के मांडलपुर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने जीत हासिल की है। श्री पटेल ने कांग्रेस के बिखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया। बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव की मतगणना जारी है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर 31 में से 24वें राउंड की मतगणना के बाद भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा से 13,800 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। दतिया सीट पर कांग्रेस के घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से 12,000 से अधिक वोटों से आगे हैं। तीनों निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए मतदान पिछले महीने की 30 तारीख को हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज प्राथमिकी को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज उज्बेकिस्तान के निवेश उद्योग और व्यापार मंत्री लजीज कुदरतोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, कनेक्टिविटी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों के कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी है। भारत ने

0: 2017 रजत और नौ कांस्य पदक के साथ 39 पदक जीते थे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ग्रीन मॉडल के नाम से बोल रहे हैं। शाम के 5:05 में आइए सुनते हैं युवाई कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं रिपु दमन और मनस्विनी।

0: नमस्कार, आदाब, राम राम, खमा घनी। बीकानेर के सभी प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, सर बुजुर्ग नहीं कहूंगा, जो भी उम्र के हैं सभी को मैं अपना दोस्त ही कहूंगा, उन सभी को प्यार भरा नमस्कार। घड़ी की सैया कह रही है कि शाम के 5:05 हो चुके हैं और आकाशवाणी पर बीकानेर का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी का वक्त हो चला है और मैं हूँ आपका दोस्त और हमराही रिपुरमन सिंह।
1: और मेरे यानी मनस्विनी की तरफ से भी आप सबको प्यार भरा नमस्कार। रिपु, कल शाम जब मैं ऑफिस से घर लौटी तो घर का नजारा कुछ ऐसा था कि हंसी भी आई और हैरानी भी हुई। मेरे छोटे भाई ने अपने कमरे में ऐसा गजब का कोहराम मचा रखा था कि पूछो मत। चारों तरफ कागज, लैपटॉप पर कोडिंग और साथ में एक तरफ कमरे में एक ऐसा माहौल कि पारंपरिक जो कला है, जो डिजाइन्स हैं, उसके स्केच भी पड़े हुए हैं, साथ में एक तरफ कंप्यूटर और कोडिंग की भाषा भी चल रही है। मैंने पूछा, भैया ये कौन सा नया तूफान खड़ा कर रखा है?
0: अरे वाह, फिर तुमने अपने भाई से क्या पूछा? उसने क्या कहा कि वैसे मैं सुन रहा हूँ आजकल बीकानेर में ये युवाओं को कुछ अलग हटके करने का कुछ अलग ही जोश इन्होंने बढ़ता जा रहा है।
1: बिल्कुल वही तो। उसने भी बड़े गर्व से सिर उठाकर कहा, दीदी अब वो जमाना गया जब लोग दूसरों के यहाँ नौकरी के लिए इधर उधर भटकते थे। हम अब अपनी खुद की डिजिटल दुकान और स्टार्टअप का ताना बाना बुन रहे हैं। तभी किचन से माँ की आवाज गूंजी, अरे पहले ढंग से चाय नाश्ता तो कर ले, स्टार्टअप तो जिंदगी भर चलाना। मतलब घर में एक तरफ माँ की पारंपरिक और सेटलमेंट वाला विजन और दूसरी तरफ देखें तो युवा पीढ़ी का ये नया विजन, दोनों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन कल देखने को मिला कि पूछो ही मत।
0: अरे वाह मनसुनी, सच कहूं तो ये सिर्फ तुम्हारे घर की कहानी नहीं है, आजकल बीकानेर से लेकर शहरों के हर घर की यही दास्तान है। बड़ों को लगता है कि बच्चे पता नहीं कौन सा हवा में तीर चला रहे हैं और युवाओं को लगता है कि बड़े हमारी नई सोच की उड़ान को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: लेकिन सच बात यह है कि ये कोई टकराव नहीं बल्कि एक खूबसूरत बदलाव की शुरुआत है।
1: एकदम सही बात कही तुमने। आज का युवा सिर्फ बनी बनाई लीक पर चलना ही नहीं चाहता, वो अपनी मेहनत और हुनर से अपनी खुद की एक नई लकीर खींचना चाहता है। चाहे वो अपने शहर की पारंपरिक कला, खान पान या हस्तकला को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उतारना हो या फिर अपना कोई नया क्रिएटिव वेंचर शुरू करना हो। आज का नौजवान किसी के सहारे की उम्मीद के बजाय खुद के पांव पर खड़े होने की तैयारी रखता है।
0: एकदम 100% की बात की। हमारे शास्त्रों में भी तो कहा गया है कि उद्यमे ही सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथे, यानी केवल मन में लड्डू फोड़ने से कुछ नहीं होगा, ख्याली पुलाव पकाने से पेट नहीं भरता, मैदान में उतर कर पसीना बहाना ही बढ़ता है। और आज के इस डिजिटल दौर में युवाओं के लिए तो दुनिया भर के रास्ते खोल दिए हैं। अब ग्लोबल मार्केट तक पहुंचने के लिए कोई भारी भरकम पूंजी या कोई सेटअप की जरूरत नहीं है, बल्कि एक मजबूत आइडिया, इंटरनेट की थोड़ी बहुत समझ और आप खुले आसमान में तैर सकते हैं।
1: बिल्कुल एकदम सही बात है रिपु तुम्हारी। पर इस रास्ते में वो लोग क्या कहेंगे वाला डर और शुरुआती झटके, ये बहुत तंग करते हैं। कभी पैसों का जुगाड़ बिठाना मुश्किल हो जाता है तो कभी रिश्तेदारों के ताने तक सुनने पड़ते हैं।
0: अरे मनसुनी, ये जो डर है ना, ये जिंदगी का असली मसालेदार तड़का है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी क्या खूब कहा है कि उठो जागो तब तक मत रुको जब तक मंजिल हासिल ना हो जाए। ये इंसान की शुरुआती रुकावटें इंसान को तपाकर कुंदन बनाती है। मैं तो कहता हूँ कि असफलता नाम की कोई चीज है ही नहीं, वो तो बस सफलता शुरू होने की पहली रिहर्सल होती है।
1: वाह क्या बात कही है रिपु, तुम्हारी इस बात ने तो जैसे दिल खुश कर दिया। बड़ों का तजुर्बा और युवाओं का जोश जब एक साथ मिल जाता है तो फिर असंभव जैसी कोई चीज बचती ही नहीं है ना। बस जरूरत है तो बस अपने काम को पूरी ईमानदारी से करने की और बिना डरे अपने सपनों की तरफ एक कदम बढ़ने।
0: बिल्कुल। अरे वाह, बातें बातों में शाम का सफर कितना दूर निकला है। चलो कोई नहीं, अब वक्त हो चला है।

0: अपने दोस्तों को इस बातचीत के बीच कुछ खास बात करने का।
1: जी हाँ, एक छोटे से म्यूजिक ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आज के इस आधुनिक दौर से थोड़ा पीछे चलेंगे, एक महान शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिनकी रचनाएं और कविताएं आज भी हमारे भीतर देशभक्ति, संस्कृति और राष्ट्र प्रेम की अलग जगह देती हैं।
0: बिल्कुल, संगीत के परे हम बात करने वाले हैं और याद करेंगे उन अमर पंक्तियों को जो आज भी हमारे दिल को झकझोर देती है। दोस्तों
1: तो बस कहीं मत जाइएगा, एक बेहद सुरीले और खूबसूरत म्यूजिकल ब्रेक के बाद फौरन हम हाजिर होंगे।

0: के परे हम बात करने वाले हैं और याद करेंगे उन अमर पंक्तियों को जो आज भी हमारे दिल को झकझोर देती है दोस्तों।
1: तो बस कहीं मत जाइएगा, एक बेहद सुरीले और खूबसूरत म्यूजिकल ब्रेक के बाद फौरन हम हाजिर होंगे।

0: दिल्ली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपके पसंदीदा सेगमेंट यानी क्विज टाइम का, जिसमें हम आपसे दो प्रश्न करेंगे और उन दोनों प्रश्नों के जवाब हम आपको प्रोग्राम के अंत में देंगे। तो फिलहाल आपका पहला प्रश्न रहेगा
4: साथियों, पहला प्रश्न है कि G20 वित्त मंत्रियों की बैठक 2026 में किस देश में प्रस्तावित है। मैं अपना सवाल एक बार और आपके आगे दोहराती हूँ कि G20 वित्त मंत्रियों की बैठक 2026 में किस देश में प्रस्तावित है।
3: और अपना दूसरा प्रश्न है, 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कौन कर रहा है। मैं पुनः अपना प्रश्न दोहराता हूँ कि 2020 में कौन कॉमनवेल्थ 2030 में कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी कौन कर रहा है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिनके नाम से सरहदें महफूज रहती है और दुश्मन खौफ ज़दा होता है, उनके शौर्य को अल्फाज नहीं जज्बात चाहिए। देश के उन असली नायकों को नमन करते हुए पद्मश्री कैलाश खेर की बुलंद आवाज में हम सुनते हैं हिंदुस्तानियों की ये दहाड़। पेश है भारतीय सेना।
5: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
6: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है

0: दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: साथियों, जब हम बात करते हैं अपने दम पर कुछ नया रचने की, लीक से हटकर अपनी खुद की राह बनाने की, चाहे वो कोई नया स्टार्टअप हो या जीवन का कोई क्रांतिकारी कदम, तो जहन में एक ऐसी शख्सियत का नाम सबसे पहले आता है जिनकी कलम ने सदियों पहले देश के युवाओं और समाज को एक नया विजन दिया था।
2: बिल्कुल सही कहा तुमने। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती पर। हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो इतिहास को दिया है वो अमूल्य है।
1: बिल्कुल,
2: मतलब उस दौर में जब इंसान चार लाइनें, अब हम कह सकते हैं कि आज के दौर में जब इंसान कुछ लाइनें, कुछ चंद पंक्तियां लिखकर खुद को एक कवि समझने लगता है, लेकिन जरा सोचिए उस दौर में जब एक कलम की ताकत ने अंग्रेजों की नींव तक हिला दी थी, मतलब पूरे राष्ट्र को एक धागे में पिरो दिया था।
1: एकदम सही कहा रिपू। और एक बहुत ही मजेदार बात बताऊं, महात्मा गांधी जी ने खुद उन्हें प्यार से राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। सोचिए, देश के राष्ट्रपिता खुद उनकी कविताओं और उनके विचारों से कितने बड़े मुरीद रहे होंगे, कितना ज्यादा उन्होंने इंस्पायर्ड फील किया होगा कि जिसकी वजह से उन्होंने ऐसे व्यक्ति को हमारे बड़े प्यार से राष्ट्रकवि की उपाधि दे दी। गुप्त जी की सबसे खास बात उनकी लेखनी को जो बाकियों से हटकर के एक अलग पुट देता है, वो रिपु ये भी था कि उन्होंने इतिहास और पुराणों के उन किरदारों पर अपनी रचना को केंद्रित किया, उनको अपना नायक बनाया, जो नाम और जो शख्सियत सदियों से उपेक्षित हो गए थे या पीछे छूट गए थे, या यूं कहूं कि हमने उन्हें काफी इग्नोर कर दिया,
2: जिसे हम कह सकते हैं कि हम भूल गए थे। जैसे उनके काव्य साकेत के बारे में हम कह सकते हैं कि लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का वो दर्द, वो त्याग, मतलब राम और सीता जब वनवास चले गए थे पर पीछे जो 14 साल का खामोश और तड़पता हुआ एक मन, जो इंतजार था, वो आवाज, उसको आवाज किसने दी? मैथिली शरण गुप्त जी ने। मतलब इतिहास के वो अंधकार में छुप गई उन बातों को सामने लाकर रखने का एक असली हुनर उनसे सीखा जा सकता है।
1: बिल्कुल सही कहा। उनकी पंक्तियां तो आज के हर युवा के दिल पर सीधे असर करती हैं। देखिए, केवल मनोरंजन ही एक कवि का कर्म नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर जो उचित उपदेश छुपा होता है, उसके अंदर का जो मर्म होता है, उसे सामने रखना, ये भी कवि की बहुत एक अहम भूमिका होती है। आज के इस सोशल मीडिया के जमाने में जहाँ कंटेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ टाइम पास रह गया है या 30-30 सेकंड की रील्स रह गई हैं, गुप्त जी की ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कला और शब्द, इनका एक गहरा और सार्थक उद्देश्य होना भी बहुत जरूरी है। उनकी भाषा इतनी सहज भी थी, इन सारी चीजों के साथ साथ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं थी कि उसे समझने के लिए डिग्रीज

0: करनी पड़े, बल्कि इतनी आसान भाषा थी कि एक आम इंसान भी अगर उनकी किसी कृति को पढ़ता था तो उनकी कविता उनके सीधे दिल में उतरती,
1: सीधे दिल में उतर जाती थी। और सिर्फ साहित्य तक सीमित नहीं था, वो जीवन के मैदान में भी पूरी तरह सक्रिय थे।
0: बिल्कुल,
1: क्या आपको पता है कि उन्होंने देश के उच्च सदन यानी राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया था। यानी एक साहित्यकार ने समाज और देश की नीति तय करने में भी अपनी एक मिसाल कायम की है।
0: क्या बात है, मतलब कलम की ताकत के साथ नीति चलाने का ऐसा कॉम्बिनेशन आज के समय में मिलना बड़ा दुर्लभ है। लेकिन दोस्तों, आज की इस तेज भागती दुनिया में जहां हमारा धैर्य दो लाइन के मैसेज तक सीमित होकर के रह गया है, गुप्त जी का साहित्य हमें अपनी मिट्टी से जोड़ता है और हमारी जड़ों तक हमें वापस मोड़ने का एक प्रयास करता है। किसी महान कवि की जयंती का मतलब दोस्तों सिर्फ ये नहीं है कि हमने उनकी तस्वीर रख दी और दो फूल चढ़ा करके और अपनी औपचारिकता हमने निभा दी, बल्कि उनके विचारों को अपने आचरण में उतारना ही असल मायनों में उनकी जयंती को सेलिब्रेट करना होगा।
1: एकदम सही बात कहा तुमने, सच्ची प्रगति वही है जो नैतिकता, संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों के साथ आगे बढ़े। तो क्यों ना आज हम सब एक छोटा सा संकल्प ले सकते हैं कि उनकी रचनाओं से प्रेरणा लेंगे और अपनी इस समग्र भाषा पर गर्व करेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो चलिए बातों का ये सिलसिला तो दोस्तों यूं ही महकता रहेगा, लेकिन अब वक्त हो चला है कि आपको एक खूबसूरत गाने की ओर मोड़ दिया जाए।
1: क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल सुनते रहिए आकाशवाणी बीकानेर, पर हम थोड़े ही छोटे से ब्रेक के बाद पुनः लौटते हैं।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में।
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: दोस्तों जरा सोचिए, बाहर बारिश हो रही है, खिड़की पर बूंदें दस्तक दे रही है और रसोई में चाय चढ़ी हुई है, किसी ने पकौड़ों की फरमाइश रख दी है और मोबाइल का कैमरा भी बिल्कुल तैयार है और मन कह रहा है कि क्या मौसम है।
3: लेकिन लेकिन लेकिन इसी दृश्य का एक दूसरा फ्रेम भी है। किसी अस्पताल की ओपीडी में लंबी कतार लगी है, कोई तेज बुखार लेकर आया है, कोई पेट दर्द से परेशान, तो कोई कई दिनों से खांसी और एलर्जी से जूझ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक तस्वीर सोशल मीडिया तक पहुंचती है और दूसरी अस्पताल के रजिस्टर तक।
2: बारिश अपने साथ ठंडक तो लाती है।

0: है दोस्तों, लेकिन हर ठंडक सुकून भरी हो ये कोई जरूरी नहीं है। वातावरण में नमी की बूंदें बढ़ती है, जगह जगह बारिश का पानी जमा होता है, बादल तापमान तो कम करते ही हैं, पर हालात ऐसे बन जाते हैं कि वो मॉइस्चर और उस जगह पर जीवाणु विषाणु और फफूंद आसानी से पनपने लगते हैं। इसलिए मानसून में केवल छाता निकालने का मौसम कहें तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा, बल्कि इसमें अपनी दिनचर्या को थोड़ा अधिक सावधान और मौसम के हिसाब से जीना जरूरी हो जाता है।
1: बिल्कुल, और साथियों जब भी स्वास्थ्य की बात आती है, जब भी हेल्थ की बात आती है, तो फूड इज द ओनली मेडिसिन। हमारा जो भोजन होता है वही अपने आप में सबसे बड़ी दवा होता है। तो साथियों ये बात बिल्कुल आपको याद रखनी है कि बरसात में हमारा जो पाचन तंत्र होता है वो अपेक्षाकृत अधिक संवेदनशील हो जाता है, काफी सेंसिटिव हो जाता है। खुले में रखा हुआ भोजन, दूषित पानी, बिना ढका हुआ खाना या लंबे समय तक बाहर रखा हुआ कोई भी खाद्य पदार्थ बहुत जल्दी संक्रमित हो जाता है इस मौसम के अंदर, जिससे फिर आगे पेट दर्द, दस्त, उल्टी, बुखार और ना जाने कौन कौन सी दूसरी बीमारियां जैसे टाइफॉइड है या मलेरिया है, ये सारी चीजें हमें बारिश अपने साथ लेकर के देती है। इसलिए स्वाद के साथ साथ सबसे पहले स्वच्छता को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, अगर आप स्वच्छ रहेंगे तभी तो कुछ ऐसे अनकहे मेहमान हमारे घर में नहीं आएंगे, जिन मेहमानों को हम बुलाते भी नहीं और वो अपने आप हमारे घर के अंदर दस्तक दे देते हैं।
1: ऐसा कौन है?
0: अरे वही जो गुनगुनाते रहते हैं कान के पास आकर, मच्छर। बरसात के बाद कहीं थोड़ा सा पानी जमा हो जाए या तो उनका वो घर बन जाता है मच्छरों का।
1: बिल्कुल,
0: छत पर हो गया या कूलर में हो गया या गमले की तश्तरी में हो गया या पुराने बर्तनों में हो गया। अगर आपको कहीं भी ऐसा पानी दिखे तो उसे तुरंत खाली कर दीजिए।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि यही कारण है कि इस मौसम में मच्छर फैलने वाले बुखार या बीमारियां अधिक देखने को मिलती है, और इसका रोकथाम बहुत ही आसान है। मतलब पानी जमा ना होने दें और खुद को स्वच्छ रखें और आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखें।
1: बिल्कुल दोस्तों, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मानसून में सिर्फ ये छोटी मोटी पेट दर्द और बुखार जैसी ही बीमारियां हमारे सामने आती हैं तो आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि हवा में जैसे जैसे नमी का यानी मॉइस्चर का लेवल बढ़ता जाता है तो जिन लोगों को पहले से सांस की कोई दिक्कत है वो बढ़ भी सकती है और कई लोगों को एलर्जीज डेवलप भी हो सकती है, जैसे कि अस्थमा है या साइनस से रिलेटेड कोई परेशानी है। ये सब कुछ अगर आपको है तो आपको तो फिर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बड़ा साधारण सा उपाय है कि हवा का जो वेंटिलेशन है हमारे घर में उसको बनाए रखें, यानी आवागमन अच्छे से हो, नमी एक जगह पर एकत्रित ना होने दें, और साथ साथ में जो साफ सफाई संबंधित छोटी छोटी बातें हैं इनका विशेष रूप से ध्यान रखें, तो इन छोटे छोटे स्टेप से हम बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से अपने आप ही बच जाते हैं।
0: और बारिश की बात करें, अक्सर हम जब भी ऑफिस से आ रहे होते हैं और रास्ते में बारिश हो जाए तो आह क्या सुकून मिलता है।
1: और मुझे तो बारिश में नहाना बहुत ही पसंद है।
0: बिल्कुल, और इसी पसंद को अगर बरकरार रखना है तो मैं तुम्हें एक हिदायत देना चाहूंगा कि गीले कपड़े ज्यादा देर तक ना पहने और गीले जूतों को जल्दी से उतार के साइड में रख दे।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि लगातार पसीने में रहने से फंगल इन्फेक्शन का जोखिम बढ़ जाता है। इसलिए बारिश का आनंद लेने के बाद अच्छी तरह से सूखने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने और बिल्कुल स्वच्छ रहें। पर अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद सब कोई डर गए होंगे, तो क्या हमें मानसून से डरना चाहिए?
1: अरे बिल्कुल नहीं, बल्कि मानसून तो हमारा आपका सबका पसंदीदा सीजन है जरूर। इसमें साथियों डरने जैसी बात नहीं है कि भाई ये बीमारी हो जाएगी या वो हो जाएगा, इतना नहीं सोचना, लेकिन मानसून का आनंद लेते हुए थोड़ी छोटी छोटी जो भी बातें हैं जैसे कि पानी की स्वच्छता का ध्यान रखना, ताजा भोजन बना करके करना, हाथों को सफाई से मतलब हैंडल करना, और साथ ही साथ ऑब्वियसली अच्छे से नींद लेना ताकि आपका इम्यून सिस्टम और ज्यादा पावरफुल बन सके, बस ऐसी ऐसी चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन इस सबके बावजूद यदि आपको तेज बुखार आता है, लगातार उल्टी होती है या सांस लेने में कोई कठिनाई महसूस करते हैं यदि आप, तो इन सारे लक्षणों को हमें नजरअंदाज नहीं करना है और किसी योग्य चिकित्सक के पास जाकर के उनसे सलाह लेनी है।
0: बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि बारिश हर साल होती है, बादल भी हर साल बरसते हैं और मिट्टी की प्यारी खुशबू भी हमें हर बार मिलती है और चाय का स्वाद भी वैसा ही रहता है, पर कोशिश ये करें कि इस बदलते मौसम में आप अपने खुद को भी वैसा ही रखें उस हमेशा की बारिश की तरह, एकदम स्वच्छ, निर्मल और
1: तरोताजा।
0: बिल्कुल, अब सुनते हैं किसी तरोताजी जोश के साथ एक प्यारा सा

0: वहाँ के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मधु चैनल की प्रस्तुति।
1: दोस्तों, कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहाँ पत्थर समय बताते हैं और आकाश इतिहास सुनाता है? सुनने में लगता है ना किसी दंत कथा की कोई पंक्ति है, पर दोस्तों ये पंक्ति है गुलाबी शहर के बीचों बीच एक अनोखी दुनिया की, जो जयपुर की व्यस्त सड़कों, रंग बिरंगे बाजारों और ऐतिहासिक इमारतों के बीच एक ऐसी जगह है जो पहली नजर में किसी विशाल मूर्तिकला उद्यान जैसी लगती है। ऊंची ऊंची दीवारें, विचित्र आकार की संरचनाएं और पत्थरों से बनी विशाल आकृतियां, लेकिन

0: ये केवल सत्याप्त कला का नमूना नहीं है, ये विज्ञान गणित खगोल शास्त्र का एक जीवंत दस्तावेज है।
1: दोस्तों है क्या वो चीज?
0: अभी बताती हूँ रिपु, सब्र करो। हम बात कर रहे हैं जंतर मंतर की। अच्छा। जो केवल एक स्मारक नहीं बल्कि उस युग की वैज्ञानिक जिज्ञासा का प्रतीक है जब आकाश को समझने के लिए इंसानों ने पत्थरों को उपकरण बना दिया था।
1: वाकई में मैं बात करूं तो 18वीं शताब्दी में सवाई जयसिंह ने अपने द्वितीय, मतलब उन्होंने ये खगोलीय गणनाओं और शुद्धता, मतलब इनको बढ़ावा दिया और उनका उद्देश्य था कि वैद्यशालाओं का निर्माण करवाया जाए और उनका ये कहना था कि इन सभी विशाल और सर्वाधिक संरक्षित वैद्यशाला जो कि जयपुर के जंतर मंतर में है, ये केवल विज्ञान और प्रयोगों का केंद्र नहीं बल्कि उस समय की ज्ञान परंपरा और शासन व्यवस्था और सांस्कृतिक दृष्टि का प्रतीक है।
0: बिल्कुल साथियों, आज हमें समय देखने के लिए हमारी कलाई पर एक घड़ी है और मोबाइल में भी हमारे सबके पास ये सुविधा है कि हम कभी भी समय देख सकते हैं। तो आज हमें उसकी वैल्यू पता नहीं लगती कि ये कितनी बड़ी बात थी कि उस दौर में जंतर मंतर उस समय की हमें कहानी बताता है जब सूर्य की छाया को हम पढ़ते थे और उससे हम समय निकालते थे। यहाँ स्थित सम्राट यंत्र विश्व की सबसे बड़ी पत्थर निर्मित सूर्य घड़ियों में से एक है। इसकी सहायता से स्थानीय समय का अत्यंत सटीक अनुमान लगाया जा सकता है।
1: बिल्कुल, जंतर मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ विज्ञान पुस्तकों के पन्नों में नहीं बल्कि विशाल स्थापत्य संरचनाओं में दिखाई देता है।
0: बिल्कुल,
1: प्रत्येक यंत्र एक गणितीय सिद्धांत पर आधारित है। कोण, छाया, दिशा और गति, ये सभी अवधारणाएं यहाँ आपको प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलेगी। अगर आप वहां जाएंगे तो आप उन चीजों को अनुभव भी करेंगे।
0: साथियों, जंतर मंतर की वैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्ता को देखते हुए इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्रदान है। ये सम्मान केवल इमारत को नहीं दिया गया है बल्कि उस ज्ञान परंपरा को मिला जिसने विज्ञान, वास्तुकला और खगोल शास्त्र को एक साथ जोड़ दिया।
1: बिल्कुल, और हर वर्ष यहाँ जंतर मंतर देखने के लिए खूब सारे लोग आते हैं। और आप भी जाइएगा, जरूर इस संरचनाओं को देखिएगा। पर अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और गीत।

0: निभाते हैं तो दर्शक तालियां बजाते हैं और अंत में स्कोर बोर्ड विजेता का नाम बता देता है। लेकिन इस सब के बीच में एक व्यक्ति और होता है, रिपु, याद आ रहा है? को मैं बताती हूँ, जो पूरे घटनाक्रम को शब्दों में बदलता है, वही लोगों तक उस जीत के पीछे का संघर्ष साझा करता है। ये कार्य होता है खेल पत्रकार का।
1: खेल पत्रकार बिल्कुल, जो मैदान का पूरा विवरण हम श्रोताओं तक पहुंचाता है।
0: बिल्कुल।
1: पर अब आपने खेल पत्रकार तो सुन लिया, पर क्या आप पूरी तरह से जानते हैं कि आखिर खेल पत्रकार होता कौन है? देखो मैं बताता हूँ, इसके नियम समझे तो खिलाड़ियों की पृष्ठभूमि, प्रतियोगिताओं और सभी चीजों को वो विस्तृत जानकारी हम श्रोताओं तक पहुंचाता है।
0: बिल्कुल साथियों, बचपन में क्रिकेट देखते वक्त सबका मन करता था कि हम भी कमेंट्री करें, पर इसमें वास्तविक में करियर बनाने की क्या संभावनाएं होती हैं कि सबसे पहले तो आपको जर्नलिज्म का कोर्स अगर आप करते हैं तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है इसके लिए। और साथ ही आजकल जिस हिसाब से समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविजन चैनल, रेडियो और डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स आगे से आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इस करियर में भी संभावनाएं आगे से आगे बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन साथियों, सिर्फ और सिर्फ खेलों में रुचि होना ही पर्याप्त नहीं है, इसके लिए भाषा पर भी आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, सभी तथ्यों की जांच करने की आप में आदत होनी चाहिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि आपकी ओपिनियन अनबायस्ड यानी निष्पक्ष होनी चाहिए, तभी एक अच्छा और सफल खेल पत्रकार बना जा सकता है।
1: बिल्कुल, खेल पत्रकार मतलब रोमांचक आवश्यक है, लेकिन इसमें काफी सारी चुनौतियां है कि लगातार देर रात काम करना पड़ता है, लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती है और सटीक समाचार हमें श्रोताओं तक पहुंचाना होता है सोशल मीडिया और नई नई मीडियाओं के जरिए। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों के बाद अब वक्त हो चला है, अब खेल पत्रकारिता के बारे में तो बात कर ही ली, तो अब जो ही पत्रकार सवाल करते हैं उसी तरह हमने भी आपसे दो सवाल किए थे प्रोग्राम की शुरुआत में, तो उनका अब जवाब देने का टाइम हो गया है। तो पहला सवाल था आपके लिए
0: दोस्तों, पहला सवाल हमने पूछा था कि G20 वित्त मंत्रियों की बैठक 2026 किस देश में प्रस्तावित है, तो साथियों इसका जवाब था USA, अमेरिका। और साथियों हमारा आज का दूसरा प्रश्न था कि 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, तो आपको जानकर बड़ा गर्व होगा कि इसका आंसर था अहमदाबाद, इंडिया।
1: बिल्कुल दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हमारा सेगमेंट रहेगा रोजगार सेगमेंट, जिसके अंदर हम आपके लिए लेकर आते हैं नई समाचार भर्तियों की जानकारी। तो ये भर्ती की जानकारी है राजस्थान उच्च न्यायालय स्टेनोग्राफर भर्ती 2026, इसका विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। स्टेनोग्राफ ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड के लिए इसमें कुल पद रहेंगे 163 और इसमें आप 12वीं पास और साथ ही साथ कंप्यूटर कोर्स जैसे कि RSCIT और शॉर्ट हैंड का ज्ञान आपको होना आवश्यक है। इसमें उम्र आयु सीमा रहेगी 18 से 40 वर्ष, और देखा जाए तो इसका आवेदन शुरू हो चुका है 22 जुलाई से और इसकी अंतिम तिथि रहेगी दोस्तों, याद रखिएगा, 10 अगस्त शाम 5 बजे तक। तो आवेदन शुल्क विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न विभिन्न रहेंगे, सामान्य 750 रहेगा और इसकी आधिकारिक वेबसाइट जो कि मैं आपको बता देता हूं hcraj.nic.in पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगा कि आवेदन से पूर्व आप नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें, क्योंकि नोटिफिकेशन पढ़कर आवेदन करना बहुत ही सही रहता है। तो वैसे हमने मनसुनी बात की आज जंतर मंतर और ऐसे काफी चीजों के बारे में, तो उन पर आप कुछ और कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से?
0: अब बात क्या कहें रिपु, कि ढलते हुए सूरज की रजा कुछ और है और बादलों से उतरकर जमीन पर सोने का मजा कुछ और है। तो अब जैसे जैसे सूरज ढल रहा है, वैसे वैसे ना चाहते हुए भी, समय की सीमाओं की रिस्पेक्ट करते हुए, हमें अनफॉर्चुनेटली ही सही, लेकिन अपने दोस्तों को आज के लिए बाय बाय कहना पड़ेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम इसी जोश और ऊर्जा के साथ आपके पास फिर लौटेंगे और कुछ नए सवाल, कुछ नए किस्से और नई रोचक बातें लेकर। तब तक के लिए हमें आप विदा दीजिए,
0: नमस्कार, नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। आज इस कार्यक्रम को पेश कर रहे थे रिपु दुबन और मनस्विनी सोनी। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोल भरू चैनल से बोल रहे हैं।

अभी कुछ ही देर में यानी 6:05 पर आप सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत। वही जिले की चिट्ठी लेकर हम हाजिर होंगे। समय रहेगा शाम 6:40। ग्रामीण जगत, जी हाँ, ये कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे, जरूर सुन लेगा। समय रहेगा शाम

अपना पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत आप पुणे इसी सभा में सुन सकते हैं 9:15 पर और रात्रि में 9:30

रात्रि 10 बजे सुनिएगा कार्यक्रम खेल जगत, वही सुगम संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनाएंगे कुछ चुनिंदा गजलें, जरूर सुनिएगा।

आकाशवाणी बीकानेर के ढोलम और चुनी से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को है कुछ ही पल में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मंजलपुर विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मंजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल और सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर मुख्य मुकाबला इन्हीं दो उम्मीदवारों के बीच में था। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट जीत ली है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया। उधर बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है, जहां जनसुराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा से 31वें चरण की मतगणना के बाद लगभग 19,000 वोटों से आगे हैं। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन में हंगामा करने लगे। गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया और कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया है कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। घरेलू शेयर बाजार का सेंसेक्स लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 544 अंक बढ़कर 78,639 पर, जबकि निफ्टी 391 अंक की बढ़त के साथ 24,774 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम चैनल 100.6 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 6:05

25 मिनट हुए आइए अब सुनते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत। जी हाँ, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं एक ही गीतकार के अंतर्गत आनंद बख्शी के लिखे कुछ चुनिंदा गीत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं लता मंगेशकर की आवाज के साथ, फिल्म का नाम है महबूबा। इस गीत की धुन बनाई है RD बर्मन ने और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

0: Akashwani at 90. एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: संगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर की धुन मरू चैनल से। आज हम आपको सुना रहे हैं एक ही गीतकार के अंतर्गत आनंद बख्शी के लिखे कुछ चुनिंदा गीत। इसी क्रम आइए आप सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज और साथियों की आवाज। फिल्म का नाम है कर्मा। इस गीत को सजाया है, संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार है आनंद बख्शी।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राजस्थान अंगदान जागरूकता में देश में पहले स्थान पर, नई दिल्ली में उत्कृष्टता पुरस्कार मिला। RUIDP एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से प्रदेश के 84 शहरों में 9,500 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्य करेगी। राज्य के उत्तरी और पूर्वी भागों में अगले 2 दिनों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात के आसार। और सावन के पवित्र महीने के पहले सोमवार पर भक्तिमय माहौल, समूचे प्रदेश में महादेव के जयकारों की गूंज।

0: समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर अंगदान जागरूकता के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। आज नई दिल्ली में 16वें इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे समारोह में राजस्थान को अंगदान संकल्प अभियान में पहला स्थान प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने यह सम्मान चिकित्सा शिक्षा विभाग की निदेशक डॉ रश्मि गुप्ता और सोटो राजस्थान की निदेशक डॉ चित्रा सिंह को प्रदान किया। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींसर ने यह सम्मान मिलने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अंगदान के लिए जागरूकता बढ़ाने के साथ ही प्रभावी जनसंपर्क अभियान चलाने से ये उपलब्धि मिली है। देश में आधार सत्यापित अंगदान प्रतिज्ञाओं का आंकड़ा 5 लाख से अधिक हो गया है। साल 2023 में डिजिटल अंगदान पोर्टल के शुरू होने के बाद ये उपलब्धि हासिल की गई है। आज नई दिल्ली में 16वां भारतीय अंगदान दिवस समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने बताया कि पिछले एक दशक में देश में अंग प्रत्यारोपण की संख्या बढ़कर सालाना 20,000 से ज्यादा हो गई है। इस मौके पर श्रीमती पटेल ने अंगदान के लिए जागरूकता बढ़ाने वाले एक साल के जुग जुग जियो अभियान की शुरुआत की।
1: स्वस्थ जीवन शैली को किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और भोजन आहार ऐसा लें जो आपके शरीर को बीमारियों से मुक्त रखे, और उसके बाद भी यदि ऐसी परिस्थितियां विकसित होती है किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि उसे अंगों की आवश्यकता पड़े, तो समाज के बीच में से हमको इन प्रयासों को बढ़ाना होगा। हमने आज जुग जुग जियो अभियान को प्रारंभ किया। ये अभियान देश के आम जनमानस के बीच में अंगदान के महत्व को लेकर, और मेरा सभी देशवासियों से यही कहना है कि हमारे इतिहास में अंगदान को हमेशा महादान के रूप में देखा गया।
0: राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना RUIDP प्रदेश में संवाद कार्यक्रम आयोजित करेगी। RUIDP परियोजना निदेशक हरिमोहन मीणा ने बताया कि यह संवाद कार्यक्रम 5 से 11 अगस्त तक 84 शहरों में होगा, जिसमें RUIDP 5वें चरण में होने वाले कामों की जानकारी देगी। साथ ही प्रतिभागियों से सुझाव और फीडबैक लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इन शहरों के विकास के लिए 9,500 करोड़ रूपये की लागत से विकास कार्य करेगी। इस चरण में अपशिष्ट जल और ठोस प्रबंधन के लिए शहरी यातायात सुधार और विरासत संरक्षण सहित अन्य कामों के जरिए इन शहरों को स्मार्ट और सस्टेनेबल बनाया जाएगा। श्री मीणा ने बताया कि 67 शहरों में एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से अपशिष्ट जल प्रबंधन किया जाएगा। वहीं जयपुर, जोधपुर, कोटा और भरतपुर तथा 28 शहरों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शामिल किया गया है। प्रदेश के 1 करोड़ से ज्यादा वंचित और पात्र लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान ये उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये कुल खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों का लगभग 23% है। राज्य के 4,35,00,000 लोगों को खाद्य सुरक्षा दी जा रही है। श्री गोदारा ने बताया कि 26 जनवरी 2025 से खोले गए खाद्य सुरक्षा पोर्टल से 88 लाख से ज्यादा पात्र व्यक्तियों को NFSA में शामिल किया गया है। इससे लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से निःशुल्क खाद्यान्न के साथ साथ राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि मानसून को देखते हुए लाभार्थियों को 3 महीने का राशन एक साथ दिया जा रहा है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने आज जयपुर में प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कड़ा कानून बनाया है। इससे आने वाले समय में ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी। श्री अठावले ने युवाओं से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को गांवों के गरीब और भूमिहीन परिवारों को जमीन देने का प्रावधान करना चाहिए। इससे रोजगार के लिए गांव के लोगों का शहरों की ओर पलायन रुकेगा। पीएम आवास योजना के तहत पात्र परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान मिला है शहरों में और गांवों में, और अभी 3 करोड़ लोगों को मकान देने के लिए बजट मंजूर किया है। एक भी मकान देश में कच्चा न रहे, ये हमारी इस सरकार की भूमिका है और मुझे लगता है कि इसी तरह हम काम कर रहे हैं।
0: श्री अठावले ने लोग

0: राज्यपाल हरिभाई बागड़े से भी मुलाकात की। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स 2026 में विभिन्न कार्य समूहों की बैठक हो रही है। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक कल हैदराबाद में शुरू होगी। वहीं जयपुर ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक 21 और 22 अगस्त को होगी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इससे ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच पर्यटन सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि बैठक में खास तौर पर पर्यटन क्षेत्र में AI के उपयोग और सस्टेनेबल टूरिज्म पर चर्चा की जाएगी।
1: G20 की अपार सफलता, सफल आयोजन और उसकी देश भर में बड़ी गूंज के बाद में ब्रिक्स की मीटिंग्स भी देश के विभिन्न कोनों में हो पाना, प्रधानमंत्री जी ने ऐसा सुनिश्चित किया। अभी आने वाले सप्ताहांत में भोपाल में ब्रिक्स देशों के सभी सदस्य मंत्री और इसके अतिरिक्त यूनाइटेड कंट्रीज के सभी मंत्री जो है भोपाल में 2 दिन तक उस पर चर्चा करेंगे। मैं मानता हूं कि जिस तरह से भारत ने जो कुछ पिछले 10-12 साल में जिस गति के साथ में प्रगति करते हुए अचीव किया, भारत का सम्मान पुनः स्थापित हो रहा है, ऐसे समय में ब्रिक्स का आयोजन भारत के प्रति सम्मान को और अधिक ऊंचा चढ़ाने वाला।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News Rajasthan पर भी सुन सकते हैं। राज्य में इस बार मॉनसून की अधिक सक्रियता नहीं रही है। जल संसाधन विभाग के अनुसार इस सीजन में अब तक सिर्फ फलौदी जिले में ही असामान्य बारिश हुई है। वहीं बाड़मेर और बीकानेर सहित 5 जिलों में अत्यधिक पानी बरसा है। अजमेर, जोधपुर और भरतपुर सहित 16 जिलों में सामान्य बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा जयपुर, कोटा और उदयपुर सहित 19 जिलों में सामान्य से कम पानी बरसा है। इस बीच आज श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के साथ सूरतगढ़, साधनशहर और श्रीकरणपुर में अच्छी बरसात हुई। भरतपुर में भी दोपहर बाद घनघोर घटाएं छा गई और देखते ही देखते झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। नदबई, उज्जैन, भुसावर, बयाना और रूपवास इलाकों में जोरदार बारिश हुई। राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज कम दबाव का परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। मॉनसून टर्फ लाइन बीकानेर से होकर गुजर रही है। आज भरतपुर, जयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। हालांकि जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियों में आज से ही कमी आने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन राज्य के उत्तरी और पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत अगले साल फरवरी महीने से होगी। इसके लिए प्रशासनिक और लॉजिस्टिक व्यवस्थाएं की जा रही है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर में जनगणना कार्य निदेशालय का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने जिला जनगणना पुस्तिका और प्रशासनिक एटलस को जल्द अपडेट करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिलों, तहसीलों और कस्बों की तादाद में बढ़ोतरी को देखते हुए विकास योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने में ये दस्तावेज काफी अहम है। मुख्य सचिव ने जनगणना के पहले चरण के तहत हुई मकान सूचीकरण और गणना पर संतोष जताया। उन्होंने 17 अगस्त से पहले भू स्थानिक और डिजिटल टूल्स के उपयोग पर कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिए। चूरू जिले में आज एक भीषण सड़क हादसे में 3 महिलाओं की मृत्यु हो गई और 13 श्रद्धालु घायल हो गए। दुर्घटना सुजानगढ़ क्षेत्र में बुवासर पुलिया पर टेम्पो ट्रेलर और ट्रेलर के बीच आमने सामने की टक्कर से हुई। पुलिस के अनुसार हादसे के शिकार ये लोग कोलकाता के एक ही परिवार से हैं। राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा पर आए थे। सालासर बालाजी मंदिर में दर्शन करने के बाद पुष्कर धाम के लिए रवाना हुए थे। घायलों को सुजानगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सावन के पवित्र महीने के पहले सोमवार पर आज समूचे प्रदेश में भक्तिमय माहौल बना हुआ है। व्रत, उपवास और जप तप से लोग भोलेनाथ को प्रसन्न करने में जुटे हुए हैं। शिवालयों में आज सुबह पट खुलते ही अभिषेक का सिलसिला शुरू हुआ और समूचे वातावरण में हर हर महादेव के जयकारे गूंजे।

जयपुर के तारकेश्वर महादेव मंदिर में उज्जैन के महाकाल मंदिर की तर्ज पर भस्म आरती हुई। इसी तरह रंगीला महादेव, रोजगारेश्वर, चमत्कारेश्वर मंदिरों में लोगों का सैलाब उमड़ा। उदयपुर के प्राचीन नीलकंठ महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कांवड़ यात्राओं और भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। प्रमुख मंदिरों में बैरिकेडिंग तथा प्रवेश, निकास और पार्किंग के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर व्हीकल नियम 1989 में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसमें आपातकालीन चिकित्सा सेवा के लिए दोपहिया रोड एम्बुलेंस शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे दुर्घटना और आपात स्थिति में पीड़ितों तक जल्द पहुंचना आसान होगा। खासकर दूर दराज और संकरी जगहों में लोगों को समय पर इलाज मिल सकेगा। मंत्रालय ने एक और अधिसूचना जारी की है। इसके तहत वाहनों में व्हीकल टू व्हीकल संचार प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का प्रस्ताव है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान अंगदान जागरूकता में देश में पहले स्थान पर, नई दिल्ली में उत्कृष्टता पुरस्कार मिला। आज IDP एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से प्रदेश के 84 शहरों में 9,500 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्य करेगी। राज्य के उत्तरी और पूर्वी भागों में अगले 2 दिनों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात के आसार और सावन के पवित्र महीने के पहले सोमवार पर भक्तिमय माहौल। समूचे प्रदेश में महादेव के जयकारों की गूंज। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं अजय सिंह शक्तावत। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल चित्तौड़गढ़ दुर्ग को केंद्र सरकार की डेवलपमेंट ऑफ एक्सक्यूवेटेड साइट्स एंड हेरिटेज कॉम्प्लेक्स योजना में शामिल किया गया है। इसके तहत लगभग 108 करोड़ रुपए की लागत से ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जाएगा। योजना के तहत पद्मिनी महल में नई हिस्ट्री गैलरी, आधुनिक संग्रहालय, वॉकवे, इंटरप्रिटेशन सेंटर और अन्य सुविधाएं विकसित होंगी। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ने की संभावना है। रेल परियोजनाओं के क्षेत्र में भी जिले के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति सामने आई है। सांसद CP जोशी ने बताया कि नई रेल लाइन, दोहरीकरण, विद्युतीकरण और रेलवे स्टेशनों के विकास के कार्य जारी हैं। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित बुलेट ट्रेन परियोजना के प्रारंभिक सर्वे में चित्तौड़गढ़ और देवारी में स्टेशन बनने की संभावना है। वहीं चित्तौड़गढ़ अजमेर रेलखंड पर कार्य प्रगति पर है और चित्तौड़गढ़ कोटा रेल लाइन की स्वीकृति प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। इन परियोजनाओं से जिले की रेल संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी और पर्यटन तथा व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। रावतभाटा स्थित राणा प्रताप सागर विद्युत गृह में सुरक्षा तैयारियों की जांच के लिए ATS कोटा और इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम की संयुक्त मॉक ड्रिल आयोजित की गई। अभ्यास के दौरान आतंकवादी हमले का काल्पनिक परिदृश्य तैयार किया गया। सुरक्षा बलों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आतंकियों को निष्क्रिय किया और बंधक बनाए गए कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के अभ्यास का उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना है। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा और ऊर्जा मंत्री हीरालाल मैदान ने पिछले दिनों निम्बाहेड़ा में लगभग 90 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिजली, सड़क, पीने के पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं का लाभ गांवों और शहरों के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। सांसद CP जोशी ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे। बैठक में जल जीवन मिशन, विद्युत अवसंरचना, सड़क परियोजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, टीबी मुक्त अभियान और जन औषधि केंद्रों की प्रगति की समीक्षा भी की गयी। प्रदेश के बालोतर जिले के पचपदा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण चित्तौड़गढ़ जिले के सभी उपखंड मुख्य

0: अंत्येष्टि कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी ऑडिटोरियम में हुआ। इस अवसर पर आयोजित रोजगार उत्सव में 527 नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी, यमुना जल परियोजना और जयपुर मेट्रो सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं से प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। मॉनसून की सक्रियता के साथ ही जिले में खरीफ फसलों की बुआई लगभग पूरी हो चुकी है। कृषि विभाग के अनुसार इस साल किसानों ने सबसे अधिक क्षेत्र में मक्का की खेती की है। इसके अलावा सोयाबीन, उड़द तथा अन्य खरीफ फसलों की भी बुआई की गई है। कृषि विभाग किसानों को उन्नत खेती और फसल प्रबंधन के संबंध में तकनीकी सलाह उपलब्ध करा रहा है। हरियाणा राजस्थान अभियान के तहत जिले में इस साल 32.5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान में विभिन्न विभागों, ग्राम पंचायतों, विद्यालयों, उद्योगों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आमजन की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। वन विभाग ने बस्सी अभयारण्य में ड्रोन के माध्यम से बीजों का छिड़काव कर पौधरोपण का नवाचार किया है। इसके तहत स्थानीय प्रजातियों के बीज का छिड़काव किया गया है। विभाग आगामी सितंबर और फरवरी में सर्वे कर इस प्रयोग के परिणामों का आकलन करेगा। प्रशासन ने लगाए गए पौधों की नियमित देखरेख और संरक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं ताकि अभियान का स्थायी लाभ मिल सके और जिले का हरित क्षेत्र बढ़ सके। इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, राजस्थान अंगदान जागरूकता मामला में देश में अव्वल, नई दिल्ली में उत्कृष्टता पुरस्कार नवासी जियो। RUIDP ने और एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद, प्रदेश में 84.9 हजार करोड़ रुपए का खर्च, विकास का काम कराया जावेला। कजरा उत्तराध और उगली हल्का में आवता दो दिन हल्के मझला दर्जारी बरसात रहा आसार। और सावन का पहला सोमवार रे मौके राज्य में महादेव रा जयकारा रे गूंज। समाचार सागे में सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार, राजस्थान में अंगदान जागरूकता में हल्का माय बेहतरीन काम सारू राष्ट्रीय स्तर में उत्कृष्टता पुरस्कार नवासी जो है। आज नई दिल्ली में 16वां इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे समारोह में राजस्थान ने अंगदान संकल्प अभियान में अव्वल रहन पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, चिकित्सा शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर रश्मि गुप्ता और सोटो राजस्थान के निदेशक डॉक्टर चित्रा सिंह ने ओमान देर नवाजा। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर ओमान मिलन पर खुशी जाहिर की। मैं कहूं कि अंगदान सारे जागरूकता बदलन सके असरदार जन संपर्क अभियान चलावन आ उपलब्धि हासिल हो सके। ये बीचे देश में आधार सत्यापित अंगदान प्रतिज्ञा की तादाद में 5 लाख ने पार कर की है। आज नई दिल्ली में राखी जा 16वां भारतीय अंगदान दिवस समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल आज जानकारी दी। वे बताया कि लाडला 10 साल में देश में हर साल 20,000 बत्ता उपतों ने कर किया। ये मौके मंत्री अंगदान मेरा में चार जगावन का मकसद एक साल तक चलाए जाने वाला जग जुग जियो अभियान की शुरुआत की।
2: स्वस्थ जीवन शैली को किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और भोजन आहार ऐसा लें जो आपके शरीर को बीमारियों से मुक्त रखे, और उसके बाद भी यदि ऐसी परिस्थितियां विकसित होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि उसे अंगों की आवश्यकता पड़े, तो समाज के बीच में से हमको इन प्रयासों को बढ़ाना होगा। हमने आज जुग जुग जीव अभियान को प्रारंभ किया। ये अभियान देश के आम जनमानस के बीच में अंगदान के महत्व को लेकर, और मेरा सभी देशवासियों से यही कहना है कि हमारे इतिहास में अंगदान को हमेशा महादान के रूप में देखा गया।
1: राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने कहा कि अंगदान इंसानियत सारो खुद में समर्पित कर देने में जुड़े महादान है। वह राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में राखी जिया अंगदान जागरूकता कार्यक्रम में बोल रहा है। श्री बागड़े कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने अंगदान की शपथ दिलाई। भारतीय अंगदान दिवस के मौके

0: चार जगहों रमकसदों प्रदेश में आए कई कार्यक्रम रखी गया पाली में चिकित्सा विभाग और सामाजिक संस्थाओं की ओर अंगदान महादान जागरूकता रैली निकाली गई जिनमें शामिल होने वाला अंगदान करने की सौगंध ली राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना RUIDP प्रदेश श्री ओर राज्य में संवाद कार्यक्रम रखो जावेला RUIDP का परियोजना निदेशक हरिमोहन मीना बताया कि वो कार्यक्रम 5 और 11 अगस्त तक 84 ठोड़ा रखो जावेला इन तहत RUIDP 5वां दौर में कराया जाने वाला काम की जानकारी देवन सागे राय लेवेला वो बताया कि राज्य सरकार आठोड़ा का विकास सारू 9,500 करोड़ रुपया का खर्च न्यारा न्यारा काम करावेला इस दौर में गंदा पानी और ठोस कचरा का प्रबंधन शहरी यातायात सुधार और विरासत में सहेज रखन समेत न्यारा न्यारा काम के जरिए आठोड़ा ने स्मार्ट और आगे की पीढ़ी में रहने लायक बनाया जावेला श्री मीना बताया कि 67 शहरों में एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद गंदा पानी का प्रबंधन करो जावेला जबकि जयपुर जोधपुर कोटा और भरतपुर समेत 28 शहरों में ठोस कचरा प्रबंधन का काम कराया जावेला प्रदेश का 1 करोड़ भत्ता वंचित और पात्र लोगों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ी किया है खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित कोतारा बताया कि आ तादाद खाद्य सुरक्षा योजना में फायदा लेने वालों की कुल तादाद रो करीब 23% है मंत्री बताया कि राज्य में 4,35,00,000 जनों में खाद्य सुरक्षा दी जा रही है श्री गोदारा बताया कि 26 जनवरी 2025 को शुरू करी गया खाद्य सुरक्षा पोर्टल के जरिए 88,00,000 उपभोक्ता पात्र लोगों ने NFSA में शामिल करी गया है वह कहो कि चौमासा में ध्यान रखता था लोगों ने 3 महीने रो राशन एक सागर दियो चारियो है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले आज जयपुर में खबर नवीसन सागे बातचीत कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां की जानकारी दी वह कहो कि सरकार पेपर लीक री घटनाओं माथे लगाम लगावन सारू कड़ू कानून बनायो है यू आओ महाभगत में एड़ी घटनाओं माथे रोक लगेला श्री अठावले नौजवानों शांति सागे उन्होंने बात रखने की अपील की वह कहो कि राज्य सरकार ने गांवारा गरीब और भूमिहीन परिवारों ने जमीन देने का प्रावधान करने चाहिए इन्हें रोजगार सारू गांव वाले लोगों ने शहरों में नहीं जाने मिला पीएम आवास योजना के तहत पात्र परिवारों ने पक्का मकान मुहैया कराया जा रहा है
1: प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान मिला है शहरों में और गांवों में और अभी 3 करोड़ लोगों को मकान देने के लिए बजट मंजूर किया है एक भी मकान देश में कच्चा न रहे ये हमारी इस सरकार की भूमिका है और मुझे लगता है कि इसी तरह हम काम कर रहे हैं
0: श्री अठावले लोक भवन में राज्यपाल हरिभाई मांगड़े से मुलाकात की केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले कहे कि सरकार पेपर लीक का वाकया रोकण सारू कड़ो कानून लाई है और अब पेपर लीक करण का दोषियों ने 10 साल तक की कैद की सजा रो प्रावधान करी चुको है भारत री सदनत में ब्रिक्स 2026 में न्यारा न्यारा कार्य समूह री मीटिंग रखी जा रही है ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली बारे में विशेषज्ञ नेटवर्क की दूजी बैठक कल हैदराबाद में शुरू होना दूजी कहानी जयपुर ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेला आ मीटिंग 21 और 22 अगस्त में फैला केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज खबर नवीसन सागे बातचीत करता था का कहो कि यो ब्रिक्स सदस्य देशों बीच पर्यटन सहयोग में बढ़ावा मिलेला वह बताया कि मीटिंग में खास तौर पर्यटन हल्का में AI काम लेवल और सस्टेनेबल टूरिज्म के बारे में चर्चा करी जावेला
2: G20 की अपार सफलता सफल आयोजन और उसकी देश भर में हुई गूंज के बाद में ब्रिक्स की मीटिंग्स भी देश के विभिन्न कोनों में हो पाने प्रधानमंत्री जी ने ऐसा सुनिश्चित किया अब आने वाले सप्ताह में भोपाल में ब्रिक्स देशों के सभी सदस्य मंत्री और इसके अतिरिक्त इन्वाइटेड कंट्रीज के सभी मंत्री जो है भोपाल में 2 दिन तक उस पर चर्चा करेंगे मैं मानता हूँ कि जिस तरह से भारत ने जो कुछ पिछले 10-12 साल में जिस गति के साथ में प्रगति करते हुए अचीव किया भारत का सम्मान पुनः स्थापित हो रहा है ऐसे समय में ब्रिक्स का आयोजन भारत के प्रति सम्मान को और अधिक

समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। अब मौसम। प्रदेश में इन दफा वार्ता चौमासा बिरखा मंडी विवरण किसानों ने चिंता व्यक्त की है। जल संसाधन विभाग ने मुजब वार्ताएं केवल फलौदी जिला में घनी जोरदार बिरखा हुई है, जबकि बाड़मेर और बीकानेर समेत पांच जिला में बत्तो पानी बचो है। अजमेर, जोधपुर और भरतपुर समेत 16 जिला में सामान्य बारिश हुई। जयपुर, कोटा और उदयपुर समेत 19 जिला में सामान्य कम पानी बचो है। आज श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय सागर, सूरतगढ़, साधु शहर और श्रीकरणपुर में चौखों में बरसियो। भरतपुर में दोपहर पाछे झमाझम बारिश हुई। नदबई, उज्जैन, भुसावर, बयाना और रूपवास हल्का में जोरदार बरखा हुई। आज भरतपुर, जयपुर और बीकानेर संभाग का कुछ हल्का में मझनी तेज दर्जे बारिश की संभावना है। हालांकि जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग का कुछ हल्का में बारिश में आज भी कमी आवन रहा आसार है। सावन का पहला सोमवार के मौके आज पूरा राज्य में भांत भांत का कार्यक्रम रखी गया। शिवालय में तड़के पट खोलताई अभिषेक रोशन शुरू हो गयो और पूरा वातावरण में हर हर महादेव का जयकारा गूंज उठा।

जयपुर में तारकेश्वर महादेव मंदिर में उज्जैन का महाकाल मंदिर रिभात भस्म आरती हुई। उदयपुर में नीलकंठ महादेव मंदिर में मोटी तादाद में यात्रियों को उभरिया है। कावड़ यात्रा में और भक्तों ने मोटी तादाद में ध्यान रखता थका प्रशासन ने उन्हें हिफाजत का खास इंतजाम कर लिया है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरा के जरिए निगरानी रखी जा रही है। भरतपुर में नाग पंचमी के मौके किनारा बांके बिहारी परिक्रमा के लगाए यात्रियों नाग देवता की पूजा अर्चना कर खुशहाली और बरकत की कामना की। सवाई माधोपुर जिला में शिवाड़ का खुशमेश्वर महादेव और भगवतगढ़ का अग्नेश्वर महादेव समेत न्यारा न्यारा शिव मंदिर में भक्त जल दूध दही और पंचामृत शिवलिंग को अभिषेक कर पूजा अर्चना की। कावड़ियाई पवित्र सरोवर जमनार भूमिनाथ रो अभिषेक कीनो। सवाई माधोपुर जूना शहर में कावड़ यात्रा निकाली जी मोटा सिंजानी पर भजन संध्या रो ये कार्यक्रम है। हनुमानगढ़ शिव मंदिर में जात्रो भगवान शिव रे दूध जल और बेल रो पत्ता चढ़ार सुख समृद्धि की कामना कर रहा है। इन दिनों में एडीएम डॉक्टर अजय ने बताया कि देवस्थान विभाग री ओर लावरेश्वर महादेव मंदिर में समारोह 9-10 बजे ताई रुद्राभिषेक महोत्सव रखियो। बाड़मेर जिला रा न्यारा न्यारा शिव मंदिर में मोटी तादाद में यात्रु भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहा है। आखिर में खास समाचार एक फिर सुन ले रहो। राजस्थान अंगदान जागरूकता रा मामला में देश में अव्वल। नई दिल्ली में उत्कृष्टता पुरस्कार नवाजी जियो। आरयूआईडीपी री और एशियन डेवलपमेंट बैंक री मदद। प्रदेश में 84.9 हजार करोड़ रुपए रा खर्च और विकास रा काम कराया जावेला। राज्य रा उत्तराखंड और हुगली हल्का में आता 2 दिन हल्की मझला दर्जा री बरसात रा आसार। सावन रा दोहना सोमवार रा मौके राज्य में महादेव रा जयकारा री गूंज। ये सभी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन।

सात बजे हैं। जी हाँ, समय हो चला है कार्यक्रम ग्रामीण जगत का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्रामीण जगत। आज इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं अश्विनी व्यास और संदीप कुमार।

0: ग्रामीण और किसान भाई बहना ने अश्विनी व्यास
1: और संदीप भाई का
0: राम राम। संदीप भाई राम राम।
1: रामी राम राम राम राम अश्विनी भाई आपने भी। और देखो बहुत दिन बाद जब मेल मुलाकात हुआ है तो थोड़ा सा मन भी हर कीजिए और मन हर को एक दूसरे कारण और भी है कि आप देख रहे हैं कि बार नाते छिड़का छिड़का हो रहा है तो ये सुख फिर के है कि आपने थोड़ा सा मन जो को है वो और चोखो चावे फिर बाता करना भाई अश्विनी भाई थे मिल गया तो फिर कहने के
0: बिल्कुल। संदीप भाई अब आर जी को मौसम में बदलाव हो जाए भी मौसम में बदलाव ने देखते हुए अब धीरे धीरे बादल या जी का बरसन ने तैयार खड़ा है। बहुत तेज तो मानसून को नहीं बरस पा रहे हो लेकिन थोड़ो घड़ो छाटो छिड़को शुरू हो है और सुनने में आ रही है कि बहुत जल्दी ही चोखी बारिश होसी और चारों खानी हरियाली होसी और अपना गोचर ओरण हरी चादर ओढ़ लेसी जिका किसान भाई अब फसल री तैयारी में लागोड़ा है तो वह भी खेत जिका है वह लहलहासी और चारों खानी एक फूट रापो देखने आपने मिल सी।
1: भाई देखो जब लून झूम बदमाती आवे बिरखा बीननी तो देखो है इसी सगली बात तो होनी लाजमी है जरूरी भी है और इन सागर सागर देखो आप हाँ खेती बाड़ी से जुड़ेड़ा और खेती बाड़ी में आप चाव झुक है वो सावनी की फसल में की ज्यादा ही हो है क्योंकि मूंग है मोट है बाजरी है आपन उपजावा और खास तौर पे जो मैं बात करूं तो मोट की जगह फसल है बा आपने इन क्षेत्र में बहुत ही चाव सुन की है बा लगाई चावे और लगाने की वजह भी है कि देखो दाम भी जो है वह आपने चोखा मिल जाया करे और इन अलावा देखो तकनीकी रूप से एक बात करा कि आप एक तो मान लो बाजरी बा रहे अश्विन भाई और एक जो आप मान लो मूंग या मूठ पाए नी तो इसु आपने जमीन में नाइट्रोजन जकी है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो को है मतलब हवा की जगह नाइट्रोजन है बा जमीन में जावा क्योंकि जकी भी दाल वाली फसल है बाकी जड़ा में एक ग्रंथी हुआ है जका में ताकत हो है कि वह वायुमंडल की जगह नाइट्रोजन है बिने खींच के जमीन में लिया हुआ तो जगह सो न केवल जगह मुख्य फसल लागे गई बिन फायदो है बल्कि आगली जगह भी आप फसल लेना बिने भी की न की फसल में नाइट्रोजन को जो फायदो है वो मिल जा करे।
0: और संदीप भाई बहुत चोखी और वैज्ञानिक जानकारी थे दी नाइट्रोजन जी की है बा एक काम सागे सागे संदीप भाई और करे कि मिट्टी रज का पोषक तत्व है वे धीरे धीरे पौधे तक पहुंचे तो मिट्टी रो पोषण भी कम कोनी हुए और पौधे ने भी मेरी जरूरत रे मुताबिक पूरो पोषण मिल जावे। आज संदीप भाई जी की थे मोठ ये बार बात कही तो मोठ अबार रोज को समय है ई टाइम ही ई मोठ री बुआई करी जा सके।
1: बिल्कुल और मोटी बुआई देखो ज्यादातर तो होगी है और अब बिरखा जी की हो रही है बाबी आपने फसल के लिए एक कह रही बहुत बढ़िया चीज है एक जीवन दान जो है वो आपने फसल में मिले और इनके सागे सागे एक चीज अपन और भी ध्यान रख लीजिए जब भी देखो बरसात हुआ सीरो नमी वगैरह हुआ तो आने वाले टाइम में फिर कोई बीमारी वगैरह लागने को कीड़ा मकोड़ा लागने को भी थोड़ा सा डर रहे तो बिन भी चेष्टा जी की है वह अपने समय रहते पहले से कर लेनी चाहिए।
0: बिल्कुल संदीप भाई और एक किसान भाई वो भी ध्यान रखे कि जिको मोटरी बिजाई करी है तो खरपतवार रो नियंत्रण भी बीटम करता रहे क्योंकि बरसात रो टाइम है तो जिया जिया पौध निकल सी बिया बिया मिट्टी में से खरपतवार भी निकल सी तो बुआई रे बाद रे माने 48 घंटा रे माए माए पेंडीमेथिलिन दवाई जिको है बिरो छिड़काव कर दे या हाथ सु भी खरपतवार
1: हाँ, निदान जो का हाथ सु भी काट सका
0: बिल्कुल
1: हाँ, जे आप घर में सदस्य हां हाँ, तो आप घर सगड़ा मिल गए भी छे निदान जो का वो आप कर सका
0: तो अगर इन खरपतवार ना पा निकाल दे तो मिट्टी रज को पोषण है वो भी मोठ री पौध नहीं मिल पावे। और संदीप भाई देखो मोठ तो बीकानेर वास्तर कितो में तो दुनिया में डंको बाज रहे है कि मोठ रा भुजिया खाली बीकानेर
1: देखो सुन ज्यादा और सुन बढ़िया क्वालिटी को मूठ चुका है वो अपने ठे राजस्थान में ई जगह हुए बाकी और कोई जगह तो बढ़िया ई क्वालिटी को हो को नहीं तो एक तो आपने इस चीज पर गर्व करना चाहिए कि आपने अगर एक ऐसी फसल है जगह पर आपने कह कह आपने जगह कंधा ऊंचा हुआ है
0: कंधा ऊंचा हुआ है और साथ साथ देखो जब भुजिया का दाम पूरे दुनिया रे मायने बढ़ रहा है दुनिया रे कोने कोने तक भुजिया जा रहा है तो मोठा राज्य का किसान है बिया ने भी इरो लाभ कियान के रूप में मिली है तो मोठा रा दाम भी जिका है देखो लाड़ले समय रे मायने अच्छा बढ़िया है और मोठा किसान चोखा मुनाफा कमा रहा है तो मोठरी

0: व्यक्ति किसान माया वास्तव एक संजीवनी रो काम कर रही है
1: और अच्छी बात आ है। देखो अश्विन भाई कि मूठ जी कम पानी में हो जाए और लगभग तीन महीना में फसल जी पूरी हो जाए और 812 क्विंटल जी है अपन फसल प्रति हेक्टर जी मिल जाया करे, तो चौकी सार संभाल करा अच्छी फसल लेवा बढ़िया मुनाफा जो है वो आप लेवा।
0: वाह संदीप भाई बहुत चोखी और सांतरी जानकारी थी मठ रे बारे में दी। अरे अब कार्यक्रम में आप थोड़ा आगे बढ़ा और देखो सावन रो समय सुना चोखो सो गीत लो।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: सावण रो मौसम शुरू हो गयो और चारों खाने में है, तो बार आपा गीत सुनियो सावण लाग्यो भादवो। और अब आपा जिका किसान भाई पशुपालन भी करे है, बियाने वास्तर मुर्गी पालन एक बहुत चोखो काम है, भी सुबह चोखी आमदनी रह सके, लेकिन भी तकनीक और प्रबंधन कई है। इन बारे मायने आपा बार जानकारी सुन सा भेंटवार्ता आधुनिक तकनीक और प्रबंधन। भेंटवार्ता देवनाला है डॉक्टर अरुण कुमार झीरवाल और यहाँ से बातचीत करी है संदीप पारिख।
4: बाड़ी सु जुड़ेड़ा भाई लोग है, बारो प्रयास रवे कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन जो है वे आप गए रोजमर्रा के जीवन में ले। खेती बाड़ी सु उत्पादन लेने की एक निश्चितता हो, बी सु ज्यादा आप उत्पादन को नहीं ले सका। ई वास्ते भाई लोग कई बार प्रयास करे कि भी सागे कोई दूसरो काम धंधो जे टोरेडो हो तो बी सु आप अच्छी आमदनी जी के बा कर सका। अच्छी आमदनी के लिए बहुत सारा दूसरा काम जिका है वह कराया जा सके, जिका में एक है मुर्गी पालन। लेकिन मुर्गी पालन करने के लिए आपने बहुत सारी तकनीकी बातों को ध्यान होना चाहिए, क्योंकि जे थोड़ी सी भी जे चूक हो जावे तो मुर्गी पालन व्यवसाय में बहुत बड़ो घाटो जो है वो मुर्गी पालक भाई लोगों ने हो जाया करे। तो मुर्गी पालन के लिए आधुनिक तकनीक के है और ईरो प्रबंधन जो है वो किन प्रकार से करना चाहिए, आ सगली बाता की जानकारी लेने के लिए आज मैं आमंत्रित करे है डॉक्टर अरुण झीरवाल जी ने। आप सहायक आचार्य हैं राजूवास बीकानेर में। डॉक्टर साहब नमस्कार।
5: नमस्कार साहब।
4: डॉक्टर साहब जी, आप जाना कि खेती बाड़ी के अलावा दूजो काम जो कोई तोड़ना चाहे तो मुर्गी पालन जो है वो सरल भी

0: लेकिन इन सागे सागे कई तकनीकी पहलू जका है बै जुड़ेड़ा है। तो आज सगली बातों पर आप बातचीत करा तो सब पहले तो आप यहां बताओ और महाराज जका भी मुर्गी पालक भाई है बाने कि वर्तमान में मुर्गी पालन व्यवसाय इतना महत्वपूर्ण क्यों होता जा रहे है।
1: बिल्कुल, अपना जो पशुपालक भाई है या जो किसान भाई है वह अब तक गाय भैंस भेड़ बकरी ऐ तो क्या है कि मैं वर्षों आप देखता आ रहे हैं कि भाई अपना पूर्वज भी पाला करता सब पाला करता, लेकिन मुर्गी पालन एक नयो उभरता हुआ व्यवसाय है जो कि थे पशुपालक भाई कम लागत में और कम जगह में और कम मेहनत में तीनों चीजों की बहुत कम आवश्यकता हुआ है और अधिक से अधिक मुनाफा पे भी कमा सकें। क्योंकि अब देखा आप जहाँ पशुपालक भाइयों की जमीन कम होती जा रही है, कई पशुपालक भाई यहाँ कहें जाकर निवेश करने पूंजी को नहीं, तो वह ई व्यवसाय जुड़ के अपना जो आर्थिक स्तर है वो ऊपर उठा सके हैं वह। क्योंकि मुर्गी पालन व्यवसाय में अगर थे जहाँ घरेलू मुर्गियां पालो देसी मुर्गियां पालो तो भी जो शुरुआती लागत हुआ है वह काफी कम हुआ है।
0: कुल मिलाकर आप जी की बात बताई कि एक तो कम लागत और कम मेहनत में इन व्यवसाय ने शुरू कर जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, अब चीज आप बताओ कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसान जो है बिंग आय में मुर्गी पालन व्यवसाय किन प्रकार से योगदान करे।
1: जी मैं पहले बताई भाई, अगर आप ग्रामीण परिवेश की बात करा तो आप यहाँ देखेंगे भाई जगह लघु किसान भाई है अपना जाकर जमीन भी कम है और पूंजी भी वाकन ज्यादा कौन कि भाई एक सगे पीसो लगा सकें और आपको कोई नया व्यवसाय शुरू कर सकें। बा खातर मुर्गी पालन एक वरदान की तरह साबित हो रहे हैं। ये मैं यह है कि भाई कम लागत में थे देसी मुर्गियां सगे शुरू कर सको, मतलब कुछ हजार रुपया में ही थारो व्यवसाय शुरू हो सके और ब्यू थाने साल भर ब्यू आमदनी हो सके और या फिर जब थान जुड़ते हुए विशेषकर सर्दियां तो एक आमदनी को स्तर एकदम से उठ जाए। तो पशुपालक भाई आपके एरिया में देखता हूँ कि देसी अंडे की और देसी मुर्गियां की जहाँ मांस खतर है या और भी कोई उपयोग खतर है तो वहाँ की जो मांग है बस सर्दियां में तो विशेष रूप से बढ़ जाए।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, आप जी एक बात बताई कि भी मुर्गी पालन में आप अंडे के लिए भी कर सका और मांस उत्पादन दोनों चीजों के लिए आप मुर्गी पालन व्यवसाय जो कब वो शुरू करा। अब सवाल अठा ओ आवे जो कब भाई लोग नयो मुर्गी पालन को व्यवसाय करना चाहे इनसे जुड़ना चाहे कि अंडे और मांस उत्पादन के लिए कौन कौन सी मुर्गी की नस्ला है जिकी की एक आम मुर्गी पालक ने रखनी चाहिए।
1: उधर बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आई एक समस्या है जो पशुपालक भाइयान समय आवे है क्योंकि बहुत से पशुपालक भाइया नस्लों को ध्यान को नहीं हुआ है। वह अंडा उत्पादन खातर मांस वाली मुर्गी लिया हुआ है या मांस खातर अंडा वाली मुर्गी लिया हुआ है, फिर बान भी तो उत्पादन कौन मिले तो वह हतोत्साहित हो जाए शुरू में ही। तो बात है कि भाई जहाँ मुर्गी पालन जो आप करा जिनको कुट पालन कहा वो विशेष रूप से दो चीजा खातर करे जाए मांस और अंडा खातर। तो अगर आप अंडा खातर करा तो जहाँ बाजार में आप देखा वो सफेद रंग को अंडा आवा है तो वो एक नस्ल आवा है मुर्गियों की व्हाइट लेगहॉर्न जो साल में थाना आराम 300-350 अंडा देवे। तो अगर थाने सिर्फ अंडे खातर करना है तो आप व्हाइट लेगोन मुर्गी पाल सका। फिर अगर आप मांस खातर करा तो मांस खातर अलग अलग स्ट्रेन का ब्रॉयलर आवे है, कोब स्ट्रेन आउन सम ज्यादा प्रचलित और प्रसिद्ध है वो थे कर सको। हाँ, एक सिवाय एक और विकल्प भी पशुपालक भाइयों है जो वह कम लागत में कर सके जिसमें मैं पहले बताया तो वो है देसी मुर्गियां जहां आपने कड़कनाथ है, असील है, प्रतापधन है, मेवाड़ी है अपने राजस्थान की, तो अंत है पाल सको एक करेंगे था अंडो भी और मांस दोनों चीजों के लिए काम मांस के हैं और आगे लागत बहुत कम आवे और आम बीमारी भी बहुत कम आवे।
0: तो डॉक्टर साहब, कोई मान लो भाई नयो व्यवसाय शुरू करना चाहे और मुर्गिया ने रखना चाहे तो मुर्गिया ने जिकी जगह रखे मतलब जो को आवास है बिंग संबंध में अपन इसी कौन कौन सी बातें जगह को ध्यान रखना चाहिए।
1: आवास प्रबंधन जो है मुर्गी पालन व्यवसाय में वो सब महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यह है कि भाई जब आप मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू करा तो भी खातर जो कि आप जमीन आप चिन्हित करा भी जमीन को सही जो चुनाव है वो बहुत आवश्यक है। तो भी क्या हुआ कि भाई जब भी आप मुर्गी व्यवसाय शुरू करा मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू करा तो कोशिश आ करनी चाहिए कि वो कोई घनी आबादी क्षेत्र के कन्ने नहीं होवे। क्योंकि अगर वो घनी आबादी क्षेत्र के कन्ने है तो आज नहीं तो कल लोगों ने समस्या होगी हो सके अपन वो अपना फार्म बंद करना पड़े। दूसरा यह है कोई जल भराव क्षेत्र में नहीं होवे जबकि आप देखा क्योंकि मुर्गियों के लिए अगर तापमान में थोड़े बहुत भी जहाँ उतार चढ़ाव जो है या फिर जहाँ पानी अगर इकट्ठा हो गया तो बहुत सी बीमारियां खतरनाक बीमारियां यहाँ की हैं जो कि लीटर जो वहां को बिछावन है वो गिल्लो होना वह हो सके। फिर आवास प्रबंधन में फिर जो जरूरी चीज आवे वह आवे दिशा जो लंबाई जो आप बाड़ो बनावा मुर्गियां खतर वो जड़ तक हो सके कोशिश यह करनी चाहिए कि पूर्व पश्चिम दिशा में हो तो जो सूरज की रोशनी है वह अपने पक्षियों पर सीधी कौन पड़ेगी। फिर एक और जरूर

0: चीज है जो पशुपालक भाई कई बार गलती कर जाए, लेकिन वो है कि जहां चौड़ाई जकी हुआ है तो आवास की चौड़ाई पशुपालक भाई कोशिश करें कि 25 फीट ज्यादा नहीं करें, क्योंकि अगर 25 फीट ज्यादा थे चौड़ाई कर दी तो क्या होगा, जो दूषित हवा है वह अंदर ही रहेगी, तो बहुत सी जो सांस रोगी बीमारियां हैं वह मुर्गियां हो जाएंगी और बाव में बाकी मृत्यु दर भी बढ़ सकती।
1: अच्छा एक चीज है जी, आप चाहवा कि अंडो उत्पादन ले रहा हाँ या मांस उत्पादन ले रहा है वो अपन अच्छो मिले, तो बिंग लिए आ चीज भी जरूरी है कि मुर्गियां हैं माना खान पान जो है वो भी आप अच्छो करा, तो खान पान के संबंध में ऐसी कौन सी बात है जबकि की एक आम मुर्गी पालक ने ध्यान रखनी चाहिए।
0: खान पान के आप बात करें तो आप आहार प्रबंधन अपनो जो आप दानो दान, तो दाना की जकी लागत है और पूरे मुर्गी पालन की जकी लागत है, तो बी को जो दानो है दाने पर लगभग 70-75% जो 70-75% है वो खर्च हो जाए, 100 रुपया अगर थारा पूरे मुर्गी पालन पर खर्च हो जाए तो भी वो 70-75 रुपया थारे सिर्फ दाने पर खर्च होगा। यूं आप समझ सकेंगे भाई दानो कितनो महत्वपूर्ण है, तो दानो जो बाजार में मिल रहा है अगर कोई पशुपालक भाई बड़े स्तर पर शुरू करे ये तो अलग अलग तरह का दाना बाजार में उपलब्ध है, जे अगर कोई मांस वाला खातिर पाले तो ब्रॉयलर स्टार्टर ब्रॉयलर फिनिशर बाजार में उपलब्ध है, और अगर कोई अंडाली मुर्गी ले रहे है तो वहां खातर चिक फीड ग्रोवर फीड लेयर फीड का नाम बाजार में उपलब्ध है, और अगर कोई पशुपालक भाई बहुत ही कम संख्या मुर्गियां देसी मुर्गियां जकी में कही जो घर के पिछवाड़े में पाल रहे हैं तो वो आगे सागे जहाँ कुछ मुख्य घटक हुए हैं आहार का जिनमें सौ ज्यादा प्रतिशत हुआ बा हुआ आपने मक्का की फिर बाजरो है फिर आपने सोयाबीन है फिर चावल की जो पूरी भूसी हुआ बा हुआ है फिर आपने जो मूंगफली वाली खल हुआ बा हुआ है फिर थोड़ा तेल हुआ बाइंडिंग को, तो ऐसा सारी चीजें मिला के तो आप एक आहार बना भी सका। लेकिन अगर कोई पशुपालक भाई आहार घर पर बना रहे है तो मेरे भाव निवेदन है कि आप पूरी तरह कोई आसपास आपके जो पशु चिकित्सक है या कोई और अच्छी संस्थान है बढ़िया प्रशिक्षण लेके ही थे घर आहार बनाओ, क्योंकि अगर आहार में कमी रहेगी तो निश्चित रूप से थारा जो मुनाफा है वो बहुत ही कम होगा।
1: तो मतलब कुल मिलाकर आहार पर आपने पूरा ध्यान जो है वो रखना चाहिए। अब एक चीज आप और भी बताओ डॉक्टर साहब, जी आप शुरुआत में बताओ कि मुर्गी जो की है वह बहुत ही संवेदनशील हो बीमारियां रोग जो है वह ज्यादा बहुत जल्दी लाग जाए करे, थोड़ी सी भी जी आप गफलत कर दी तो बीमारी जी के बाद हो जाया करे, तो मुर्गियां में होने वाली जी की बीमारियां है बांसु बचाव के लिए अपने कौन कौन सा उपाय जका है अपनाना,
0: क्योंकि मुर्गियां में जहां मैं भी कई बार प्रशिक्षण दिया तो मैं पशुपालक भाई या मुर्गी पालक भाइयों सावधान करावान बतावा कि भाई मुर्गी पालन जो व्यवसाय है भी मैं अगर थे आहार प्रबंधन सही कर लियो और जो बीमारियों को प्रबंधन है स्वास्थ्य प्रबंधन है वो सही कर लियो तो बी के बाद में धारण जो नुकसान को जो प्रतिशत है वो बिल्कुल ही जीरो हो जाए। इन जरूरी चीज यह है मुर्गी पालक भाई इस बात को विशेष ध्यान रखें कि भाई जो टीकाकरण जो होना है कि भाई आप अपने आसपास जो भी कोई पशु चिकित्सक हैं या कोई अच्छी संस्था है बैठी आप थे पतो करो जो टीका बाकर लागना है वह टीका लगवाओ, रेगुलर टीका लगाए पूरा एक सारणी है बा टीका की बस सारा टीका लगाओ। कई बार पशुपालक भाई कह रहे हैं कि लागत के कारण या बागन मुर्गी कम हुआ तो भाई टीकाकरण ने भाई छोड़ दें, तो आ गलती अपन करनी कौनी है। अगर एक भी दो मुर्गी भी अगर आपने टीकाकरण का अभाव में मरगी तो थे या मान लो कि बाकी सारी लागत निकल जाएगी।
1: मतलब स्वस्थ मुर्गी पालन जो है करनो घनो जरूरी है ताकि आपने जो की आमदनी है वह प्रभावित नहीं हुए। तो डॉक्टर साहब आप है जिकी बात बताई भी आवास से संबंधित प्रबंधन किया करा मांगे भोजन से संबंधित किया करा और मुर्गियां ने बीमारियां से किन प्रकार बचार रखा आ सगली बात को ध्यान रखते थका है। मान लो कोई मुर्गी पालक जो को है वो अच्छो उत्पादन ले रहे है तो अब बिंग करना अब अगली समस्या आवे कि जो को भी रो उत्पादन है बिंग जो को विपणन है मतलब इन किया बाजार में बेचे इन संबंध में कोई सुझाव अगर आप देना चाहो तो बताओ।
0: बिल्कुल ओ बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। पशुपालक भाई कई बार बहुत बढ़िया प्रबंधन करते हैं उत्पादन भी बहुत अच्छा ले लें हैं लेकिन जब बाजार में जो अपना उत्पादन है बिन जब बाजार में लेके या बी की जो उचित कीमत लेनी हो बिन पशुपालक भाई कई बार नाकामयाब हो जाए तो बी वो कारण और है कि विशेष रूप से जो ब्रॉयलर है तो ब्रॉयलर अगर कोई पशुपालक भाई जो ब्रॉयलर मतलब जिनमें मांस वाली मुर्गी कहा तो ये है कि भाई मांस वाली मुर्गी महज 28-30 दिन और ज्यादा से ज्यादा 35 दिन में थारे तैयार हो जाए वह बाजार में बिकने लायक हो जाए। तो पशुपालक भाई ने कोशिश तो आ करनी चाहिए कि भाई जिस दिन थे छोटा चूजा थारा फार्म पर लियाओ भी दिन ही थे मार्केट में पतो कर लियो बाजार में पतो कर लियो कि भाई थाने कठे बेचनो है किकन बेचनो है बाऊ पहले ही बात कर लियो। नहीं तो क्या है आजकल बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है जे यहाँ कंपनियां हैं बहुत सी वह क्या करें इन मेका कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉयलर फार्मिंग कि भाई बड़ी कंपनी आए भाई थारो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी एक बिम्ब क्या करें चूजा थाने देगा और चूजा बाद में जो

0: दानो है वह भी देगा, और कोई टीकाकरण करना है वह भी करना बा डॉक्टर से आऊंगा, और जब थारो वो बाजार के लायक हो गयो तो फिर भाई खुद ही आप ही गाड़ी आके भाई गाड़ी आके ले जाएगी, और थाने जो एक प्रतिशत जो आप पहले सामंजस्य बिठाए भी जो आप तय करे हो वो थाने मिल जागो। तो वो तो है मास आड़ो जहाँ पशुपालक भाई को दूसरी सुविधा नहीं है भाई इन भी अपना सके, नहीं तो फिर अगर आपने खुद के स्तर पर करें तो उसके भी और भी ज्यादा मुनाफा कमावे। और अंडम भी यही है, अंडम हालांकि सर्दियों में कोई समस्या आवे कौन नहीं, सर्दियों में क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा रहे, गर्मियों में थोड़ा सा पशुपालक भाई ने समस्या आवे तो भी कर लिए, पशुपालक भाई ने समय ऊपर सचेत रहना चाहिए कि भाई मेरे 15-20 दिन बाद में मेरा अंडा उत्पादन शुरू होने वाला है तो मैं भी ऊपर ले ही मार्केट में पतो कर लूंगा भाई मैंने कठे इन बेचना है।
1: तो मुर्गी पालन की आधुनिक तकनीक के है और आरोप प्रबंधन जो को है किया करना चाहिए इन मुजब जानकारी दे रहा है राजूवास बीकानेर रा सहायक आचार्य डॉक्टर अरुण झीरवाल जी। डॉक्टर साहब आज आप स्टूडियो में पधारिया और मुर्गी पालक भाई और बहना ने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो बार आप सुनी मुर्गी पालन आधुनिक तकनीक और प्रबंधन जिका भेंटवार्ता दे रहा था बता डॉक्टर अरुण कुमार झारीवाल और भेंटवार्ता ले उड़ा था संदीप कुमार जी पारिक। तो अब आप सुन सा कार्यक्रम रो अगलो लोकगीत।

0: जान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: संदीप भाई, अब देखो अपा एक बात और करा कि जी मौसम है, सावन है और बरसात अचारो खानी हो रही है, तो बहुत सारे लोग ऐसा भी है जिका छोटा पौध अबारी टम लगाया करे, तो देसी प्रजाति जी की किस्म है वे ज्यादा से ज्यादा अगर आप लगावा तो वो जलवायु और मिट्टी रे वास्ते बहुत बढ़िया रहे। तो इरे मायने जी अबार जिका किसान भाई या जिका ग्रामीण भाई देसी पौध लगा रहे है, तो नीम जी की पौध है भाई, टाइम बरसात रे पानी से बहुत तेज पनपे भी है, तो नीम हवा ने भी शुद्ध करे और प्राकृतिक रूप से कीटाणु ने खत्म करे। नीम में औषधीय गुण भी भरपूर मात्रा में हो। फिर देसी पौधा माने तुलसी भी शामिल है जिकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ावे और सर्दी रे मायने जिका अबार ई मौसम रे मायने भी जिका संक्रामक रोग हो जाए करे सर्दी जुकाम खांसी भी में तुलसी रो काढ़ो बड़ी तादाद में दिया करे है।
3: बिल्कुल सही बात है। और देखो जिकी भी देसी किस्म है बा किस्म में सब अच्छी बात तो एक है कि बा में कोई भी प्रकार रो रोग वगैरह जल्दी से कोन लागे। दूसरी बात आ है कि हालांकि बांग देखो बढ़वा में थोड़ा वक्त लागे पर लंबे समय तक बांसों अपन फायदों मिले, अगर फल फूल गए तो फल फूल मिले, तो ए जिके गुण जिका है वे आपने जिके आप कलमारी पौध जिके लगाओ बा में चीजा को नहीं मिले। लेकिन बांगो अलग फायदो है कि बांग की बढ़वार ज्यादा हुए, बा में उत्पादन जो थोड़ा ज्यादा मिले, लेकिन मौसम की मार जिकी है कीड़ा मकोड़ा की जिकी मार है बा सहन करने की क्षमता जिकी है बा तो आपने देसी किस्म की जो पौध है भी नहीं हुए।
2: बिल्कुल। तो इन मायने कम पानी की भी जरूरत हुए, बरसात अगर थोड़ी भी हुई है

0: तो कम पानी रे मानी या पौध जिकी है बा आपरी जगह पकड़ लेवे। बहुत ज्यादा उर्वरक की जरूरत कोनी होवे और इन बात से कीटनाशक की भी जरूरत कोनी पड़े। जी यहाँ बार संदीप भाई थे बताई आज की देसी पौध है इनो सबसे बड़ो जो को फायदा सती भाई वो ओ है कि जिका पक्षी है तितलियां है और मधुमक्खियां है ए बायोडाइवर्सिटी एक शब्द है तो बिना
1: विविधता
0: जैव विविधता जिके ना पके वा तो बिना बनाओ रखने मायने ई यानो बहुत बड़ो रोल है बहुत बड़ो यानो हाथ है बिर मायने। तो छोटा पौधा जिका है देसी किस्म जिकी है ए इन खूब आकर्षित करे और ए जीव जिका है इन विकास में भी बहुत बड़ो योगदान आ दिया करे है। सागे जी की अपनी मिट्टी है बिन मजबूत भी करे और मिट्टी में जो कटाव है बिना भी देसी पौध रोकने में बहुत सहायता करे। अगर बड़ो पेड़ है जी नीम पीपल है तो बिना अपन है थोड़ो ध्यान और रखना है कि बीरोज टाइम पर पौधा लगावा तो गर्री दीवार से दूर लगावा या बठे लगावा जठे बढ़ने के बाद में बिना अपन काटना नहीं पड़े। छोटा पौधा जी के टाइम लगाना है जी तुलसी है मोगरो है करी पत्तो इन्हें आप साधारण तौर पर गमला में भी लगा सके। हाँ
1: बिल्कुल सही बात है। और देखो एक चीज और है जी पर्यावरण से संबंधित लाभ जका है वे आपने देसी किस्म से मिली है और बिनी वजह आ है कि ए जका पौधा है ए स्थानीय जका भी जीव जंतु है पक्षी है या कीड़ा मकोड़ा है बंद लिए एक प्राकृतिक आवास चुको है मगर रहने के लिए एक प्राकृतिक घर जुको है और वो देवे और उन्हें सागे सागे मंग जो खान पान जुको है बिन में भी देने की एक क्षमता जी की है वह देसी किस्म की पौध जी की वह ज्यादा रखे। इनके अलावा मिट्टी की उर्वरता ने तो बनाए रखे ये पानी में बचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका जी की है देसी जी की पौध है आंगी हुए कम पानी में भी जीवित रह ले और जकेसों की है कि जल संसाधन की बचत हो। अब जी आपने देखा आक है या आपने गांव में आपने देखा ये कीकर लागे रही है देसी कीकर है तो बंद जी एक लोटो पानी भी ये दो चार दिन मिल जाए नहीं तो वह पनप जावे और वह जावे कौन बुई है गांव में पहले होती अब तो देखो बुई आपने देखा कौन मिले। तो यह जकी भी देसी किस्म जकी है फसलना जकी है बना फसल भी कह सको क्योंकि अगर फसल तो भी है कि एक लंबे पैमाने पर उगावा जब फसल हो जाए लेकिन इन दिन उग गए बह है तो आपने ही इन पर्यावरण को एक हिस्सो तो देसी किस्म कोई भी चीज रही है। देखो अश्विन भाई आप कार्यक्रम में बातचीत करा बैठा आप खावा भी हाँ कि ठीक है आपने ज्यादा उत्पादन चाहिए तो कोई भी फसल है पिंगी आप उन्नत किस्म लगावा लेकिन देसी जकी भी किस्म है वह भी आपने उगानी चाहिए। जब बुजुर्ग अब कहता कि पहली जब देसी बाजरे की खिचड़ी रान था नी अश्विन भाई तो चूल्हे कन कौन बैठ जान तो पर भदड़का जो आई था जोर उछलता कि कन कौन आजकल वो चुपचाप कदको कर्म वा चुपचाप सींजे खिचड़ी ठाई कौन पड़े
0: ठाई कौन है।
1: तो आज की चीज है नी आज चीज का नी आपन थोड़ा सा सोचना है कि आपने जकी देसी किस्म है वे एक तरह से सोनू है तो सोने में देखो खोजे को नहीं बिन बचा रखना पड़े बिन सार संभाल की वह करनी पड़े। इन प्रकार से जिया आपने देसी नस्ल जकी है गाय भैंस की बम गए दूध में भी जो गुण है और कहकर दूध अमृत समान तो वो अमृत जो को है आपने देसी नस्ल के दूध के लिए कहीजे। तो घर में आप आपने मान लो पांच पशु है तो कम कम दो पशु तो आप देसी नस्ल का रखा ताकि अमृत जो को है वो आपन मिले नहीं तो पछर के है कि आज जो आप देसी नस्ल ने देसी किस्म ने फसल खो जाएगा तो कल में फिर आपने कहने असल चीज जो की सोनू जो तो रहोगे को नहीं। और एक चीज आपने और बताऊ जानकारी आ रही कि देश भर का वैज्ञानिक जगह है वो भांत भांत के हर एक देश में जिकी भी देसी किस्म है मन जगह बीज है मैंने बहुत सार संभाल करके संभाल रखे किस जगह बताऊ अश्विनी
0: बताओ
1: अश्विनी मान रखे अंटार्कटिका क्षेत्र में।
0: अच्छा
1: और जमीन में बहुत नीचे हूं रहता है मान इन प्रकार का वातावरण में रखे है कि मान लो भगवान ना करे कोई मान लो प्रलय आ जाए तो कम कम वे बीज जगह है वे फसल जकी है वो बंचड़ी रहे।
0: देखो जानकार आदमी जी को है वो कितनी दूरी बात सोचे और बे इरो अर्थ समझे कि देसी बीज जी का है कितना जरूरी है मानवीय सभ्यता वास्ते।
1: बिल्कुल तो देखो बात तो आप और भी आगे करांगा पर बात

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के भोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु न्याय, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु संकट एक निष्पक्षता का भी मामला है। यह उन लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जिन्होंने इसे पैदा करने में सबसे कम योगदान दिया है, जैसे कि गरीब लोग, महिलाएं, बुजुर्ग लोग और आने वाली पीढ़ियां। जलवायु परिवर्तन को मानव अधिकार के मुद्दे के रूप में देखने का मतलब है कि सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित किया जाए। यह उन लोगों को साक्षात बनाता है जिन्हें अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। यह देशों और पीढ़ियों के बीच जिम्मेदारी को निष्पक्ष रूप से बांटता है। जलवायु न्याय का मतलब है सबके लिए समानता, शांति और सतत विकास। क्या आप जानते हैं, यदि दुनिया का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो अफ्रीका की आधी से ज्यादा आबादी कुपोषण के जोखिम में पड़ सकती है।
2: तो साहब, पहली तो आपने सुना गीत और बचा संदेश, और अश्विन भाई अब चौपाल में आप बातचीत करना आ गए। अब देखो, कह रहे कि पहला सुख निरोगी का यार, दूसरा सुख घर में हो माया। तो देखो, डील जो कहो तो आपने खुद ही ध्यान में रखना पड़ेगा, काया जी की अब आपने सावर रहा। लेकिन जब बात आ माया टकेगी नहीं अश्विन भाई, तो देखो डील में थोड़ा काम लेना पड़े, हाथ पग जो कहे चलाना पड़े। और कई बार क्या है कि इन प्रकार की स्थिति हो जाए कि आपने कोई आर्थिक सहायता जी की है वह मिल कौन पावे। तो आज की समस्या है, आपने ग्रामीण क्षेत्र की आप बात करा तो ई स्थिति में समस्या थका सरकार का न्यू एक योजना चलाई जी सन 2019 में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है कि किसान भाई लोगों ने आर्थिक सहायता जी के दी जावे और

0: योजना के अंतर्गत जका भी पात्र किसान परिवार है खेती के लिए माने आवश्यक जो को भी बीज चाहिए या उर्वरक चाहिए कीटनाशक या दूसरी कोई भी खेती बाड़ी से संबंधित चीज की खरीद जो माने करनी है तो वित्तीय सहायता जी के बाबा ने उपलब्ध कराई जा सके और इन योजना के तहत जका भी पात्र किसान है माने प्रतिवर्ष 6000 की सहायता जी की है व 2000 की 3 समान किस्तों में सीधी बांगा बैंक खाता में भेजी जावे।
1: बिल्कुल संदीप भाई, लेकिन सागे सागे देखो इनमें एक बात मैं और जोड़नी
0: चाहूं जोड़ो बताओ
1: कि तेजी के बार बात बताई आजकल देखो संदीप भाई कही है कि जिकी योजना में आवे वे केंद्र सरकार री भी हो राज्य सरकार री भी हो तो आ किसान सम्मान निधि जिकी है वा केंद्र सरकार री योजना थी जिकी में 6000 रुपए किसान भाई ने मिलता था लेकिन राजस्थान की सरकार भी आ देखियो कि किसान भाई रे आ रकम थोड़ी पड़े तो थोड़ा अंशदान अगर राज्य भी में करे तो किसान भाई ने राहत मिल सी तो 2000 रुपया ई किस्त रे मायने और जोड़ दिया गया है तो 6000 रे सागे 2000 रुपया और जोड़
0: कर हां तो बहुत ही बढ़िया बात
1: हां और किसान भाई रे खाते में पहुंची सीधो डीटीबी रे माध्यम से मतलब सीधो जी को डायरेक्ट बेनिफिट जी को है वो किसान भाई रे खाते में आसी तो ई वास्ते खाते री केवाईसी जी की अपडेट है किसान भाई ने रखनी है सागे सागे जिका सीमांत तो छोटा किसान है जिका ने ई योजना रो पत्तो नहीं है और भाई रो लाभ नहीं उठा रहा है तो संदीप भाई देखो आपानी अगर नैतिक जिम्मेदारी भी बने कि बिया ने आपा योजना रे बारे में जानकारी देवा और बिया ने ई योजना सु जोड़ा ई योजना सु जोड़ेंगे वास्ते आपा ने किसान भाई ने ई मित्र पर ले जानो है और पीएम किसान सम्मान निधि जिको पोर्टल है बटे किसान भाई रो रजिस्ट्रेशन करवानो है रजिस्ट्रेशन के बाद में आधार ओटीपी जनरेट होसी जिका भी कागजारी जरूरत है संदीप भाई आज रे समय में देखो सरकार किसान भाइयों ने लाभ तो घणो दे रही है लेकिन देखो सरकार भी आ चाहे कि सही आदमी ने सही लाभ मिले तो बिरे वास्ते बिरा आधार नंबर बिरा मोबाइल नंबर बिरो बैंक खातो बिरो पैन कार्ड जमीन का कागज ए सब कागज तैयार होना चाहिए आजकल देखो राजस्थान में मायने सरकार अगर कोई लाभ देवे तो बामा साहब जी को कार्ड है वो भी अब आई गयो तो ए सब चीजा मिला और किसान भैया अपना कागज जी का है वे ई मित्र पर ले जावे और पोर्टल के माध्यम से जिको है जन सूचना पोर्टल के माध्यम पर और ज्यादा जानकारी भी मिल जावे तो वो आवेदन करे जिके टाइम आवेदन सरकार द्वारा स्वीकार कर लियो जासी तो ओटीपी आसी मोबाइल नंबर माथे जिको आधार सु जुड़ो रहोसी
0: तो कहने मतलब वो है कि सगली चीजें जिकी है वे तैयार है पर मानसिकता आपने होनी चाहिए कि आपने इन योजना से जुड़ना है और इन योजना रो फायदा उठाना है
1: हाँ
0: और अब हमारी मानसिकता है कि की संगीत की दुनिया में आगे बढ़ा
1: बिल्कुल तो सुना कार्यक्रम लोकगीत

0: आज कार्यक्रम रे माने आप बहुत चोखी चोखी वैज्ञानिक जानकारी हासिल करी खेती कृषि चोखी एक वार्ता सुनी और सुना लोक भजन और श्रावण वा गीत रला। तो संदीप भाई देखो अब टाइम है ई कार्यक्रम ने समाप्त करने रहो।
1: अरे गांव में जाकर कड्डी खिचड़ी खाऊंगा
0: बिल्कुल।
1: तो मेरे लिए अब बहनों भैंसों सीख लेनी पड़ेगी। तो आप रहता संदीप कुमार पारिकर
0: और अश्वनी व्यासरा आजरा खना खना राम राम।

अब आप अतहर सईद से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने के प्रावधान वाला विधेयक आज पारित किया। हालांकि विपक्ष के हंगामे के कारण इस पर चर्चा नहीं हो सकी। सरकार ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 भी पेश किए। राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विभिन्न विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही और दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2:10 पर ही बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद 2 शुरू हुई तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही ध्वनिमत से बिना चर्चा के विधेयक को पारित किया। इससे पहले सदन ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मई में लागू किए गए अध्यादेश को नामंजूर करने के तृणमूल कांग्रेस के सांसद

सौगत राय के संकल्प को अस्वीकृत कर दिया। सदन ने विधेयक पर कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधन को भी खारिज कर दिया। विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश करते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। मेघवाल ने मानसून सत्र के पहले दिन 20 जुलाई को सदन में ये विधेयक पेश किया था। इसी साल मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर उच्चतम न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या इससे पहले 2019 में बढ़ाई गई थी। उस समय प्रधान न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 30 से बढ़ाकर 33 की गई थी। मेघवाल ने कहा कि स्वतंत्र भारत में शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई और अगस्त 1956 में पारित विधेयक के माध्यम से प्रधान न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या 11 की गई। उन्होंने कहा कि उसी मूल भावना को देखते हुए और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या अब 34 से बढ़ाकर 38 की गई है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक में भारतीय सांख्यिकी संस्थान को नया वैधानिक ढांचा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ये विधेयक वर्ष 1959 के पुराने अधिनियम का स्थान लेगा, ताकि आधुनिक शैक्षणिक और शोध जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके तहत संस्थान को एक कॉरपोरेट निकाय के रूप में स्थापित करने और उसके प्रशासनिक एवं अकादमिक ढांचे को मजबूत करने का प्रावधान है। विधेयक में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति संस्थान के विजिटर होंगे और इसमें एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए प्रावधान है, जो इसका प्रमुख नीतिगत कार्यकारी निकाय होगा। पिछले बजट सत्र के दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने संसद को सूचित किया था कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI को एक निगमित निकाय के रूप में शामिल करने और इसके प्रभावी संचालन के लिए एक ढांचा प्रदान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया, जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा पहले से अधिक स्पष्ट बनाना है। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। प्रस्तावित कानून में बैंककार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर डिजिटल क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उनके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। लोकसभा की आज सुबह बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता को उद्देश्य उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद जब उन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराया तो विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है, कृपया प्रश्नकाल चलने दें। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। इसके बाद दोपहर 12 बजे और फिर अपराह्न 2 बजे भी सदन में हंगामे की स्थिति बनी रही और कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण आज लगातार 11वें दिन भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज नीट प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। हंगामे के बीच सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद MSME क्षेत्र

ने एक महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कर दिया। सदन की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने ग्लासगो में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इन खेलों में भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। सभापति ने उम्मीद जताई कि ये खिलाड़ी आगे भी अपनी मेधा से देश को गौरवान्वित करेंगे। इसके बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू करते हुए मुद्दे उठाने के लिए सदस्यों के नाम पुकारे। इसी दौरान विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के कारण कुछ सदस्यों ने तख्तियां दिखाई, जिस पर आपत्ति जताते हुए सभापति ने कहा कि सदन में तख्तियां नहीं दिखाई जा सकती। इसके बाद हंगामे के बीच सभापति की अनुमति से भाजपा की दर्शना सिंह ने स्वीप एपनिया का मुद्दा उठाते हुए कहा कि एक अनुमान के अनुसार भारत में करीब 90 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में लोग इसके खतरों से अनजान हैं। उन्होंने कहा कि स्लीप एपनिया नींद से जुड़ी एक गंभीर समस्या है, जिसमें सोते समय बार बार सांस रुकती और शुरू होती है। भाजपा सदस्य ने इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाने की मांग की। इसी पार्टी की अलका गुर्जर ने राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसिंध के पास स्थित भगवान देव नारायण की पवित्र जन्म और प्राकट्य स्थली मालासिरी डोंगरी के विकास का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि स्थान देश के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, जहां हर साल दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए कई सुझाव दिए। मनोनीत सदस्य उज्जवल निकम ने अदालतों में लंबित मामलों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मामलों की सुनवाई में विलंब का एक कारण उनकी अधिक संख्या भी है। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहा, जिसके कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर उप सभापति हरिवंश ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू करने के लिए कहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने फिर से नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति की अनुमति से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोलते हुए राम मंदिर अयोध्या में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाना चाहा, लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिली। सदन के नेता जेपी नड्डा ने भी आसन से अनुरोध किया कि विधेयक पर चर्चा शुरू हो चुकी है तथा किसी अन्य विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाए। इसके बाद उपसभापति ने कांग्रेस के अजय माकन से अपनी बात रखने के लिए कहा, किंतु माकन विधेयक के बजाय अन्य विषयों पर बोलने लगे। सदन में मौजूद संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आसन की ओर से बार बार विधेयक पर बोलने के लिए कहा गया, लेकिन विपक्षी सदस्य विषय को भटकाते हैं। उन्होंने माकन के संबोधन को कार्यवाही से निकालने की मांग की। हंगामे के बीच एमएसएमई विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के सुमित्रा वाल्मीकि ने कहा कि समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है और ये विधेयक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बेहद उपयोगी है। तृणमूल कांग्रेस की डोला सिंह ने कहा कि एमएसएमई की मदद से बेरोजगारी दूर की जा सकती है। बीजेपी के डॉक्टर संतृप्त मिश्रा ने कहा कि जीडीपी में एमएसएमई का 35% योगदान रहता है, लेकिन इसकी राह आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि मूल विधेयक 2026 में आया था और 20 साल बाद इसका संशोधन आया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान एमएसएमई क्षेत्र में बहुत बदलाव हो चुका है। विधेयक में बड़ी चुनौतियों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव ने कहा कि विधेयक में मध्यस्थता और फैसलों के त्वरित निपटारे के लिए नए नियम तय किए गए हैं, जो सराहनीय कदम है, लेकिन इन नियमों का पालन भी जरूरी है, अन्यथा न्याय मिलने में देरी होगी। अन्नाद्रमुक के एम थंबीदुरई ने कहा कि देश के विकास के लिए एमएसएमई जरूरी है। उन्होंने केंद्र से मांग की कि वह तमिलनाडु में एमएसएमई कार्यक्रम को सहयोग दें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ये विधेयक उसे शक्ति प्रदान करेगा। तेलुगु देशम पार्टी के मसान राव यादव वीड़ा ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इसके प्रावधान दर्शाते हैं कि लघु कंपनियों के लिए सुचारू व्यावसायिक संचालन को बढ़ाने पर सरकार निरंतर ध्यान दे रही है। बीआरएस के रविचंद्र बद्दी राजू ने कहा कि विधेयक मध्यस्थता और मध्यस्थता कार्यवाही को ऑनलाइन माध्यमों से संचालित करने की अनुमति देता है, जिससे विवादों का समाधान तेजी से, अधिक सुलभ और कुशल तरीके से हो सकेगा। बहुजन समाज पार्टी के रामजी ने कहा कि विधेयक में उन बच्चों के बारे में

कुछ नहीं कहा गया है जो एमएसएमई सेक्टर में काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कमजोर वर्ग के लोगों को निजी क्षेत्र में भी आरक्षण देने पर विचार करे। चर्चा में यूपीएलएल के प्रमोद बोरो, भाजपा के संजय सेठ, कांग्रेस के नीरज डांगी, प्रवीण चक्रवर्ती और बीजू जनता दल की सुलता देव ने भी हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाला ऋण वर्ष 2014 से कई गुना बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों का समाधान करना, प्रशासनिक ढांचे में सुधार करना, व्यापार भुगतान में सुधार करना और नियमों के अनुपालन को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। श्री मांझी ने कहा कि इस विधेयक में न केवल एमएसएमई की परिभाषा में सुधार किया गया है बल्कि इसके टर्नओवर की सीमा को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 39% हो गई है।

का उद्देश्य है। श्री मांझी ने कहा कि इस विधेयक में न केवल एमएसएमई की परिभाषा में सुधार किया गया है बल्कि इसके टर्नओवर की सीमा को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 39% हो गई है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसी के साथ विधेयक पर लाए गए विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया। इस दौरान विपक्षी सदस्य लगातार हंगामा एवं नारेबाजी करते रहे। सदन में व्यवस्था बनते न देख उप सभापति हरिवंश ने करीब 3:30 बजे बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। सरकार ने लोकसभा में कई लिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 उच्च शिक्षा में पहुंच, समानता, किफायती शिक्षा और समावेशन पर विशेष बल देती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार सभी विद्यार्थियों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं जिनका क्रियान्वयन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है। इनका प्रशासन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इन छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित अभिभावकीय आय सीमा तथा योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार SC, ST और OBC वर्ग के सभी पात्र विद्यार्थियों को लाभ प्रदान किया जाता है। उच्च शिक्षा विभाग प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन PM USP योजना का संचालन करता है। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, जैसा कि योजना के दिशा निर्देशों में निर्धारित है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

आप सुनते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत।

साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के बड़े मारू चैनल से बोल रहे हैं। 8:45 होने को है, कुछ ही पल में आप सुनेंगे समाचार संध्या और News@9 हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास में भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। और युवा साइकिल चालक हर्षिता जाखड़ स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्याय क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्याय कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

0: मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक के तहत उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया। यह विधेयक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन कर भुगतान में होने वाली देरी की समस्या का समाधान कर विवाद निपटान प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसके अलावा भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंक कर बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों को जब मौका दिया जाता है तब वे बोलना नहीं चाहते।
2: सुप्रीम कोर्ट ने जजेस को संख्या बढ़ाने के लिए और राज्यसभा में एमएसएमई का बिल पास किया। विपक्ष में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो हिस्सा लेना चाहते थे। हमने सबसे आग्रह किया था कम से कम बिल में हिस्सा तो ले, बाहर जाके कहते हैं कि बोलने के लिए मौका नहीं मिलता है।
0: कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की।
3: लोकतंत्र में बहस होती है और हम जब बहस छेड़ते हैं तो आपका दायित्व होता है या आपका अधिकार होता है कि उसको रिप्लाई दे। अगर मेरी आर्गुमेंट ठीक नहीं है तो आप कहिए कि तुम्हारा गलत है, मेरा सही है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं।
4: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से अतहर सईद।
0: भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर से जीत ली है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया।
5: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने कहा कि जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उधर बिहार में पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 वोटों के अंतर से हराया। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि नीरज कुमार को 44,827 मत प्राप्त हुए। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा कुमारी 14,273 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया।
6: दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए सीट अपने नाम कर ली है। मतगणना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि पार्टी इस परिणाम की समीक्षा करेगी।

0: कि कार्यकर्ताओं को पार्टी की भावना के साथ काम करना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कहा कि जनता ने विकास और भरोसे के पक्ष में मतदान किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांतिगौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा चरित्र निर्माण, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण की नींव है। ओडिशा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने विश्वविद्यालयों से नैतिक, कुशल और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाने का आह्वान किया।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम उड़ीसा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान हासिल करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये चरित्र निर्माण, सामाजिक बदलाव और राष्ट्र निर्माण की नींव है। राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय से लड़कियों, आदिवासी छात्रों और समाज के पिछड़े वर्गों की शिक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित भारत और 2036 तक विकसित ओडिशा के लक्ष्यों को हासिल करने में शिक्षण संस्थान अहम भूमिका निभाते हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा।
3: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब देश एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है।
3: AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को कंटिन्यूटी, डोमेन स्पेशलिटी और पॉलिसी स्टेबिलिटी भी प्रदान करती है, और इसके साथ ही सिविल मिलिट्री सिनर्जी को सुदृढ़ करने में भी AFHQ एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज की भूमिका का निर्वाह करता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग तथा व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि व्यापार, निवेश, दवाइयों, कनेक्टिविटी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्रों में बातचीत हुई है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी व्यवसायों के लिए नए अवसर खोलेगी और साझा समृद्धि में योगदान देगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध वर्षों पुराने हैं और ये संबंध निर्माण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विविध क्षेत्रों में फैले हुए हैं। दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सईदोव के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में समान विचार हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस फर्जी खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि यदि दूध में मिलावट को तेजी से नहीं रोका गया तो इससे भारत की 87% आबादी को कैंसर हो जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि WHO द्वारा ऐसी कोई परामर्श जारी नहीं किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। POJK से मिली रिपोर्ट

0: सूत्रों के अनुसार सुरक्षा बलों ने आधी रात को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए रावलकोट में गोलीबारी की। एक रिपोर्ट।
1: खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। कई महिलाएं और बच्चे पिछले 50 दिन से प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं और अब ये प्रदर्शन पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राजनीतिक मिशनों से उपलब्ध फुटेज की जांच करने और हिंसा की तत्काल स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए दबाव डालने की अपील की है। ये प्रदर्शन क्षेत्र के लोगों द्वारा बेहतर सुविधाओं और अधिक विकास की मांग के साथ शुरू हुए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं चल रही है और न ही किसी बैठक की तैयारी है। ये बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ मध्यस्थों के जरिए बातचीत होने वाली है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने इस दावे को गलत बताया है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले दो दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. Lok Sabha passes bill to increase the strength of Supreme Court judges from 33 to 37. Rajya Sabha clears legislation to simplify dispute resolution and address payment delays faced by MSMEs. In assembly by polls, Jan Suraj leader Prashant Kishore wins Bankipur seat in Bihar, BJP retains Manjalpur in Gujarat, Congress keeps Datia in Madhya Pradesh. Karnataka Chief Minister D.K. Shivkumar expands cabinet, inducting 19 new ministers. Red alert issued for very heavy rainfall in Assam, Meghalaya, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. In POJK, situation worsens overnight as security forces open fire on protesters refusing to disperse. Young cyclist Harshita Jhakar becomes first Indian woman to feature at Tour de France Frama in Switzerland. And now the news in detail. The Lok Sabha today passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. The bill aims to increase the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In May this year, President Draupadi Murmu had promulgated an ordinance in this regard. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. He said the bill is an important step in that ongoing reform process within the judicial sector. The Lok Sabha was adjourned several times today amid protests by opposition parties over several issues. Earlier, when the House began its proceedings at 11 a.m., Speaker Om Birla congratulated the athletes for their outstanding performance at the 23rd Commonwealth Games at Glasgow. After that, Mr. Birla tried to

ki ki awaaz mein प्रेमों का फिल्म प्रेमों का ये सदाबहार गीत, इस गीत को लिखा था संतोष आनंद ने और संगीत बद किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म संगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर की बुरा मारू चैनल से। आइए सुनते हैं

एक साथी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यही संपूर्ण होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढूंढ मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए, आइए अब सुनते हैं पुराने फिल्मों से गीत कार्यक्रम।

0: us know.
1: संगीतकार थे मदन मोहन और जयदेव। आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म थी लैला मजनू। पुरानी फिल्मों से गीत कार्यक्रम में आई अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज मंजिल फिल्म के लिए। गीतकार हैं योगेश और संगीतकार हैं

जीवन संगीत के इस कार्यक्रम में हम जब सुनते हुए शिवेंद्र के शब्द, शंकर जी किशन का संगीत, आवाजें हैं मुकेश की, फिर

मन से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल जगत हमारे जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से।

0: खेल जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे दो भेंट वार्ताएं। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं बास्केटबॉल के राष्ट्रीय खिलाड़ी अभिषेक चौधरी से श्यामवीर सिंह की बातचीत। यह आकाशवाणी जैसलमेर का अंशदान है।
1: श्रोताओं, इस समय हमारे साथ है बास्केटबॉल के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी अभिषेक चौधरी। अभिषेक जी, हम आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत करते हैं।
2: थैंक यू सर।
1: अभिषेक जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब शुरुआत की आपने खेलने की, तो बास्केटबॉल ही क्यों चुना? क्या खास लगा आपको, या अन्य खेलों को भी आपने ट्राई किया था, आप इसमें कंफर्टेबल थे, तो कैसे शुरुआत हुई?
2: सर, जब मैं छोटा था तब मेरे भैया बास्केटबॉल खेलते थे, तो मैं उनको देखता रहा। जैसे कभी वो खेलने जाते थे, मैं उनके साथ जाता था, देखता था बस। फिर मैं क्रिकेट में गया, बैडमिंटन में गया, मैं थोड़ी दिन बास्केटबॉल भी खेला। फिर मेरे को बास्केटबॉल में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया, मज़ा आ रहा मतलब। तो मैंने बास्केटबॉल ज्वाइन करने का सोचा कि ये खेलते हैं, क्योंकि प्राइवेट हूँ उस टाइम। फिर मेरे को किसी ने बताया कि इसमें

0: स्कूल के टीचर देख रहे हैं बच्चा अच्छा खेल रहा है, तब समझ देते हैं कि आप इसको ट्राई करो और अच्छा प्रशिक्षण लेके आगे जाओ। तो पहली बार आपको किसने देखा अच्छा खेलते हो, किसने सलाह दी कि इसको करियर के रूप में ले सकते हो?
1: ये सर मेरे भैया खेलते थे, फिर मैं उनके साथ खेलने लग गया थोड़ी देर बाद, फिर उनको लगा कि मैं इसमें खेल सकता हूँ, मेरे को ही मजा आने लग गया था। फिर मेरे को उन्होंने बताया कि उनको थोड़ी नॉलेज थी इस बारे में, तो उन्होंने मेरे को बताया कि इसमें ये होता है वो,
0: मतलब आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही पहले से, इस खेल के बारे में आपको जानकारी थी और इसलिए आप यहाँ तक पहुँच पाए। अच्छा, जो बच्चे जिनको कुछ भी पता नहीं होता, परिवार में कोई खिलाड़ी भी नहीं रहा होता और कोई सलाह देने वाला नहीं होता, तो वो बच्चे यहाँ तक कैसे आ सकते हैं, अकादमी में कैसे अपना एडमिशन ले सकते हैं?
1: सर आजकल सबके पास फोन अवेलेबल है, तो जब भी टाइम्स होती है अकेडमी की, ये बहुत बेस्ट अकेडमी है राजस्थान की बास्केटबॉल की, बहुत मेडल्स लगते हैं अभी, तो फोन पे जैसे ही अपना सेशन खत्म होता है स्कूल का, तो फोन पे सब कुछ अपलोड हो जाता है कि कौन सा बच्चा

0: कह सकते हैं जयपुर में सिविल स्टेडियम में ट्रायल होती है, जो ट्रायल होती है वो पात्रता क्या है, जो पढ़ने वाले बच्चे देते हैं या जो उन्होंने कभी स्कूल गए नहीं, गांव में रह रहा है या कोई काम कर रहा है, क्या वो भी ट्रायल दे सकता है?
1: उनसे ऐसा कुछ नहीं, पढ़ने वाले भी दे सकता है, जो गांव में रहता है वो भी दे सकता है, बस उसको खेलना आना चाहिए थोड़ा बहुत, बाकी तो सीख जाएगा वो।
0: और उम्र का क्या रहता है, कितना होना चाहिए, मैंने भी पढ़ा, देखता हूँ क्या है
1: उनका। सर बास्केटबॉल अकेडमी में तो अंडर 14 से सर लेते हैं, अंडर 14 के बच्चे लेते हैं और हाईएस्ट अंडर 19 जूनियर तक के बच्चे लेते हैं।
0: अच्छा, ये जो पहली बार अगर बच्चा कोई आ रहा है मेन तो 14 साल से
1: यस होना चाहिए,
0: 14 साल से मान लो जूनियर स्तर पर तो 19
1: से कम।
0: अच्छा, जैसे कि आपने वहाँ पर ट्रायल पास करने के बाद में पास कर लिया और आप किसी दूसरे क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे थे और उसके बाद में जो मान लो आपको जैसलमेर मिल गया, तो फिर यहीं पर एडमिशन लेना पड़ता है क्या पढ़ाई?
1: यस सर, जैसे यहाँ पे सिलेक्शन होगा तो गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशन होती है, स्पोर्ट्स, खाना पीना रहना सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से होता है। तो जैसे यहाँ पे आते हैं तो सर यहाँ पे जैसलमेर में एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि स्कूल स्टेट नेशनल जो भी होता है वो जैसलमेर अकेडमी से खेलना होगा जैसलमेर से।
0: अच्छा, सेशन क्या रहता है स्पोर्ट्स का और पढ़ाई का तो फिक्स रहता ही है, स्पोर्ट्स का जो सेशन क्या रहता है?
1: स्पोर्ट्स का सेशन सर जब जैसलमेर अकेडमी में तो सुबह ट्रेनिंग होती है सर हमारी 2 to 12 hours।
0: सुबह कितने बजे शुरुआत होती है?
1: सुबह सर हम उठते हैं 4:30 बजे, 5 बजे ग्राउंड टाइम होता है हमारा, क्योंकि अभी स्कूल ओपन है और जैसे जैसे हम थोड़े दिन हो जाते हैं, अभी अकेडमी खुली हुई है तो जैसे टाइम हो जाता है तो 4:30 भी ग्राउंड टाइम हो जाता है, और टूर्नामेंट्स क्लोज होते हैं तो थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो 4:30 बजे आते हैं फिर।
0: और शाम को?
1: शाम को सर जैसे जिसको पर्सनल प्रैक्टिस करनी है इंडोर हमेशा अवेलेबल है 24/7, कभी भी जाके कोई प्रैक्टिस कर सकता है, जिसको दिन में प्रैक्टिस करनी है सर प्रैक्टिस कर सकता है। शाम को जो सर की तरफ से कोचिंग होती है वो 5 बजे से होती है, टूर्नामेंट क्लोज होते हैं तो 4 बजे से होती है। दिन में भी अगर किसी बच्चे को प्रैक्टिस करना है तो सर बता देते हैं।
0: अच्छा, जब एग्जाम नजदीक आते हैं तब क्या ये सुबह की और शाम की प्रैक्टिस बंद हो जाती है?
1: बंद तो नहीं होती सर, बिल्कुल बंद नहीं होती, क्योंकि रेगुलर आना तो जरूरी है गेम में भी। मतलब ग्राउंड टाइम जैसे पहले हम 4 घंटे प्रैक्टिस करते हैं तो उसको सर 2 घंटा कर देते हैं, बोलते हैं पढ़ाई करो, पढ़ाई भी जरूरी है, तो पढ़ाई भी जरूरी है, इस वजह से प्रैक्टिस कम करनी पड़ती है एग्जाम के टाइम।
0: अच्छा, स्पोर्ट्स के जो बच्चे होते हैं वो शारीरिक रूप से और यहाँ पे मानसिक रूप से भी एक स्ट्रॉन्ग
1: होते हैं,
0: और जो यूँ कहें कि उनको समय भी कम मिलता है पढ़ाई का क्योंकि वो स्पोर्ट्स में भी ध्यान देना है, लेकिन फिर भी अच्छा आजकल परफॉर्म कर रहा है, आपने भी 10th में 60% जो अंक हासिल किए ये बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तो देखिए, अगर आप बच्चा स्पोर्ट्स के साथ साथ फर्स्ट डिवीजन ला रहा है तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं स्पोर्ट्स में हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं पढ़ाई हमारे अंक प्रभावित होंगे, तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे?
1: सर सबसे पहली चीज है सर मेरे हिसाब से एजुकेशन जरूरी है थोड़ी बहुत, अगर आपको स्पोर्ट्स में करियर बनाना है तो एजुकेशन भी जरूरी है, सिर्फ स्पोर्ट्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए किसी भी इंसान को, एजुकेशन भी जरूरी है। और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अपने सिर्फ स्पोर्ट्स ही स्पोर्ट्स में है तो एजुकेशन के लिए अपने पास टाइम नहीं, टाइम है बस पढ़ने का मन होना चाहिए थोड़ा बहुत फोकस। अब बस लोग बोलते हैं

0: है, मेरे हिसाब से मेरी परसेंटेज कम है।
1: नहीं देखिए, स्पोर्ट्स आप इतना राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे हो और 60% आ रहे हो तो एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स में बच्चे होते हैं उनका अतिरिक्त नौकरी में किसी में जाओगे तो उनको कोटा होता है, तो
0: जैसे स्पोर्ट्स कोटा होते हैं
1: तो उसमें आपको जॉइनिंग जल्दी से मिल जाती है। तो आप राष्ट्रीय स्तर पर कितनी बार खेले हैं?
0: सर राष्ट्रीय स्तर पर 5 बार खेले, उसमें से मेरे पास 2 मेडल है, 1 सिल्वर मेडल, 1 ब्रॉन्ज मेडल, 3 नेशनल पार्टिसिपेट।
1: अच्छा, जब पहली बार गए थे तो आपकी टीम में तो जो जूनियर खिलाड़ी होते हैं पहली बार खेलने होते हैं, जो सीनियर खिलाड़ी किस प्रकार उनको मोटिवेशन करते हैं कि देखो आपको जो अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिता होती है उनमें पूरे इंडिया से मतलब अच्छे लेवल में आते हैं, तो क्या कुछ वहाँ पर स्ट्रेटेजी होती है आपकी, क्या सलाह दी जाती है आपको, किस प्रकार से जो मतलब अच्छा खेल के लिए प्रेरित करते हैं?
0: सर मैं फर्स्ट नेशनल खेला था हिमाचल प्रदेश में, उसमें मेरे पास ब्रॉन्ज मेडल था, वो मेरा फर्स्ट नेशनल था। जो भी हमारी स्ट्रेटेजी होती है कोच की अलग होती है, बच्चों की मेंटलिटी अलग होती है, तो मेरा मानना है कि सबको ये मानना चाहिए कि अभी अपन अपने स्टेट से खेल रहे हैं, राजस्थान से खेल रहे हैं, हम कोई डिस्ट्रिक्ट से या कोई खुद की पर्सनल टीम से नहीं खेल रहे, हमें राजस्थान को रिप्रेजेंट करना है, तो सबको यूनिटी बना के रखनी पड़ेगी, उस हिसाब से खेलना है, खुद का सेल्फ नहीं खेलना चाहिए। और जैसे ऑल ओवर इंडिया के प्लेयर्स आते हैं तो कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होता है, कुछ एक्सपीरियंस होता है, तो वो कोच भी देखते हैं, हम भी देखते हैं बैठ के कि वो क्या कर रहे हैं, फिर उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाते हैं। कोई अच्छे प्लेयर होते हैं तो उनसे पूछते हैं कि भाई कोई ये चीज़ में करनी है तो इसको कैसे फुलफिल करें, कोच से सीखा जाता है, बहुत सारे कोई इंडियन लाइन का कोच होता है तो उससे सीखते हैं कि सर अगर कोई कमी है तो कैसे पूरी करें।
1: देखिए जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रतियोगिता आप पार्टिसिपेट कर लेते हैं उसके बाद संभावना बढ़ जाती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने
0: की,
1: तो आपके साथियों में से जैसे हमारे जैसलमेर अकादमी से अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने खिलाड़ी सिलेक्ट हुए?
0: सर मेरे आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 या 5 प्लेयर मिले, उससे पहले भी खेल रहे हैं।

0: से जैसे कि इनका किसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टीम में सिलेक्शन होता है, जैसे आपका भी यहाँ पर जैसे मेरे प्रैक्टिस कर रहे हैं अकादमी, तो उनको क्या राष्ट्रीय स्तर की अकादमी में प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता है?
1: नहीं सर, वो नहीं प्रैक्टिस करते थे, हमारे साथ ही प्रैक्टिस करते थे, उनके साथ नेशनल में अच्छी परफॉर्मेंस देनी होती है, अच्छी परफॉर्मेंस लेकर इंटरेंस हुआ, जैसे वो इंटरेंस ही खेल के आए तो उन्हें बाहर का एक्सपीरियंस लिया, आउट ऑफ इंडिया कैसा इन्वायरमेंट है, कैसे लोग खेल, तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब वो वापस यहाँ पर आते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि अपन इंटरनेशनल बोले तो नेशनल लेवल की अकेडमी हो, अपन जैसे जैसलमेर में अकेडमी थी, यहाँ से इंटरनेशनल प्लेयर बहुत सारे खेल रहे हैं, वैसे कोई जरूरी अच्छे कोच है हमारे पास।
0: अच्छा, शारीरिक रूप से स्पोर्ट्स में जो बच्चे आते हैं उनकी फिटनेस के लिए वो क्या अतिरिक्त एनर्जी के लिए क्या कुछ खाते हैं, या जैसे आम बच्चा जो पढ़ाई करता है उसकी डाइट अलग होती है, आपके कैसे फर्क होता है?
1: सर, जो स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी नहीं है, और जो स्पोर्ट्स में उनके बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है डाइट में बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्पोर्ट्स वाले पेरेंट्स ज़्यादा बर्न करते हैं, वो कम करता है, तो उन्होंने उस हिसाब से डाइट लेनी पड़ती है। हमारे कोच अच्छे हैं तो वो हमें बता देता है कि क्या क्या खाना चाहिए तुम्हें, ड्राई फ्रूट्स, चिकन, नॉन, जो नॉन वेज खाते हैं नॉन वेज, जो वेज खाते हैं वेज, स्पोर्ट्स एंड
0: फ्यूचर में स्पोर्ट्स में ही आप रहोगे, करियर इसमें बनाना है या कोई कुछ और सोचा आपने?
1: सर, मैंने अभी आगे का कुछ नहीं सोचा, सिर्फ मेरा गोल है मेरे को इंटरनेशनल खेलना, इंडिया को रिप्रेजेंट करना, फिर उसके बाद मेरा सपना है कि मैं इंडियन नेवी या एयरफोर्स में।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका जो सपना है वो जरूर पूरा होगा, आप इंडिया को रिप्रेजेंट भी करोगे और एयरफोर्स या नेवी से ज्वाइन करके आप भारत की सेवा करते रहोगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। आपने हमारे साथ बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे बास्केटबॉल के राष्ट्रीय खिलाड़ी अभिषेक चौधरी से श्यामवीर सिंह की बातचीत। श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं सॉफ्टबॉल कोच विशाल चौधरी से की गई बातचीत। ये आकाशवाणी झालावाड़ का अंशदान है।
3: खेल जगत के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, खेल जगत के इस अंक में आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वर्तमान में श्रीमती विजय राजे सिंधिया खेल संकुल झालावाड़ में स्थानीय खिलाड़ियों को सॉफ्टबॉल के गुर सिखाने वाले

0: सॉफ्ट बॉल कोच विशाल चौधरी से। विशाल चौधरी के बारे में आपको बता दें मित्रों कि खेलो इंडिया से लेकर कई बार आप नेशनल सॉफ्ट बॉल प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं और झालावाड़ जिले का नाम रोशन कर चुके हैं। साथ ही बेसबॉल में भी आप नेशनल खेले हैं और इसी साल यानी 2026 में भी विशाल ने उज्जैन मध्य प्रदेश आयोजित वेस्ट जोन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2026 में पार्टिसिपेट किया और अपने खेल कौशल से सभी को प्रभावित किया है। विशाल नमस्कार, खेल जगत में आपका हार्दिक स्वागत है।
1: नमस्कार सर।
0: विशाल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सॉफ्टबॉल की दुनिया में आपका सफर कैसे शुरू हुआ?
1: सर, मेरा सॉफ्टबॉल की दुनिया में सफर जब मैं 6 क्लास पढ़ता था तब से शुरू हुआ। जो मेरे सीनियर थे वो इस गेम को बहुत ही आकर्षक रूप से खेल, तो मेरा भी उनको देख के थोड़ा मोटिवेशन बढ़ा और फिर उनके साथ खेलने लगा तो मेरे को अच्छा लगा। एक्चुअली में क्या है, अलग से गेम लगता था, अलग से खेलना, उसे बैट गोल वाला स्लाइडर बड़ा सा बॉल, तो एक अलग सा मजा आता कि इतने इस बॉल को पकड़ने के बाद बहुत मजा आई है।
0: आज के जमाने में क्रिकेट का बोलबाला है
1: जी,
0: और लगभग हर युवक चाहता है कि वो एक अच्छा क्रिकेटर बने, ऑलराउंडर बैट्समैन बने।
1: सर, मेरा भी क्रिकेट का एक्चुअली में था, हम भी क्रिकेट बहुत खेलते थे, बट जिस तरीके से अपॉर्चुनिटी देखते हैं, लोगों को देखते हैं क्रिकेट में डीमोटिवेट होते हुए, कुछ ही लोग सक्सेस हो पाए हैं, बट मेरे को अलग से

0: अलग से खेलना, उसे बैट गोल वाला स्लाइडर बड़ा सा बॉल, तो एक अलग सा मजा आता है कि इतने इस बॉल को पकड़ने के बाद बहुत मजा आई है।
1: आज के जमाने में क्रिकेट का बोलबाला है
0: जी,
1: और लगभग हर युवक चाहता है कि वो एक अच्छा क्रिकेटर बने, ऑलराउंडर बैट्समैन बने।
0: सर मेरा भी क्रिकेट का एक्चुअली में था, हम भी क्रिकेट बहुत खेलते थे, बट जिस तरीके से अपॉर्चुनिटी देखते हैं लोगों को, देखते हैं क्रिकेट में डिमोटिवेट होते हुए, कुछ ही लोग सक्सेस हो पाए हैं, बट मेरे को अलग से अच्छी फीलिंग आई उसको खेलने के बाद कि नहीं, फिर मेरे को लगा कि नहीं ये भी अच्छा है, तो फिर जब से हम इससे जुड़े हुए हैं। सर
1: किसी भी युवा को, किसी भी खिलाड़ी को अपने करियर में आगे बढ़ाने के लिए उसके परिवार की, उसके दोस्तों के सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है।
0: जी जी जी।
1: तो आपको ये सपोर्ट कैसा मिला?
0: एक्चुअली मेरे पापा को भी शुरू से यही शौक था, हमारे गांव में वॉलीबॉल फुटबॉल जो गेम चलता, मेरे पिताजी भी इसे गेम से जुड़े, पापा को एक्चुअली उनको पता था कि गेम खेलेगा तो कहीं ना कहीं कुछ करेगा, और मेरे दोस्त भी मेरे साथ जितने भी साथी रहे मेरे, जो भी इसी गेम से जुड़े गए थे, तो अच्छा लगता था। सर
1: पहली बार सॉफ्ट बॉल मैच आपने कहां और कैसे खेला, और इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए आप नेशनल तक पहुंचे और आज आप सॉफ्ट बॉल के सफल प्रशिक्षक हैं, इस दौरान आपकी क्या क्या उपलब्धियां रही, क्या क्या अचीवमेंट आपने हासिल किए?
0: सर मैं पहली बार 2013 में डिस्ट्रिक्ट प्रतियोगिता आयोजित करवाई थी, तो उसमें मैं हमारी टीम ने पार्टिसिपेट किया था, हमने वहां पर हमारी टीम विनर रही थी। उसके बाद मेरा स्टेट में चयन हुआ था, जब मैं पहली बार बीकानेर खेलने गया था, जब वहां गया तो सभी जिलों की टीम आई, वहां पर इतना अच्छा प्रदर्शन, कुछ हमारे यहाँ स्लो पिच थे, वहां देखा गया तो बॉल स्विंग और इधर जा रही है, और अलग सा लेवल देखने को मिला, तो दौड़ी कुछ ही हुई, तो पहला मेरा टूर्नामेंट था। उसके बाद फिर मैं सब जूनियर नेशनल खेला जो झालावाड़ में एमेच्योर द्वारा आयोजित हुआ था, तो उसमें भी झालावाड़ विनर हुआ था। फिर उसके बाद आगे जैसे मैं गया तो 2019 में मैंने नागपुर सीनियर नेशनल पहली बार पार्टिसिपेट किया, जब मेरी एज लगभग सर 19 वर्ष थी, उस टाइम मैंने सीनियर खेला। फिर मैंने उस ऑल इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम चले थे, तो मेरा मैंने बीए में एडमिशन हुआ झालावाड़ कॉलेज में, तो पहली बार किशनगंज कॉलेज द्वारा एक आयोजित हुआ था सॉफ्ट बॉल अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़ से हमने भाग लिया, उसमें हमारी टीम विनर रही। फिर यहाँ से सिलेक्शन हुआ हमारा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए, तो पहली बार एक दफा ऐसा हुआ था कि कोटा यूनिवर्सिटी की टीम पहली बार टॉप 8 में गई थी, इसमें झालावाड़ के 5 खिलाड़ी खेल रहे थे, और मैं उसमें पिचर की भूमिका में निभाई थी। तो सर मेरे को बहुत उसी से ही थोड़ा मोटिवेशन मिला, जब हमारा केरला से मैच था, तो बहुत अच्छे तरीके से मतलब। फिर उसके बाद हमारा 2020-22 में जो पाली में वेस्ट जोन टूर्नामेंट हुआ उसमें विनर हुए हम, उसके बाद फिर 23 में फिर विनर हुआ, और फिर अभी जो 2026 में वेस्ट जोन उज्जैन में आयोजित तो हुआ था, तो उसमें राजस्थान की फर्स्ट प्लेस लगी है सर। फिर सर जैसे बढ़ते थे तो थोड़ा इंटरेस्ट भी बढ़ता गया, मजे भी आ रहे हैं सर अब।
1: जी जी जी, देखिए बहुत अच्छे अचीवमेंट आपके हाथ लगे हैं, और इतनी उम्मीद किसी से नहीं की जाती कि इतनी बार कोई नेशनल खेल ले, आपने कई बार ये उपलब्धि हासिल की है। अच्छा विशाल, सॉफ्टबॉल के अलावा आप और कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं?
0: सर सॉफ्टबॉल के अलावा पहले तो क्रिकेट में इंटरेस्ट था, पर एक्चुअली सॉफ्टबॉल का एक मिला जुला गेम है बेसबॉल।
1: जी जी जी।
0: तो उसको लोग बोलते हैं, पहले बोला जाता था कि मर्दों का गेम है, मर्दों का गेम है, पहले क्या है बेस सॉफ्टबॉल को लड़कियां खेलती थी और बेसबॉल को लड़के खेलते थे मेरे गांव में, तो फिर उसके बाद दोनों को मिक्स कर दिया, तो फिर उसके बाद हम बेसबॉल खेला, तो बेसबॉल में नेशनल खेलने गया, पहली बार विशाखापट्टनम नेशनल गया, उसके बाद हम भिलाई में गए, और फिर अभी लेटेस्ट में पंजाब में हुआ था, तो वहां पे मैंने पार्टिसिपेट किया। उसको सेम गेम है, बस बॉल का फर्क है, मेजरमेंट का फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है सर।
1: विशाल आप बहुत लकी हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि इन दोनों खेलों में आपने क्या अंतर देखे और क्या समानताएं देखी, जैसे कि अभी आप जिक्र कर रहे थे।
0: समानताएं तो इसमें सब बहुत सी है, चुनों में क्या है, ग्राउंड सेम डायमंड, प्लेयर 9 खेलते हैं, इक्विपमेंट सेम यूज होते हैं, बैट और बॉल का अलग अलग होता है सर। एक्चुअली में क्या होता है, सॉफ्ट बॉल का ग्राउंड 270 फीट की होम रन होता है, उसमें 350 फीट होता है, जिसे सॉफ्ट बॉल में थोड़ा बड़ा बॉल होता है, उसमें थोड़ा छोटा क्रिकेट की साइज का बॉल होता है। दूसरा इसमें पिचिंग, उसमें थ्रोइंग पिचिंग की जाती है, इसमें अंडर आर्म पिचिंग की जाती है। दूसरा एक बैट का जो साइज होता है वो जो लगभग 34 का होता है, तो उसमें 34 तो होता है बट उसका जो बैरल होता है उसकी लंबाई थोड़ी बड़ी होती है सर, और सब कुछ सेम है सर, तो मजे आए कॉमन गेम। तो थोड़ा हल्का सा जो ग्राउंड 60 फीट का जो होम लाइन होती है उसमें 90 फीट की होती है सर।
1: जी,
0: बाकी दोनों गेम अच्छे हैं सर, दोनों सेम है, बस बॉल का फर्क है सर।
1: जी विशाल, और विशाल किसी भी गेम में प्लेयर के लिए नेशनल खेलना एक सपना होता है, और आपने दो गेम में नेशनल खेला है, तो नेशनल और इंटरनेशनल के बीच आपको क्या फर्क रह गया, आप इंटरनेशनल से कैसे दूर रह गए?
0: सर एक्चुअली में सॉफ्ट बॉल अभी इंडिया में डेवलप गेम है, डेवलप हो रहा है, इसका इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की रैंकिंग 58 पे है। कैंप लगा था उज्जैन में, तो हम गए थे, पर उसमें जाना टीम कैंसिल हो गई, तो उसमें हम नहीं जा पाए।
1: तो अब विशाल आपसे जानना चाहेंगे कि आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं, दो दो गेम में नेशनल खेले हैं, उसके बाद भी आपने कोच बनने की राह क्यों चुनी?
0: सर अभी जो अपने इंडियन गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई थी खेलो इंडिया,
1: जी जी जी,
0: तो उसमें जो बच्चा किसी जिले से अपने पर्टिकुलर गेम में 2-3 नेशनल खेला हुआ है,
1: जी जी,
0: तो उनके लिए पास चैंपियन एथलेटिक के थ्रू एक खेलो इंडिया का एक सेंटर हर जिले में डेवलप किया गया था, जिस उसके जिले की डिमांड को देखते हुए, उसके तहत आप लोगों को गेम मिला था सॉफ्ट बॉल, तो उसमें पार्ट टाइम एथलेटिक के लिए कोच की वैकेंसी आई थी,

0: तो उसमें मेरा उसमें चयन हुआ। फिर उसके बाद मेरे को भारत सरकार द्वारा एनआईएस कराई गई, तो जैसे मैं एनआईएस करने गया तो फिर वहां पे लगा कि कोच एक्चुअली होता क्या है।
1: जी जी जी,
0: मेरा सपना था कि मैं नई पीटीआई बन के किसी गवर्नमेंट स्कूल में से करेंगे, बट वहां जाने के बाद पता चला कि नहीं यार, पर्टिकुलर अपने गेम का एक कोच और पीटीआई मतलब कि सभी उसको गेम कराने पड़ेंगे, असली फीलिंग तो अपने गेम को खिलाने में है बच्चों से। तो फिर मेरे को लगा हुआ कि नहीं, अब तो बनना तो कोच ही है, तो उसकी सब मेहनत करते रहे और अभी पार्ट टाइम लगे हुए हैं, देखो भविष्य में फिर अगर वैकेंसी आती है तो।
1: और इस समय जूनियर सब जूनियर और सीनियर और लड़के और लड़कियां यानी सभी प्रकार के खिलाड़ियों को आप सॉफ्टबॉल के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं, तो क्या रेस्पॉन्स बच्चों का आ रहा है?
0: सर बच्चों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। अभी 2025-26 के मैचों में बताते हैं आपको, तो हमारे लगभग 9 बॉयज और 3 लड़कियां
1: जी जी
0: अभी यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप खेल के आई है, जो अपने कर्नाटक में आयोजित हुई थी सर। और छोटे बच्चे में हमारे एक मयंक नागर है लड़का, तो वो नेशनल खेल के आया है, झालावाड में पहला एक गेम है जो गोल्ड मेडल नेशनल लेवल पे लेके आ रहा है, तो लोगों का क्रेज बढ़ रहा है। अभी जैसे गर्मियां बड़ी छुट्टियां लगी तो बच्चे आ रहे हैं।
1: और कौन सा फेडरेशन या संस्था सॉफ्टबॉल की खेल गतिविधियां आयोजित कराती है?
0: भारतीय सॉफ्टबॉल एसोसिएशन द्वारा इसको बहुत अच्छे से करवाया जा रहा है
1: जी जी।
0: और इसके समय समय पर सीनियर जूनियर सब जूनियर प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाते हैं हर साल। और सबसे अच्छी बात यह है कि झालावाड़ के बच्चे इसमें अधिकतर बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें आगे बढ़ रहे हैं। आज तक जब भी लगभग मैं जब से मैं खेल रहा हूँ, हर एक ऐसा कोई सा टूर्नामेंट नेशनल गया जिसमें झालावाड़ का बच्चा राजस्थान टीम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो सब जूनियर हो या सीनियर हो।
1: झालावाड़ के लिए वास्तव में ये गौरव की बात है कि नए खिलाड़ी उभर के आ रहे हैं, सॉफ्टबॉल में अपना नाम रोशन कर रहे हैं
0: जी।
1: प्रैक्टिस कितनी जरूरी है और पूरा रूटीन प्रैक्टिस का किस प्रकार से होना चाहिए?
0: सर किसी भी गेम के लिए सर वो बोला जाता है ना कि प्रैक्टिस मेन इज परफेक्ट, तो किसी भी गेम को खेलने से प्रैक्टिस बहुत जरूरी। तो हमारा रूटीन होता है सुबह, हम हमारे बच्चों को सुबह 6:30 बजे ग्राउंड बुला लेते हैं, तब स्कोप द स्कूल, तो उसमें हमारे बच्चे आते हैं, तो हम पहले उसको रनिंग फिर एक्सरसाइज बेसिक एक्सरसाइज नॉर्मल गेम स्किल्स जो उसको डेवलपमेंट करवाते हैं, उसके बाद जैसे गेम क्लोजिंग सेशन होता है तो उनको थोड़ा वार्म अप रनिंग करा के वार्म अप करवा के और कूल डाउन करके वो छोड़ देते हैं। अभी एक खेलो इंडिया की पॉलिसी के तहत संडे साइकिलिंग जो चल रहा है उसमें हमारे बच्चे पार्ट ले रहे हैं, अच्छा रिव्यू आ रहा है, राजस्थान में हमारा फर्स्ट पे चल रहा है।
1: जी जी। और एक सॉफ्ट बॉल प्लेयर के लिए पिचिंग हिटिंग फील्डिंग बहुत महत्व रखती है, तो पिचिंग हिटिंग फील्डिंग में सुधार के लिए आप किस प्रकार की प्रैक्टिस खुद करते हैं और करवाते हैं अपने खिलाड़ियों को, और कौन कौन सी खास एक्सरसाइज?
0: इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है अपनी मसल्स
1: जी जी।
0: मसल्स के लिए हम बच्चों को वेट ट्रेनिंग करवाते हैं, साथ साथ रिस्ट रोटेशन करवाते हैं। तो हमारे पास अभी इसमें योजना के तहत हमारे पास बच्चों के लिए जिम के इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल हुए हैं, तो उससे हम बच्चों को थोड़ा एक्टिविटी करवाते हैं। साथ साथ अभी जो मैं एनालाइज करने गया था तो वहां पे थोड़ा सा साइंस का भी उसमें यूज सिखाया था, तो उसको बच्चों पे अभी धीरे जनरेट कर रहे हैं, किन्सोलॉजी बायोमैकेनिक्स का यूज करके बच्चों के कार्डियो सिस्टम्स की कुछ मसल्स का जो भी इशू है उसको दूर करके, तो कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा हो जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसी में वो है जो सर अभी आपने बताया मुझे कि पिचिंग कैचिंग बैटिंग, तो इससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी पिचिंग अच्छी है तो आपका पिचर पूरा गेम जिता लेगा। तो पिचर की अलग से स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है, उसके थाइस भी मजबूत होने चाहिए, पिचर यानी कि फुल ऑन फिट एंड स्पीड मैन प्लेयर।
1: जी जी जी। सॉफ्टबॉल में अंडर आर्म फास्ट पिचिंग भारत में ऐसा माना जा रहा है कि अभी भी नहीं नहीं आई है, तो कोच की हैसियत से आप प्लेयर्स को फास्ट पिचिंग की बुनियादी टेक्निक कैसे सिखाते हैं और कितने समय में वो इस प्रक्रिया से मास्टर बन सकते हैं?
0: एक्चुअली मैं खुद भी इसी गेम में पीछे रहा हूँ, नहीं एक्चुअली नहीं तो क्या अंडर आर्म पिचिंग तो होती थी, बट वो क्या जंप से नहीं होती थी, खड़े खड़े पिचिंग करना होता था। तो भी इंडिया में नई आई जंप करके ऐसे पैर लेग पैर पीछे आगे प्लेट पे दोनों पैर रखने पड़ते हैं, पीछे रखे जो जंप करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी आपका लैंड कैसे हो रहा है सीधा सा, आपकी जब बॉल डालने से पहले आपका लैंडिंग सही है तो पिच अपने आप सही जगह से उनको बताते हैं। बेसिक से उन्होंने सिखाया गया है कि आपको जैसे पॉकेट जैसे लोअर पेन थे उसमें पॉकेट के पास से बॉल चूंकि अच्छा जाएगा, आपकी फिंगरिंग कैसी होती है, ग्रिप्स वगैरह जिसमें ग्रिप होती तो पकड़ के,
1: और विशाल हार या जीत खेल का हिस्सा होता है, और इस अंतर को आप किस प्रकार से देखते हैं और हार के बाद प्लेयर्स को कैसे मोटिवेट करते हैं?
0: सर हार जीत एक बहुत बड़ा इमोशनल पार्ट्स है, ऐसे लोग तो जैसे देखा जाए इसमें दो तरीके स्पोर्ट्स जो प्लेयर होता है उसको दो चीजों से जुड़ा हुआ होता है, एक तो खुशी के आंसू एक गम के आंसू। जैसे हारते तो मैं बच्चों को बहुत सारी चीजें से कहता हूँ कोई बात नहीं है, अच्छा अगले साल कुछ अच्छा करेंगे, कहीं ना कहीं उनमें कमी रही होगी। मैं उनसे ये तक बोलता हूँ कि बच्चे से कि कहीं ना कहीं उनमें नहीं है, मेरे में कुछ उन्होंने कम सिखाया, बाकी ठीक कि जैसा चल रहा है, और जीतने के बाद तो फिर आपको सबको पता है कैसा क्या होता है।
1: और खेल के दौरान फोकस बनाए रखने के लिए आप किस प्रकार की स्ट्रेटेजी अपनाते हैं?
0: हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट से, क्योंकि बच्चों का जैसे ग्राउंड में बाहर से हुटिंग वगैरह होती है तो बच्चे का कैसे उसमें फोकस रहे, इसलिए मैं उनको एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट से भी जो योगा के द्वारा

0: लोगों को, तो मैं लगभग इनको बेसिकली ऐसी चीजों से रिलेटेड करके जिसको जुड़वाता हूँ, तो मैं इसमें इनको मेडिटेशन करवाता हूँ। दूसरा इनका फोकस ग्राउंड में रहे, तो इसलिए उनके जो उसके कमांड्स होते हैं गेम्स के, जो अपन रूटिंग वगैरह करते हैं, तो प्लेयर जैसे बोलते हैं कि थ्रो इन फर्स्ट बेस, तो उसका एक्टिवेशन आता है। और गेम ऐसा गेम है ये, तो स्लो के साथ साथ फास्ट भी चलता है। अब क्रिकेट में क्या होता है कि भी बॉल पूछा नहीं पूछा, इसमें पर्टिकुलर जो नो प्लेयर नाइन प्लेयर्स ये होते हैं, तो कभी भी किसी के पास बोलते एक्टिवेशन होती है। और दूसरा हम फोकस के लिए बहुत सारे ड्रिल्स करवाते हैं इनसे, बॉल जैसे बॉल पर्टिकुलर बॉल थ्रोइंग करवाते हैं, ऐसे 100-150 बॉल्स में कंटिन्यू हिटिंग करवाते हैं, तो उनका फोकस मानो जैसे बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं।
1: अच्छा विशाल, आपने सॉफ्ट बॉल में कई बार नेशनल खेला है
0: जी,
1: तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके करियर का सबसे यादगार मैच कौन था और उससे आपको क्या सीख मिली, क्या अनुभव आप कर रहे हैं?
0: सर मेरे करियर के अंदर सबसे पहला तो मेरे जो फर्स्ट में खेला, तो हम फर्स्ट में विनर हुए, तो एक अलग से कि नहीं और अच्छा लगा भी जीतने के बाद। बट एक हमारा मैच था 2017 में, हमने भरतपुर के खिलाफ खेला था स्टेट मैच, ओपन स्टेट, तो वो सबसे यादगार मैच था हमारे लिए। हमारा बहुत अच्छा मैच चला था, उस मैच में लास्ट में हम थोड़ा 4-5 से हम पिछड़ गए थे, हार गए थे, तो उसके बाद मेरे को मोटिवेशन मिला हमारे सभी दोनों कोच जो मेरे को सपोर्ट करते हैं यहाँ, उन्होंने मेरे को समझाया थोड़ा सा, ऐसा इमोशनली हो गए थे उस टाइम, खेल इतना टाइम था, लंबा मैच था, फिर हमारे तो उस दिन से मेरे को सीख मिली कि नहीं आप अच्छा मेहनत करना चाहिए, साथ साथ आपको क्या क्या हमने कमियां रह गई तो उसमें मेहनत करी, तो वहां से थोड़ा मोटिवेशन। और मेरे जीवन का सबसे यादगार मैच देखा जाए तो वही था कि इतनी भीड़ इतनी गेर थी, झालावाड़ और भरतपुर के मैच को देखने इतनी पब्लिक थी, ऐसे बिल्कुल से तनातनी, अच्छा माहौल, अच्छा मैच चल रहा था, मजे आए।
1: जी जी जी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशाल हम देखें तो हम देखते हैं कि विदेशी टीमों के आगे हमारी भारतीय टीम थोड़ी कमजोर नजर आती है, तो क्या ऐसी वजह है जिनकी वजह से हमारा प्रदर्शन कमजोर सा रहता है?
0: मेरी मेजर जनरल जानकारी इस हिसाब से बता रहा हूँ कि बच्चे क्या है, मतलब इंडिया की जो टीम जो जाती है एक्चुअली में क्या है, पर्टिकुलर उसी बेसिस पे उसी गेम्स के जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है, पर वो जो टीम जो जाती है उसमें एक्चुअली पर जो सामने जो टीमें जो आती है इंटरनेशनल लेवल पे जो आती है उनका ऑलरेडी उनकी अच्छा डेवलपमेंट होता है, बहुत लंबी प्रोसेस से आते हैं अच्छी इक्विपमेंट्स, तो हमारे यहाँ थोड़ा सा इशू है कि गेम अभी अच्छे से अपनी कंट्री में डेवलप नहीं पाए, जब डेवलप हो जाएगा तो फिर कौन जापान कौन सब इंडिया सबसे बेस्ट होगा।
1: और फिर हमारे देश में हम देखते हैं कि क्रिकेट हॉकी फुटबॉल और कबड्डी जैसे खेल बहुत पॉपुलर है, और इन सब के बीच में आप सॉफ्ट बॉल को कहां पाते हैं और हमारे देश में आप इसका क्या भविष्य देखते हैं?
0: सर इसका भविष्य तो बहुत अच्छा है, एक्चुअली में गेम बहुत अच्छा है। दूसरा आप देखो तो मैं तो मेरे जन्म मेरे गेम को मुझे अच्छा प्यार है, तो मैं उसकी तारीफ करूंगा, बट नहीं कहीं ना कहीं सॉफ्ट बॉल का बहुत अच्छा भविष्य है, किस किस हर चीज का डेवलपमेंट हो रहा है, साथ साथ मेंटली आपको एक्टिव रहना पड़ेगा कि कब बॉल आ रहा है, किसको कहां थ्रो करना है। अब ऐसा नहीं क्रिकेट एक रन लेके तो दौड़ लिया डक, ऐसा नहीं 24 घंटे हर प्लेयर को एक्टिव, जब गेम खेलेगा तो उसको एक्टिव रहना पड़ेगा कि कब बॉल आ रहा है, किस बेस पे थ्रो करना है, थोड़ा नियम थोड़ा सा अलग हटके है थोड़ा रूल्स, तो वो भी है और ठीक है अपना गेम है, और अच्छा खुशी मिलती है लोगों को हर दिन जो नो प्लेयर खेलते हैं हर टाइम गेम के टाइम एक्टिव रहना पड़ता है, कब किसके पास बॉल आ रही है, अच्छे से पहुंच पा रही है।
1: विशाल आप सॉफ्टबॉल और बेसबॉल के नेशनल प्लेयर हैं, साथ ही कोच के रूप में सॉफ्टबॉल के प्लेयर भी इस वक्त तैयार कर रहे हैं, और आने वाले समय में आप अपने खुद के खेल जीवन को कहां तक देखते हैं, आगे आपका क्या लक्ष्य है?
0: सर मेरा लक्ष्य तो अभी गवर्नमेंट जॉब में अगर मैं कोच बनता हूं तो मेरे को कुछ इससे बड़ा कुछ तो क्या होगा, आने वाला मेरा यही भविष्य है कि मैं जितना हो सके मेरी तरफ से प्रयास करूं कि झालावाड़ से अच्छे प्लेयरों को निकाले हम, साथ साथ राजस्थान की भी टीमें अच्छी जाए, हम उसके लिए पूरे दिल और जान से मेहनत करेंगे, साथ साथ मेरे जो कोच है वो भी मुझे आज भी सपोर्ट करते हैं, जैसे बात करूं मैं मेरे कोच ललित सर हैं, कृपा संघ के साथ जो खेल अधिकारी उनका मेरे सबसे बड़ा सपोर्ट है, मेरे साथ साथ विनोद सर है हमारे, तो ये लोग उनसे जुड़े हुए तो मेरे साथ बहुत प्रयास करते हैं लोग, मेरे से ज्यादा कहीं ना कहीं ये लोगों ने मेरे को आज जो भी हूं मैं इनकी बदौलत हूं, तो ये लोग चाहते हैं, तो साथ साथ ये भी आज जिस तरीके से भी उनके व्यक्तिगत जीवन से बाहर जुड़े हुए इतने सफर के बाद, तो मेरे को लगता है कि ना कहीं इनके साथ जुड़ के मैं भी कुछ अच्छा करूं, और अगर गवर्नमेंट कोच लगते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, तो उसके साथ हम गेम का वो डेवलप कर पाएंगे।
1: विशाल आप अपने लक्ष्य में जरूर कामयाब हों, सॉफ्टबॉल के कुछ ऐसे खिलाड़ी तैयार कर पाए जो कोई नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल स्तर पर भी देश का गौरव बढ़ाए और झालावाड़ का मान बढ़ाए। इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे सॉफ्टबॉल कोच विशाल चौधरी से की गई बातचीत, ये आकाशवाणी झालावाड़ का अंशदान था, अब हमें आगे दीजिए, नमस्कार।

आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हमारे जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोले बाबू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए, आइए सुनते हैं सुगम संगीत। जी हाँ, सुगम संगीत के इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ चुनिंदा गजलें। ये गजलें उर्दू के अजीम शायर मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब की है। तो आइए सुनते हैं पहली गजल। आह को चाहिए असर होने तक, खाक हो जाए

0: इसके साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के भुवन मरु चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को है कुछ ही पल में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
2: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। समान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्याय कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। उधर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बाकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। श्री किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया।